0: आवाज नहीं आई,
1: मिलके बोलो।

0: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
1: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
0: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
2: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
1: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
2: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए, जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111-2308-8718 और 9111-2308-8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779851316807 और 9779813261। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में है, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन खाताधारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगे। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमरीका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ सम्पन्न होगी।
3: शिव शिव शंकरा। 57 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरणी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
4: महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा।
0: इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है।
2: श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: केरलम में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 तारीख सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरलम में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती है कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
6: भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो है उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है।
5: इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $200,000 का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बाला अजफारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1994 में हुए पहले माफ कीजिएगा इससे पहले 1994 में हुए पहले विश्व कप में टीम 4थे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रही। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयार तैयारी करें खिलाड़ी। आईपीओ में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है, गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो। लोक सत्य की सुर्खी है, ब्रेन सर्जरी में पहला AI सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी। राजस्थान पत्रिका की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई, 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आप जुड़ चुके हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आरजे आनंद के साथ। आज की सुबह की आप सभी को देता हूँ ढेरों मंगल शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज, शुक्र है कि शुक्रवार है। सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हाँ जी, जय श्री राम। कैसे हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है ना जिंदगी में? सब बढ़िया ही चलना चाहिए यार। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है। आज का दिन भाई बहन के प्यार का प्रतीक का दिन है। आज का दिन वो दिन है जिसमें मतलब चाहे भाई कितनी भी दूर हो या बहन कितनी भी दूर हो, आज के दिन बहन भाई एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ खुशियों के पल सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। आज रक्षाबंधन पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आज का दिन सिर्फ राखी बांधने का दिन नहीं है, आज उस रिश्ते को सेलिब्रेट करने का दिन है जिसमें लड़ाई भी है, नोक झोंक भी है, लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा है। तो आज के दिन की आपको ढेरों मंगल शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के दिन हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ी सी देर में जब लौट कर आएंगे तो आपसे ढेर सारी बात करेंगे। आप कहीं मत जाइए, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। तो भैया थोड़ी सी तेज़ कर लो आवाज़ रेडियो की। और आज का ये दिन सेलिब्रेशन का दिन है। आई नो बहुत सारे लोग अपने घर के लिए निकल रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप निकल रहे हैं अगर अपने घर की ओर तो बिल्कुल आप निकलिए, ऑल द वे बेस्ट, अच्छे से जाइए। पूरी तैयारी हो गई ना बढ़िया से? चलिए बहुत अच्छी बात है, हम भी आपके सेलिब्रेशन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं कुछ प्यारे प्यारे गीत। हैप्पी रक्षाबंधन।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: विजिट करो।
1: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: कोई मिल गया
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: वेलकम बैक है, वंस अगेन गुनगुनाना जरूरी है। आज देश भर में रक्षाबंधन की धूम मची हुई है और सुबह से ही जो है राखी का पर्व शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कुछ ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक कि आज जो रक्षाबंधन का शुभ समय है वो 9:48 तक ही रहने वाला है। मतलब रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो इस वक्त चल रहा है। अगर ऐसे में आप राखी बांधती हैं अपने भाई को तो ये बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना अमेजिंग रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आज की सुबह रेडियो पर ढेर सारी बातचीत करने में आपके साथ हूं ना, रेडियो पे आपका दोस्त आनंद। आप कोई मैसेज अपने भाई के लिए डिलीवर करना चाहती हैं, उन्हें कोई गाना सुनवाना चाहती हैं आज की सुबह, तो बिल्कुल आप मुझे ज़रूर बताइएगा मैसेज करके 9837-896-896। मैं सेम चीज़ भाई लोगों से भी बोलना चाहूँगा आज की मॉर्निंग। देखिए हर एक पर्व के पीछे ना बहुत सारी कथाएं होती हैं, बहुत सारी स्टोरी होती है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसके पीछे भी कुछ ना कुछ स्टोरी तो है ना। कहते हैं दोस्ती दोस्तों, मतलब कहा जाता है कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, इसके पीछे छुपी सदियों पुरानी भावनाओं की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। हाँ जी, तो आपको बताते चले ये रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का एक बहुत ही प्यारा स्टोरी है। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून निकला तो द्रौपदी ने अपने मतलब बिना कुछ सोचे समझे साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया, एंड कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने उसे छोटे कपड़े के टुकड़े को द्रौपदी का प्यार और अपनापन महसूस किया उसमें, एंड उसके बाद जो है हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन दिया। एंड शायद इसीलिए राखी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बहन ही रक्षा करेगी या बहन की भाई ही रक्षा करे, एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना, एक दूसरे का साथ देना, यही तो एक असली पर्व है। असली पर्व का मतलब है, महत्व है। तो आज जब आप कलाई पर राखी बांधे तो सिर्फ धागा मत बांधिए, उस धागे में छुपी अपने भाई के प्यार को, उस रिश्ते को महसूस कीजिए। और भाई से भी कहना चाहूंगा, देखिए छोटी सी बात कृष्ण द्रौपदी वाली कथा लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं में सुनाई जाती है, ऐसी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तमाम सारी कथाएं हैं। हर एक फेस्टिवल के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बहुत सारी कथाएं होती हैं जिनको जानना सुनना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमें सिर्फ एक ही बहन की रक्षा क्यों करनी चाहिए, है ना, जो हमारी राखी बांध रही है हम उनकी रक्षा तो करती ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें बाहर चलने वाली उस हर एक लड़की की रक्षा करने का वचन लेना चाहिए। जो कोई भी लड़की मुसीबत में हो हमें उसकी मदद के लिए जरूर आगे आना चाहिए। फिलहाल 8:34 का समय हो गया है, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद पे RJ आनंद को। श्रोताओ रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं और ढेर सारी बातें हैं, आज का दिन क्यों खास है इस पर चर्चा करेंगे जरा सी देर में लौट कर आएंगे। तो आज इतना शुभ क्यों माना जा रहा है 9:48 तक राखी बांधना, इस पे भी बात करेंगे। आप लोग के ढेर सारे संदेश मेरे पास पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इन संदेश को मैं जरूर शामिल करूंगा, बस जरा सी देर में आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं लौट कर आता हूं, उसके बाद आपके इन सारे मैसेज को शामिल करूंगा ना इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक और खूबसूरत ट्रैक, गाने सुनते सुनते ना रेडियो पे बड़े हो गए यार, बड़े खूबसूरत गाने होते हैं, मतलब अलग ही फील आती है रेडियो पे। जब तक ये गाने सुनने को ना मिले तब तक लगता है त्योहार अधूरा सा है, अनकम्प्लीट सा है, राइट। और ये गाना दिल के बड़ा करीब है, जरा एंजॉय करिए मेरे साथ मिलके, और हाँ वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: जल्दी करो।
1: ऐसा लगे भाई को, इस भाई को आगे नहीं बांधूंगी।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: उम्मीद करो।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: श्रोताओं, आप आनंद के साथ हैं। 8:46 हो गए हैं, 8:46 हो गए हैं स्टेशन क्लॉक में। हाँ जी, और अभी फिलहाल हम रक्षाबंधन का पर्व यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। ढेर सारे संदेश लगातार मुझे मिल रहे हैं, आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम सारे मैसेज आप लोग पहुँचा रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व सेलिब्रेट हो रहा है और कुछ ही समय जो है बचा है अब आपके पास। वैसे तो देखिए, जो रक्षाबंधन मनाने वाले हैं पूरा दिन भी सेलिब्रेट करेंगे, नो डाउट, बट जो एक पर्टिकुलर शुभ टाइम बताया जा रहा है, मैं उसके बारे में फटाफट आपको बता देता हूँ। मेरे पास ढेर सारे मैसेज आ गए हैं कि आनंद जी, प्लीज हमें एक बारी टाइम का थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। जो बिल्कुल जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आज जो शुभ मुहूर्त है, शुक्रवार की सुबह 5:57 से शुरू होकर के अब ये 9:48 तक रहने वाला है। इस बीच में अगर भाई अपने, मतलब अगर बहन अपने भाई को राखी बांधती है ना, भाई की कलाई पर जो है राखी बांधती है, तो ये बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जा रहा है आज की सुबह। दूसरी बात, कई लोग कह रहे हैं आज चंद्र ग्रहण भी है, तो देखिए भारत में इसका असर बिल्कुल नहीं होगा, और तमाम सारे विद्वान ज्योतिषों का कहना है कि 28 अगस्त को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, इसका भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बस आप जो है अगर रक्षाबंधन के पर्व को सेलिब्रेट कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, भद्रा इस बार बिल्कुल नहीं है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भद्रा काल है, उसमें तो राखी बांधना बहुत ही, मतलब जो है, शुभ नहीं माना जाता। लेकिन आज भद्रा तो नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शर्मा और पंडित केदार मुरारी जी ने बताया है कि सावन की पूर्णिमा 27 अगस्त की सुबह 9:08 से आरंभ होकर 28 अगस्त की सुबह 9:48 तक रहेगी। यानी कि आज जो पूर्णिमा है वो 9:48 तक रहेगी, और इसी बीच जो है हमें रक्षाबंधन का पर्व मनाना है, और जब राखी का पर्व हम सेलिब्रेट करते हैं तो ये पर्व हमारे हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार ही मनाते हैं, तो इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व अभी चल रहा है, और अगर ऐसे में आप राखी कर रहे हैं, वेरी नाइस यार। ढेर सारे संदेश आप लोगों के पहुंचे हैं, और देखिए मेरे पास यहाँ पर शिखा जी जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, लिखती हैं, हाय आनंद, गुड मॉर्निंग, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको सुन रही हूँ, एवरीथिंग इज ओके ना? एब्सोल्युटली सब बढ़िया है, हैप्पी राखी आनंद, थैंक यू वेरी मच, आपको भी हैप्पी राखी। एक संदेश मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है सभी लिसनर्स को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं और कुछ वॉइस नोट भी आए हैं, तो ज़रा इनको भी सुनते हैं और रक्षाबंधन के इस पर्व को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ। इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप जुड़े रहिएगा।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम,
1: आप सभी को सुबह का सलाम।
0: जी सलाम,
1: नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जैसे आज का दिन बहुत खास, बहुत स्पेशल। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं सभी लिसनर्स को, सभी सुनने वालों को,
0: जी
1: एफएम फैमिलीज को, एंड स्पेशल गौरव सर को, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने विश किया रक्षाबंधन, बहुत अच्छा लगा।
1: माय नेम इज मेहरीन अंसारी,
0: ओके,
1: एंड डॉटर ऑफ बाबू अंसारी फ्रॉम अहमदनगर।
0: वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकाल रहे हैं, और भी ढेर सारे संदेश मेरे पास लगातार पहुंच रहे हैं, तो जरा सी देर में आपके संदेशों को शामिल करूंगा इस स्टेशन पे, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। थोड़ी सी देर में करता हूं ना आपसे मुलाकात, आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए इसी स्टेशन पर, ठीक है जी। फिलहाल कुछ अच्छे गाने इनको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वापस आएंगे इसी स्टेशन पे। फिलहाल ये ब्यूटीफुल ट्रैक

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: करो।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: क्या सॉन्ग था यार, मतलब मजा आ गया। जरा एक बार बजाओ पाजी, कौन सा शो चल रहा है ये? अरे बता दो यार।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
0: मॉर्निंग। एग्जैक्टली जी, सुबह के 9:12 हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेरी आनी आनंद के साथ। यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, 9:12। ओह माय गॉड, टाइम कितनी तेजी से भागता है। अच्छा आपकी राखी हो गई, सेल्फी अपलोड कर दी आपने? यार मेरे को भी भेजो ना फिर, जरा मैं भी देखूं कैसी कैसी राखियां शाखियां बांधी है भाई आज बहनों ने, हमारी भाभियों ने। जरा मुझे दिखाओ पाजी, मैसेज करो 9837896896 पे। क्या करो पाजी, भाभी तो राखी बांधती नहीं, सिर्फ दीदी राखी बांधती है। आजकल ना बड़े सारे रिचुअल्स चेंज हो रहे हैं, मैंने देखा है। जो कजन ब्रदर होते हैं या जो ब्रदर इन लॉ होते हैं, वो मतलब जो उनका रिलेशन थोड़ा भाई बहन वाला हो जाता है तो बांधते हैं यार। कोई स्टोरी, कोई किस्सा, यू कैन शेयर विद मी। जो भी आपको लगता है कि यार ये चीज़ आनंद रेडियो पे शेयर करनी चाहिए, रक्षाबंधन है, तो डेफिनेटली शेयर करो 9837896896 पे।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग,
2: जय भोलेनाथ की, हर महादेव।
0: बिल्कुल, हर हर महादेव।
2: सर मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति है, मैं लोधीपुर मुरादाबाद से हूँ।
0: ओके,
2: और रेडियो सुनने, रेडियो परिवार को और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को
0: हैप्पी रक्षाबंधन
2: की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन।

एंड बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग भी हमें डेफिनेटली अपनी प्यारी प्यारी विशेष पहुंचा सकते हैं आज की सुबह। कुछ कहना चाहते हैं तो आज का दिन क्यों खास है इतिहास के पन्नों के लिए, 9:13 हो रहे हैं, इमिडिएटली बताता हूँ। 28 अगस्त क्यों स्पेशल है तो बता दें भैया, आज के दिन सन 1854 में भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन की जो है वो शुरू की गई थी, उसकी शुरुआत हुई थी, जिसके संचार व्यवस्था में बड़ी क्रांति आई थी श्रोताओं आज ही के दिन। एंड इसके अलावा एक और खास चीज जो आज के दिन को थोड़ा सा स्पेशल बना देती है, कुछ खास सेलिब्रिटीज का भी बर्थडे होता है आज की तारीख में। आज 28 अगस्त है। देखो यार कितनी तेजी से अगस्त का महीना भी निकल लिया भाई, पता नहीं चल रहा, मतलब ठंड ठंड में सारे महीने निकलते जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ पाजी, जो भी रेजुलेशन है ना उन्हें पूरा करने की भी कोशिश कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और जी इसके अलावा आज क्या स्पेशल रहा मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हटाकर एशेज पर जो है कब्जा जमाया था श्रोताओं आज ही के दिन। एंड इसके अलावा आज ही के दिन कोलकाता से बेरकपुर तथा प्रथम कार रैली का आयोजन किया गया था सन 1904 में आज ही के दिन। इसके अलावा आज ही के दिन प्रसिद्ध पत्रिका जो है ये काफ़ी पॉपुलर पत्रिका है, ये अमेरिकन का पहला संचारण जो इसमें छपा था सन 1845 में, और इसका है पत्रिका साइंटिफिक अमेरिकन का पहला संचारण जो है आज ही के दिन छपा था श्रोताओं 28 अगस्त को। वैसे अगर आप अपने घर जा रही हैं आज की सुबह तो आपके लिए फ्री फ्री फ्री बस सेवा है। अगर आप अपने भाई के घर जाना चाहती हैं तो बिल्कुल आप अपना बैग शैग पैक कर चुकी होंगी, तो बिल्कुल जाइए, निकल जाइए, बस स्टॉप पे जाइए। आज आपको बस वाले भैया ये नहीं बोलेंगे मैडम टिकट की टिकट ले लो या चार्ज दे दो, नहीं भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। चलो बातचीत तो होती रहेगी, बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो यू कैन टेल मी यार 9837896896, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। स्पेशली अपनी बहनों की या भाइयों की छोटी मोटी बातें आप मुझ तक जरूर पहुंचाइए। आपको बता दें एक और स्पेशल चीज जो आज के दिन को खास बना रही है, सन आज के दिन 2017 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जो है वो जीता था आज के दिन, एंड ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन्होंने अपने नाम कर ली हासिल। चलिए मेरे भाई, बातचीतों का ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा, अभी काम करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया गाने सुनते हैं, उसके बाद वापस जब आएंगे तो फिर आपसे और बातचीत करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, राइट? तो आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, आने वाला गाना एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये है फ्राइडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।

0: अब नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: रक्षाबंधन का फेस्टिवल यार, तो ऐसे में ऑफकोर्स भसड़ मचना तो बनता है। अगर कहीं पे जाम वाम लगा हुआ है तो हम आपसे फिर कह रहे हैं भैया हमको बता दो, आप फटाफट से मैसेज करके 9837896896 पर। आनंद के साथ हैं आप।
6: वीर नाल पैण भी होवे सोने लगदे ने जोवे सोने लगदे ने।
5: ये वाला गाना सभी उन बहनों के लिए जो सामने चाहे कितनी भी लड़ाई लड़े लेकिन दिल का प्यार कम नहीं होता यार।
6: सोनी रस्म चला
5: सोनी। देखो यार मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे कोई स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे मैसेज मेरे पास ऑलरेडी पहुंच रहे हैं एंड ऑफ कोर्स ये गाना आप तक पहुंचेगा भी।

0: दीदी
1: यार कुछ गाने ना सच में इतने प्यारे होते हैं जिनको सुन के ना हम एकदम से जूम करके फ्लैश बैक में पहुंच जाते हैं, और इतने बढ़िया गाने सुन के तो हर कोई पहुंच जाएगा यार। वेलकम बैक हियर वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप कहीं भी जा रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट यार। आज राखी है, सेलिब्रेशन है। मैंने एक चीज नोटिस की है, मुरादाबाद की छतों में, हवाओं में सिर्फ पतंगे नजर आ रही है। आई डोंट नो क्यों आज बहुत से लोग विल्ली होने वाले हैं यार। पतंग उड़ाना अच्छी बात है, लेकिन फैमिली आज इकट्ठी होने वाली है ना, एक हॉल के अंदर गैदरिंग जमने वाली, तो वहां बैठ के एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो उनके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आपको बताते चलें फटाफट से। इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज वो है, हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

मोदी जी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है। हां जी, और उन्होंने कहा है कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। उन्होंने भाई बहन के बीच के स्नेह और इस अपनेपन की, विश्वास की डोर को हमेशा मजबूत बने रहने की कामना की है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आप सोचिए ना, चोर चोरी करने आया और उसने लाखों के जेवर नहीं चुराए, और चुराते चुराते उसने एक चीज चुरा ली जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है आज की सुबह। अपने उत्तर प्रदेश की स्टोरी है। मैं मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ यार, और मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि आजकल चोरों के भाव बदल चुके हैं बॉस। यूपी में, अपने ही उत्तर प्रदेश में, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एक चोर ने हैरान कर देने वाली जो है उसकी घटना सामने आई है, और जो हर किसी को यूरो समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। एक चोर चोरी करने के लिए घर में घुसा, उसने लाखों की जेवर चुरा लिए, लेकिन जाते जाते उसने घर से 30 किलो चीनी भी चुरा ली। कि इमेजिन यार, कि चीनी को चुराता है ये भैया, पता नहीं यार चीनी में इनकी नज़र थी क्या था, आई डोंट नो। मतलब इन्होंने जो है फटाफट से घर में एंट्री करी, उसके बाद इन्होंने ज्वेलरी तो चुरा ही ली, ये तो हैरानी की बात थी, लेकिन बड़ी गलत बात थी। लेकिन इसके साथ ही साथ इस चोर ने चीनी को भी नहीं छोड़ा, 30 किलो चीनी लेकर भाग गया। बताइए यार, अब इसकी तलाश जारी है, एंड आई डोंट नो क्यों चीनी के पीछे लोग इतने पागल हो रखे हैं भाई, समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ अपने घर की चीनी जरा संभाल के रखो। पहले होता था ना, पड़ोसी से चीनी भी नहीं मांगने आ रहे हैं, तो अब वो वाला सीन चलता तो नहीं है वैसे घर, लेकिन कहीं चलता है तो मैं कह रहा हूँ भाजी संभाल के रखो, अगली बारी काम आएगी।

लौट कर आता हूँ अभी इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आरजे आनंद के साथ। स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:26, सो डोंट गो एनीवेयर, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फ्राइडे की सुबह है, वीकेंड वाइब फेस्टिविटी है, छुट्टी वाला दिन है, बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज की सुबह, हम भी आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो पे रक्षाबंधन का ये फेस्टिवल। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं, आपके वॉइस नोट आए हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं, वो सारे के सारे अभी पढ़ने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं भी जा रहे हैं मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं यार, मैं भी तो आपके सफर का साथी हूँ ना। कैसे चल रही है रक्षाबंधन की तैयारियां?

0: क्या बात है यार, ये गाना जितना कमाल का है ना, उतना कमाल का इसका बीट्स, म्यूजिक सब एकदम फैबुलस है, एकदम झकास है यार, मजा आ गया गाना सुन के। आई एम श्योर आपको भी मजा आ ही गया होगा। वक्त हो गया है 9:38 स्टेशन क्लॉक में। सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़े प्यारे मैसेज किए हैं यार, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं, देखो वॉइस नोट लगातार मेरे पास आ रहे हैं, आप लोगों के इतने अमेजिंग अमेजिंग मैसेज ड्रॉप कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। जरा इनको सुनते हैं, ये क्या कहना चाह रही है रक्षाबंधन के बारे में। जी प्लीज बताएं।
1: रक्षाबंधन
0: जी,
1: भाई भाई बहन का प्यार क्या ये सिर्फ एक राखी का त्योहार है? नहीं।
0: हाँ जी,
1: राखी खो जाती है, टूट जाती है, गुम हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, नहीं ये सिर्फ राखी का त्योहार नहीं है, बल्कि ये एहसास प्यार मोहब्बत का त्योहार है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कोई भी राखी को अगले साल तक महफूज नहीं रख सकता, महफूज रख सकते हैं तो सिर्फ यादें, मेमोरीज। इसलिए मेमोरीज बनाइए, यादें बनाइए और दिल से त्योहार सेलिब्रेट कीजिए।
0: वेरी नाइस,
1: हैप्पी रक्षाबंधन फॉर अगेन।
0: थैंक यू सो मच, हैप्पी रक्षाबंधन। सच में बड़ी प्यारी बातें करी है मेरी।
2: पहला गुस्सा तुमसे था।
0: चलो इसी बात पे गाना निकल गया है आप सभी के लिए, आप एंजॉय करेंगे इस गाने को आनंद के साथ। आज रक्षाबंधन है, आज कोई फालतू बातें नहीं हो रही, सिर्फ सेलिब्रेशन की बातें हो रही है। आज क्या बन रहा है आपके किचन में, ये भी आप मुझे जरूर बताना।
2: आधा हिस्सा था वो।
0: एंड अभी आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने ढेर सारे मैसेज किए हैं मुझे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, मैं डेफिनेटली शामिल करूंगा। उससे पहले एक अपडेट आपको दे दूं, भारत बनाएगा अपना स्मार्टफोन 2027 तक लॉन्च करने की पूरी तैयारी। हां जी, सरकार ने हाल ही में जो है एक बहुत ही बड़े पैनल पे कुछ नया करने की तैयारी कर ली है। एंड आई एम सो हैप्पी यार कि चलो कुछ तो नया अपने भारत में भी होने वाला है। और इस स्कीम की घोषणा जो है, इस स्कीम का मकसद सिर्फ फ़ोन मतलब जो है बनाना ही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को, उनके डिज़ाइन को तैयार करना है, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, खुद का एक ब्रांड खड़ा करना,
2: रक्षाबंधन,
0: बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो ये बहुत ही यू नो कमाल का इनिशिएटिव है कि अब अपना इंडिया भी बनाएगा स्मार्टफोन, 2027 में इसकी तैयारी हो जाएगी लॉन्चिंग की। हैप्पी रक्षाबंधन गाइस, आज का तो ये पूरा दिन ही डेडिकेटेड है भाई बहन के ऊपर। इसी बात पे रक्षाबंधन का ये टाइटल ट्रैक सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। ये फ्राइडे की सुबह है, आप आनंद को सुन रहे हैं, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते।

0: करो।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन। कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
2: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सच बताऊं ऐसे गाने सुन के मजा आ जाता है। गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने एंट्री मारी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी एंट्री बहुत ही ग्रैंड होने वाली है अभी जरा सी देर में। एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आपने दिया मेरे सवाल का जवाब तो ऑफकोर्स आपकी एंट्री ग्रैंड करेंगे हम। 9:51 हो गए, फ्राइडे की सुबह आनंद के साथ सुन रहे हैं आप बिंदास मॉर्निंग। यार आज भाई बहन का बहुत ही पवित्र पर्व है रक्षाबंधन। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की स्टोरी मैंने आपको पिछले घंटे बताई थी। आई एम श्योर आपने डेफिनेटली सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो फिर आप जाके गूगल बाबा से हेल्प ले लो यार। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सर्च करके लेकर आता रहता हूँ आपके लिए। चलो अभी फटाक से ही काम करो, मेरे सवाल के जवाब पहुंचाओ। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आपसे मैं बहुत सिंपल सवाल पूछने वाला हूँ। देखो आज भाई बहन के प्रतीक, प्यार के प्रतीक का पर्व है राखी, राइट? तो आप मुझे बताओ एक ऐसी फिल्म आई थी जिसमें ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर दोनों जो है मतलब भाई बहन के उसमें मतलब नजर आए थे, एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर का रोल इन्होंने जो है किया था एंड काफ़ी पॉपुलर रही थी इनकी ये जोड़ी। एग्जैक्टली, तो मुझे ज़रा बताओ ऋतिक रोशन एंड करिश्मा कपूर ने कौन सी फिल्म में जो है भाई बहन का एकदम भावुक वाला किरदार निभाया था। अगर आपको पता है इसका जवाब तो जरा मुझे मैसेज करो यार 9837896896 पर। ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर ने भाई बहन का रोल कौन सी पिक्चर में प्ले किया था, अगर आपको पता है वो कौन सी मूवी है, व्हाट इज द मूवी नेम, प्लीज टेल अस, बताओ मुझे। उठाओ अपना फोन, टाइप करो ये अपना नाम एंड अपने शहर का नाम और अपना राइट आंसर, ठीक है? उठाना है फोन, जाना है मैसेज बॉक्स में, लिखना है अपना नाम, स्पेस देके लिखना है अपने शहर का नाम, स्पेस देके लिखना है अपना सही जवाब। करीना कपूर एंड ऋतिक रोशन ने भाई बहन का रोल कौन सी मूवी में किया था, अगर आपको पता है इसका जवाब व्हाट्सएप कर दो। वेरी वेरी पॉपुलर मूवी, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की दुकान, लेकिन पिक्चर बहुत बढ़िया थी यार। अगर आपको समझ आ गया है मैं कौन से पिक्चर की बात कर रहा हूँ तो इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप करेंगे आप 9837896896 पे। हमें इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। देखो आप कोई एक्सक्यूज मत दो, फटाक से मुझे व्हाट्सएप कर दो 9837896896 पे। कौन सी फिल्म में, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी फिल्म में ऋतिक रोशन की सिस्टर का रोल प्ले किया था करीना कपूर खान ने। अगर आपको पता है सही जवाब तो बस अब आपको क्या करना है, उठाना है अपना फ़ोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। उसको जल्दी से बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से पहले मुझ तक पहुंचा देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है जी? जब तक आप मैसेज कर रहे हो तब तक मैं आपके लिए अच्छा सा गाना प्ले कर रहा हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आज की सुबह ये गाना तो डेफिनेटली बनता है, बिकॉज फोटो शोटो तो ले ही रहे होंगे आप। देखो यार सुबह सुबह सेल्फी ले लो यार, अगर आप सेल्फी नहीं ले रहे हो तो फिर आपको मतलब लगेगा यार हम थोड़े से पीछे बैठे हुए हैं ना, तो पीछे नहीं बैठना है, आपने सेल्फी लेनी है, दबा के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। अगर आप कर रहे हो तो हमें भी टैग कर सकते हो, ठीक है जी? फिलहाल मेरी रक्षाबंधन कैसे रही डेफिनेटली बताऊंगा। अब राखी का तो शुभ मुहूर्त जा चुका है, लेकिन अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है बाजी। सुन रहे हो आप बिंदास मॉर्निंग आनंद के साथ, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, यह है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आप। फिलहाल जाने का समय हो गया है, 10:02 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आनंद को। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से आप मुझे इसका आंसर करोगे तो मैं फटाफट लौट कर आऊंगा तो बताऊंगा कौन है आज के शो का विनर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक फिल्म आई थी जिसमें ऋतिक रोशन की सिस्टर का रोल प्ले किया था करीना कपूर खान ने। अगर आपको पता है उसका सही जवाब तो मुझे मैसेज करेंगे आप। फिर से नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 9837896896 पे जल्दी जल्दी व्हाट्सएप करके बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी है इसका जवाब, आई एम श्योर आप पहुंचा दोगे। आपने फिल्म देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी थी एंड मुझे लगा कि आज की सुबह ये पूछना इजी होगा आपके लिए, तो डेफिनेटली आप मुझे बता भी दोगे मैसेज करके, है ना। तो आप देखो बिल्कुल देरी मत करो, फटाफट व्हाट्सएप कर दो मुझे एंड मुझे फटाफट से बता दो कौन सी फिल्म थी वो जिसमें भाई बहन का रोल प्ले कर रहे थे ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर खान। पता है आपको, तो बस आप देरी मत करो, इमीडिएटली मुझे मैसेज करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके प्यारे प्यारे व्हाट्सएप का।

है सोयो बे कर लो थोड़ा सा चलो जी थोड़ा सा नहीं पूरा प्यार करो बहुत जरूरी है जिंदगी में प्रेम की बिना कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको कहते हैं गुड मॉर्निंग 10:07 मिलूंगा आपसे कल सुबह। जाने का समय हो गया लेकिन जाने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ रक्षाबंधन का पर्व है तो अच्छे से मनाएं। आप जहाँ भी जा रहे हैं केयरफुली ड्राइव करें सेफली ड्राइव करें आराम से पहुंचें। ऐसे में क्या होता है बहुत सारा रश होता है सब लोग को अपने घर जाना होता है बहुत जाम वाम लग जाता है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और ये नहीं कि भैया पहले मुझे आगे निकल लें। देखो जितनी जल्दी आपको है ना हो सकता है उससे डबल वाली जल्दी आपके सामने वाले बंदे को है ना तो आपने जो है भाई साहब सबको साइड देनी है और खुद भी आराम से पहुंचना है और औरों को भी आराम से पहुंचाना है राइट। हैप्पी रक्षाबंधन। मैंने पूछा था कौन सी फिल्म थी जिसमें करीना कपूर खान ने ऋतिक रोशन की सिस्टर का रोल प्ले किया था एंड दैट इज द राइट आंसर। ये मूवी थी फिजा एंड एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर मुझे सबसे पहले आया था यहाँ पर शिवम भाई का कांग्रेचुलेशन बिल्कुल सही जवाब है पाजी थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बाकी लोगों ने तो भैया जवाब ही नहीं दिया मेरे को लग रहा है कि शायद लोगों ने पिक्चर देखी नहीं है देखिए तो उन्हें ध्यान नहीं आ रहा है जी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को इस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ से निकलूंगा खिसकूंगा आपको डेफिनेटली मिलूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे कल। आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल ऐसे ही मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए और रेडियो बजाते रहिए। बाकी राखी के गाने तो अगले घंटे ऑफकोर्स आप सुनेंगे ही आपकी पसंद के और बाकी कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मैसेज पे आ सकते हो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो 9837896 ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पर अपनी पसंद का गाना सुन सकते हो। इंस्टाग्राम पे ढूंढने के लिए आप फॉलो कर सकते हो एफएम मुरादाबाद का ऑफिशियल पेज आपको मिल जाएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से और मेरा ऑफिशियल आईडी एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलेगा। चलो जी अभी फिलहाल जिन लोगों ने मैसेज किए हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे थैंक यू सो मच बहुत सारे मैसेज आपने किए हैं। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी डॉक्टर सैयद शारिकल जी हमारे साथ जुड़े हैं ये गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा और भी हमारे पास ढेर सारे संदेश पहुंचे हैं आज की सुबह तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग बहुत प्यारे प्यारे संदेश करते हो थैंक यू सो मच इतने प्यारे व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए। आ गए हमारे पास नासिर हुसैन साहब लिखते हैं आनंद पाजी गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल हैं और बाकी ये हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं तो आपकी दुआएं जरूर इंशाल्लाह कबूल होंगी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद सर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की सुबह और जो आप लिख रहे हैं जरूर ये ऊपर वाले तक पहुंचेगी और हमारी जो दुआएं हैं वो जल्दी से जल्दी कबूल होगी और जो हम चाहते हैं वो भी जल्दी से जल्दी मुराद पूरी होगी है ना। तो आप कहीं मत जाइए और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं पहुंच रही है मेरे पास रक्षाबंधन का शुभकामनाएं भरा मैसेज आ रहा था ये इरशाद एंड डॉक्टर शहीद शारिकली जी की ओर से इरशाद हुसैन अंसारी साहब आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन। गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है मेहराजुद्दीन कश्मीर से राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे साथ ये दुर्गेश सैनी मुझे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं एंड निखत फातिमा हमारे साथ जुड़ रही हैं साथ में अफरोज फातिमा भी गुड मॉर्निंग पहुंचा रही हैं। हेलो आनंद भाई गुड मॉर्निंग बिंदास मॉर्निंग में अच्छे गाने सुन रहे हैं आरजी आनंद को सुन के अच्छा लग रहा है थैंक यू अमित वर्मा जी। उल्लू का पट्टा है गुड मॉर्निंग सर कैसे हाल चाल है हैप्पी राखी बता दीजिए कितने बजे तक राखी बांधनी है तो मैंने आपको टाइम बता दिया है मिस्टर अजय। चलिए दोस्तों जिन लोगों ने टेक्स्ट मैसेज किए हैं उनको भी दिल से थैंक यू आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए एंड सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। बाय बाय हैव अ ग्रेट मॉर्निंग एंड वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: For more entertainment.
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, सुबह सूरज की रोशनी तो पूरे विश्व को रोशन करती ही है, बल्कि लेकिन हमारी एक सोच भी हमारे दिन को खूबसूरत बनाती है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं आपकी अपने शहर की आवाज़ आपकी दोस्त आरजे खुशी लेकर आई हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो मॉर्निंग मसाला, जहाँ सुबह की शुरुआत होगी थोड़ी मुस्कान के साथ, थोड़ी जानकारी के साथ और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और दोस्तों, आज का पॉजिटिव थॉट है कि रिश्तों की खूबसूरती इस बात में नहीं कि हम एक दूसरे से कितने बार मिलते हैं, बल्कि इस बात में है कि दूर होकर भी एक दूसरे के दिल में कितने करीब रहते हैं। और दोस्तों, आज की सुबह बहुत खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस रिश्ते की जिसे एक छोटी सी राखी और बहुत सारा प्यार दोस्तों, राखी का ये धागा सिर्फ एक रस्म नहीं, ये भाइयों के लिए दुआओं की एक डोर है जो हर मुश्किल में उसकी हिम्मत और हर खुशी में उसकी मुस्कान बनी रहती है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और आज 28 अगस्त की तारीख है, दिन है फ्राइडे का, बहुत ही खूबसूरत सा, शुक्र है कि शुक्रवार है। और इस प्यारे से शो में आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की मॉर्निंग। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और बताइए श्रोताओं, आपने भी राखी बांध दी है ना? तो हमारे बहुत सारे लिसनर जो हमें सुन रही हैं इस वक्त, उन्होंने भी अपने भाइयों को राखी बांध दी है। मैं भी अपने भाइयों को राखी बांध कर ही ऑफिस आई हूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं एक अच्छे सॉन्ग से। तब तक आप भी मुझे मैसेज पहुंचाइएगा, मैं हमारा नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ 9837896896। मैं आपके साथ आपकी खुशी।

0: भैया
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

दोस्तों, रिश्ता चाहे जन्म से मिले या दिल से बनाया जाए, जब उसमें प्यार और विश्वास की डोर बन जाए तो वो रिश्ता उम्र भर साथ निभाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। और आज बात उस खूबसूरत त्यौहार की जिसकी एक छोटी सी डोर अपने साथ बहुत बड़े भाव लेकर आती है, रक्षाबंधन। दोस्तों, राखी तो हम सभी मनाते हैं। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई बहन को उपहार देता है और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने का वादा करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है आखिरकार क्यों बांधी जाती है रक्षाबंधन, मनाने की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं। दोस्तों, पहली कथा है, पहली कथा हम सुनाते हैं इंद्र और सांची की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था और एक समय ऐसा आया जब देवताओं पर संकट गहरा गया। तब देवराज इंद्र की पत्नी सांची देवी यानी इंद्रनी ने भगवान विष्णु की सलाह से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन सांची देवी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा। मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र ने इंद्र को शक्ति और सुरक्षा प्रदान की और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इसीलिए राखी को केवल भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक ही नहीं बल्कि सुरक्षा, विश्वास और मंगल कामना के सूत्र के रूप में भी देखा जाता है। और दोस्तों, दूसरी कथा है राजा बलि और माता लक्ष्मी की। अब बात करते हैं एक और बेहद सुंदर कथा की। दानवी राजा बलि ने भगवान विष्णु से ऐसा वचन लिया था कि जिसके कारण भगवान विष्णु को पाताल लोक में रहना पड़ा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस लाना चाहती थी। तब उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। बलि ने जब उनसे उपहार मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ वापस ले जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा बलि ने अपना वचन निभाया। ये कथा हमें बताती है कि राखी का रिश्ता केवल खून का रिश्ता नहीं, प्रेम, विश्वास और वचन का रिश्ता भी हो सकता है। और दोस्तों, अब सबसे भावुक कथा है श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की। महाभारत से जुड़ी प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक अवसर पर श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकल आया। द्रौपदी जी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया।

द्रौपदी जी ने स्नेह और श्री कृष्ण ने हमेशा याद रखा, और जब द्रौपदी जी के सम्मान पर संकट आया तो श्री कृष्ण जी ने उनकी लाज बचाई। और ये कथा हमें एक खूबसूरत संदेश देती है, रक्षा का वचन सिर्फ शब्दों से नहीं निभाया जाता, कभी किसी के लिए मुश्किल समय में खड़ी हो जाना ही सबसे बड़ी राखी होती है। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का असली अर्थ सिर्फ कलाई पर बंधा हुआ धागा ही नहीं, ये है प्यार, विश्वास, सम्मान, सुरक्षा और एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प। और शायद इसीलिए राखी की डोर छोटी होकर भी रिश्ते को बहुत मजबूती से बांध देती है ना। और आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये कथाएं, और मुझे मैसेज जरूर पहुंचाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन। कलाई पर राखी रहे और दिलों में हमेशा एक दूसरे के लिए प्यार बना रहे। और हमारे पास यहाँ पर लगातार बहुत खूबसूरत संदेश भी आ रहे हैं, हम उनको भी शामिल करेंगे। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें संदेश पहुँचाया है अमित वर्मा जी ने हिमगिरी मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग आरजी खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। एंड कहते हैं कि भाई बहन के इस प्यारे प्यार भरे त्योहार की एफएम मुरादाबाद सुनने वाले सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू यू सर, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला मैसेज हमारे पास यहां पर आया है नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह जी का। और ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुनना चाहते हैं, फ्रॉम द मूवी रेशम की डोर, जो 1974 में आई थी। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। तो ये खूबसूरत गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप ही अपने संदेश पहुंचाने में ना थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। और आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, सारी अपडेट यहाँ पर आपको मिलने वाली है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए। और इतना प्यारा सा पर्व है तो मुंह तो मीठा हो ही गया होगा सुबह सुबह आपका, है ना। चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपने अपनों के साथ इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल? तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट, रामनगर, नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए, जब बहन भाई एक दूसरे के साथ होते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े होते हैं। और जब अगर कोई मुसीबत आती है तो वो मिलकर सामना करते हैं। और कोई मुश्किल भला ऐसे कैसे बहन भाई के सामने टिक सकती है। हाँ, दोस्तों, समय हुआ है 10:48 और बैक टू बैक आपके यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आ रहे हैं, तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी का। और ये आज की मॉर्निंग हमें राखी की शुभकामनाएं पहुंचाते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन सिम टू यू सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, और ये कहते हैं आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक है। कश्मीर से मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह सर। थैंक यू सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से रिहाना जी का। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, हैप्पी रक्षाबंधन सेम टू यू। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का आज की मॉर्निंग, एंड ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है खुशी मैम, आपको और एफएम की पूरे परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू यू, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं शंकर लाल यादव, रितु यादव, अमित यादव जी, नीरांशी यादव लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर से। अगला मैसेज हमें यहाँ पर मिला है आरजे खुशी सिस्टर जी को। ओके, अरे वाह, क्या बात है। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह। और इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा मैसेज पहुंचाया आज की मॉर्निंग। कहते हैं आरजे खुशी जी, अमर है भाई बहन का प्यार, रक्षाबंधन है ऐसा त्योहार, रक्षाबंधन रिश्तों का अटूट बंधन है जिसे ना कोई तोड़ सकता है, ऐसे ही अटूट बंधन है एफएम मुरादाबाद 89.6 हमारे साथ। अरे वाह, क्या बात है। अजीत कसाना जी, माया देवी और साथ में ऋतिक एंड आदित्य कसाना जी का मैसेज हमारे पास आया है लदावली जिला मुरादाबाद से। और हमारे पास वॉइस नोट भी आए हैं, तो हम उनको भी आकर प्ले करेंगे। एंड अपने मुरादाबाद में क्या चल रहा है उस सब अभी आपको खुशी लौट कर आएगी तो बताएगी। बस आप बने रहिए मेरे साथ एंड सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, आज की सुबह आप भी कुछ यादें अपने बहन भाई की हम तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ नटखट सी शरारतें जो आपको आज भी मतलब याद आती हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और ऐसा मन करता है कि काश वो दिन दोबारा से वापस आ जाए।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: कोई मिल गया,
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला।

0: और दोस्तों बात कर लेते हैं मुरादाबाद के लोकल अपडेट के बारे में। और आज मुरादाबाद में कैसा मौसम रहने वाला है ये भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों आज शहर में आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ गरज चमक और बारिश के आसार हैं। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। यानी मौसम सुहाना है लेकिन बारिश के दौरान सावधानी जरूर रखें। और मुरादाबाद में तो आज आसमान भी कलरफुल लग रहा है, इतनी खूबसूरत पतंगे आसमान में उड़ रही हैं। अब मुरादाबाद रेलवे मंडल से एक अच्छी खबर, यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने की दिशा में मंडल ने करीब 2,65,00,000 रुपए का टेंडर जारी किया है। इसके तहत 78 स्टेशनों पर पीए सिस्टम यानी सार्वजनिक उद्घोषण प्रणाली और 123 स्टेशनों पर डिजिटल घड़ी लगाने का प्रावधान है। इससे यात्रियों को ट्रेनों से जुड़ी जरूरी घोषणाएं और समय की जानकारी ज़्यादा स्पष्ट और सुविधाजनक तरीके से मिल सकेगी। यानी रेलवे स्टेशनों पर सुविधा अब और स्मार्ट होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये था आपके हमारे मुरादाबाद शहर की लोकल अपडेट और आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर बैक टू बैक आपके मैसेज आ रहे हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। और मैंने कहा था ना कि एक प्यारा सा हमारे पास वॉइस नोट भी आया है, तो मैं उसको भी इमीडिएटली प्ले कर लेती हूँ। आज की सुबह क्या पहुँचाती है हमारे लिसनर?
1: गुड मॉर्निंग खुशी दी, कैसे हो आप? आपको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आपके लिए एक शायरी लेकर आई हूँ। माथे पर तिलक कलाई पर प्यार, माथे पर तिलक कलाई पर प्यार, सावन की रिमझिम में खुशियों की बहार, मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार। मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा।
0: क्या बात है अफरोज, बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें थी आपकी, अमेजिंग एंड सेम टू यू, आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अजीत कसाना जी का, और ये थैंक यू हमें पहुंचाते हैं, मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यूपी मुरादाबाद से रणवीर सिंह जेठालाल जी का, कहते हैं आपको और एफएम के सभी रेडियो मुरादाबाद सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कहते हैं कि आपने जो रक्षाबंधन के बारे में जानकारी दी बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर कि आपको अच्छा लगा। बिल्कुल रक्षाबंधन के गाने हम सुनवा ही रहे हैं सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी परवली सी का, और ये आज की सुबह हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आसिफ फ्रॉम इटली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आज आपको फिर से प्रोग्राम में सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज़ और प्रेजेंटेशंस हमेशा की तरह दिल को छू जाती है। आज का शो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सर ने एक ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। और हाँ, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी देते हैं आज की मॉर्निंग। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर आपको और सभी श्रोताओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे भाई बहन का ये अटूट रिश्ता हमेशा प्यार, विश्वास और खुशियों से भरा रहे। आज के इस खास मौके पर मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर संभव हो तो अपनी पसंद से कोई भी प्यारा सा रक्षाबंधन का ट्रैक आप प्ले कर दीजिएगा। श्योर सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है वेरी गुड मॉर्निंग मैम, रामपुर से शमा हमें मैसेज पहुंचाती है आज की सुबह, कैसे हैं आप? आई एम गुड। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, हेलो खुशी मैम, हैप्पी रक्षाबंधन। और सर आपने अपना मैसेज तो पहुंचाया है लेकिन आपने बताया नहीं है कि आप कहां से मैसेज हमें पहुंचा रहे हैं। जरीफ बाबू मुरादाबाद से मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। तो चलिए दोस्तों कुछ खूबसूरत ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं। आप बस यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपने संदेश पहुंचाने में तनिक भी देरी मत कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। और समय हम आपको बता देते हैं, अभी वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:13 राइट नाउ।

बिल्कुल दोस्तों, देखिए बहनों को इंतज़ार होता है कि कुछ शहरों में ऐसा होता है कि बहन भाई के घर जाती है और कुछ शहरों में ऐसा होता है कि भाई बहन के घर जाते हैं। और सभी को भी सबरी से इंतज़ार होता है कि दीदी कब घर आएंगी, कब बहन आएंगी। भाइयों को भी इंतज़ार होता है और बहनों को भी इंतज़ार होता है कि भैया अभी तक नहीं आए हैं। वो भले ही कितने भी कामों में व्यस्त हों लेकिन उनकी निगाहें दरवाजे पर ही होती हैं। अगर कोई पड़ोसी भी आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे भैया आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है, राखी का, रक्षाबंधन। और बहन भाई का प्यार तो सबसे अनमोल होता ही है। कितने भी हम नोक झोंक करें आपस में, कितना भी झगड़ा कर लें, लेकिन फिर एक दो घंटे के बाद फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी कभी तो ऐसा होता है कि गलतियां बहन करती हैं और इल्ज़ाम भाई पर लगा देती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है।

खूबसूरत गीत मैंने यहाँ पर चुने हैं, वो भी मैं प्ले करूंगी यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दुर्गेश सैनी जी का, कल्याणपुर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी जी, हैप्पी रक्षाबंधन, सेम टू यू सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके दोस्त भी है सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। खुशी जी आदाब, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर, आपका शो हम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया आपका सर। और ये कहते हैं कि हमारी ओर से आपको और आपके पूरे परिवार को, एफएम परिवार को सुनने वाले सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, बहुत ही खूबसूरत सा, एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं इंसान हुसैन जी दौलत बाग मुरादाबाद से। और इन्होंने एक बड़ी क्यूट सी बीबी की फोटो भेजी है कि ये हमारा भतीजा है। और कहते हैं कि एफएम की पूरी फैमिली को हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छा, ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, और आपने जैसे डेकोरेट करके भेजी है ना फोटो, एंड एक प्लेट में बहुत खूबसूरत सा दिया है, दो राखी हैं और स्वीट भी रखा है, बहुत ही ज़्यादा यू नो ब्यूटीफुल लग रहा है सर। थैंक यू सो मच, आपने इतना डेकोरेट करके, इतनी मेहनत करके मैसेज भेजा है, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज हमारे पास आया है, माय नेम इज संजू, हैप्पी रक्षाबंधन खुशी दी, सेम टू यू डियर। अगला मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, एंड ये कहती हैं, खुशी मैम हम आपसे नाराज हैं। हाय रब्बा, आप उसे क्यों नाराज हैं? देखो नाराज नहीं होना है, ओके, मुस्कुराना है, और आज त्योहार भी है तो ये नाराजगी दूर करो और चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया विकी सागर जी का, हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से, हैप्पी रक्षाबंधन, सेम टू यू, आपको भी। तो चलिए दोस्तों, मैंने ना एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत यहाँ पर निकाला है, और ये ट्रैक आपको भी पसंद आएगा उम्मीद करते हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं, उसके बाद फिर से कनेक्ट होते हैं आपके साथ, और आज और क्या स्पेशल है वो आपको खुशी यहाँ पर बताने वाली है।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: कोई मिल गया,
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, रामायण की कहानी में दो ऐसे बाल योद्धा जिन्होंने अपनी वीरता, संस्कार और ज्ञान से सबका दिल जीत लिया, लव और कुश। आज 28 अगस्त को लव कुश जयंती के अवसर पर हम भगवान श्री राम और माता सीता के पुत्र लव कुश को नमन करते हैं। कहा जाता है कि माता सीता ने मां श्री वाल्मीकि के आश्रम में दोनों पुत्रों का पालन पोषण किया और उन्हें शिक्षा, शौर्य और संस्कार दिए। आगे चलकर लव कुश ने रामायण की कथा का गायन कर अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। इस पावन अवसर पर हम भी जो घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी अच्छा ज्ञान, संस्कार और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। क्योंकि देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जो सिखाया जाता है बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों को आप अच्छी हैबिट सिखाएंगे एंड बड़ों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, डिसिप्लिन में रहना, चीज़ों को डिसिप्लिन में रखना। एक्चुअली क्या होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत नटखट भी होते हैं और कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जब स्कूल से आते हैं तो अपना बैग, अपने शूज एंड अपने ड्रेस, यूनिफॉर्म जो है वो इधर उधर रख देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि उन छोटे बच्चों को सिखाइए कि जहाँ पर बैग रखा जाता है वहाँ बैग रखें, जहाँ शूज रखे जाते हैं वहाँ पर शूज रखें। क्योंकि हर चीज़ को डिसिप्लिन में डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सिखाना मैनर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको शुरू से ही अच्छी आदतें सिखाएंगे तो वो बड़े होकर भी वैसे ही एक्टिविटीज़ करेंगे। तो बच्चों को अच्छे ही संस्कार दीजिए। और आप सभी को लव कुश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर अभी वक्त हुआ है 11:45 और हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो मैम, हैप्पी रक्षाबंधन, कैसे हैं आप? एंड ये कह रही हैं कि हम आपका शो सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारा शो सुन रहे हैं और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ये ट्रैक मैम प्ले कर दीजिएगा, बिल्कुल प्ले करेंगे आपके लिए। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, हाय खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सृष्टि है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सृष्टि, हैप्पी रक्षाबंधन सेम टू यू। तो चलिए दोस्तों, कुछ खूबसूरत गीत तो सुनवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक के टाइम भी हो गया है, तो एड ब्रेक के बाद कुछ म्यूजिकल ब्रेक, फिर खुशी आएगी और आपको और भी चीज़ों से रूबरू कराएगी। तो बस बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर खुशी के साथ।
1: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये रक्षाबंधन स्पेशल ट्रैक किशोर कुमार जी की आवाज़ में।

और यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ जल्दी से। और हमारे पास ये मैसेज आया है, हेलो मैम, सभी दोस्तों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सलमान अख्तर जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं बिजनौर यूपी से। थैंक यू सर एंड सेम टू यू। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है भूमि का, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हैप्पी रक्षाबंधन खुशी मैम। एंड आनंद भैया को भी ओके, रक्षाबंधन की आप हमें शुभकामनाएं पहुंचा दी हैं। सिम हियर डियर, एंड ये कहती हैं कि मैम हमें राखी स्पेशल एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा। श्योर भूमि। एंड भूमि हमें लाइन पार मुरादाबाद से मैसेज पहुंचाती हैं, आज तो भाई से बहुत सारे गिफ्ट्स लिए होंगे आपने। हाँ चलो दोस्तों, अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपसे सी यू सून। तब तक रखिएगा अपना ख्याल और यूं ही मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए एंड राखी फेस्टिवल को एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, फोटो क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है? क्योंकि पता है आपको दोस्तों, ये जो फोटोज होती है ना, ये हमारी सबसे खूबसूरत यादें होती हैं। हम टाइम बीत जाता है लेकिन वो मेमोरीज हमेशा हमारे पास रहती हैं। तो थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा नहीं, आज बहुत सारा मुस्कुराइए, ठीक है? बहनों ने इतना सारा आपको स्वीट खिलाया है, इतने प्यार से वो लेकर आए हैं आपके लिए, चॉकलेट लेकर आए हैं, तो कोई वाइट रसगुल्ले लेकर आया है एंड कोई काजू कतली लेकर आया है। हाँ, अब पता है आज इतना सारा सब मतलब सारी सिस्टर्स एंड घर में जितने भी गेस्ट आते हैं, बुआ जी आती हैं, सब मीठा लेकर आते हैं, तो मीठा खाने का दिल ही नहीं करता है, मन भर जाता है। लेकिन वही बाद में जब सब लोग मीठा खा लेते हैं ना, उसके बाद मन करता है कि ओ हो अब मुझे भी खा लेना चाहिए, है ना? तब तक पता चला कि समाप्त हो चुका होता है। तो भैया मौका अभी है, जल्दी से स्वीट खा लीजिएगा, थोड़ा ही सही, लेकिन आज मुँह मीठा करना तो बनता है ना। और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और एक प्यारा सा ट्रैक आप सभी के लिए,

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: Joker.
1: अरे सुना होगा वो शहर।
2: जानना चाहते हैं क्योंकि आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी है।
3: और समय पर इलाज ना मिले तो ये दिमाग तक भी पहुंच सकता है, जिसे सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, जो जानलेवा हो सकता है।
2: भैया, आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
3: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है, जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयाँ आई हैं, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहाँ तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीक विकसित की जा रही है। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही है उसमें नई तकनीक है, और 2024 में जो नई मच्छरदानियाँ बांटी गई उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थी, जो ज्यादा असरदार है।
2: तो क्या दुनिया में मलेरिया कम हुआ है?
3: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहां मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
2: लेकिन फिर भी मलेरिया अभी खत्म क्यों नहीं हुआ?
3: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए हैं और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
2: सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
3: चुनौतियाँ कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयाँ पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। और तीसरी समस्या है जाँच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है, नए तरह के मच्छर जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
2: क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होते हैं?
3: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होते हैं, जहां साफ पानी की है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, वहां ये बीमारी ज्यादा फैलती है। इसलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।
2: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी दिक्कतें हैं?
3: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग 3.9 अरब डॉलर का फंड मिला, जबकि जरूरत 9.3 अरब डॉलर की थी, मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
2: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, इसे आसान भाषा में समझाइए।
3: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयाँ चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए, जांच मशीनें चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी चाहिए, इन सब के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अभी जितना पैसा मिल रहा है वह जरूरत से आधा भी नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं जगहों पर जरूरी सुविधाएं पहुँच ही नहीं पा रही हैं।
2: भैया, आपने पहले जलवायु परिवर्तन की बात की थी, इसका मलेरिया से क्या संबंध है?
3: बहुत गहरा संबंध है। आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है, बारिश का समय बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इन सब कारणों से मच्छरों के पनपने की जगह और समय दोनों बढ़ गए हैं। पहले जो इलाके सुरक्षित माने जाते थे वहाँ भी अब मलेरिया के केस आने लगे हैं। मतलब यह सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, यह पर्यावरण से जुड़ी समस्या बन चुकी है।
2: अब अगर हम अपने देश की बात करें तो भारत कहाँ खड़ा है?
3: भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। 2015 से 2023 तक के बीच मलेरिया के मामलों और मौतों में 80% की कमी आई है। 2024 में भारत में लगभग 2.5 लाख मामले और 86 मौत दर्ज की गई। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं, खासकर दूर दराज इलाकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में और जहां स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंचती हैं वहां।
2: भारत में सबसे बड़ी समस्या कहां है?
3: सबसे ज्यादा चुनौती दूर दराज इलाकों में है, जैसे जंगल वाले क्षेत्र, पहाड़ी इलाके, वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
2: भारत का लक्ष्य क्या है?
3: भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक देश में एक भी स्थानीय मलेरिया का मामला ना हो और 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
2: सरकार इस पर कैसे काम कर रही है?
3: सरकार कई स्तर पर काम कर रही है। गाँव में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। PHC और सब सेंटर से मुफ्त जांच और दवाइयां उपलब्ध हैं। इसके अलावा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDT की मदद से तुरंत पता लगाया जा सकता है कि मलेरिया है या नहीं, और जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हें ACT यानी Artemisinin Based Combination थेरेपी कहते हैं, जो बहुत प्रभावी है।
2: सेहतिया भैया, आपने बताया कि भारत मलेरिया को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए कि देश में इसके लिए कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं।
3: बहुत अच्छा सवाल है आरजे रीना, क्योंकि सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि मजबूत व्यवस्था और लगातार प्रयास से ही मलेरिया जैसी बीमारी को हराया जा सकता है। भारत में मलेरिया नियंत्रण के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है, जिसे पहले राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता था, और अब इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत और मजबूत किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के मामलों को कम करना और समय पर पहचान करना और सही इलाज देना।
2: तो क्या इसके लिए कोई खास योजना भी बनाई गई है?
3: हाँ बिल्कुल, भारत ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन रूपरेखा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन तैयार की है, जिसमें साफ तौर पर लक्ष्य तय किए गए हैं। पहले मलेरिया के मामलों को तेजी से कम करना, फिर स्थानीय स्तर पर संक्रमण को रोकना, और अंत में पूरे देश से मलेरिया को खत्म करना। इसी के तहत भारत ने राष्ट्रीय रणनीतिक योजना नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन भी बनाई है, जिसमें हर जिले को उसकी स्थिति के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ज्यादा संसाधन भेजे जाते हैं, और जहां कम है वहां निगरानी मजबूत की जाती है ताकि बीमारी दोबारा फैले।
2: ये तो योजना हो गई, लेकिन जमीन पर क्या होता है?
3: जमीन पर काम होता है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। गाँव में नियमित रूप से इंडोर रेसिडुअल स्प्रे IRS किया जाता है, यानी घरों की दीवारों पर दवा का छिड़काव, जिससे मच्छर मर जाते हैं। लोगों को लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट LLIN यानी मच्छरदानी दी जाती है, जो कई सालों तक मच्छरों से बचाव करती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर बुखार वाले मरीजों की पहचान करते हैं और तुरंत जांच करवाते हैं। कई बार तो वही पहली व्यक्ति होती है जो किसी मलेरिया के केस को पकड़ती है।
2: मतलब लोग खुद जाए तभी जांच होता है?
3: नहीं, यही सबसे बड़ी बात है, अब सिस्टम खुद लोगों तक पहुंचता है। इसे एक्टिव सर्विलेंस कहते हैं। अगर किसी इलाके में मलेरिया का केस मिलता है तो स्वास्थ्य टीम वहां जाकर आसपास के लोगों की भी जांच करती है, ताकि बीमारी फैलने से पहले ही रोकी जा सके।
2: लेकिन भैया, क्या सिर्फ सरकार से ही यह संभव है?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार जितना भी प्रयास कर ले, अगर समुदाय साथ नहीं देगा तो मलेरिया कभी खत्म नहीं होगा। अगर लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर पानी जमा नहीं होने देंगे, अगर बुखार होने पर जांच नहीं करवाएंगे, तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।
2: तो इसमें आम लोगों की क्या भूमिका है?
3: सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की ही है। अगर हम अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे, मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे, समय पर जांच करवाएंगे और पूरा इलाज करेंगे, तो मलेरिया को रोका जा सकता है।
2: भैया, गांव में कई तरह की बातें भी फैलती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मलेरिया सिर्फ गंदे पानी से होता है या खुद ही ठीक हो जाता है।
3: यही सबसे खतरनाक बात है, मलेरिया सिर्फ गंदगी से नहीं बल्कि संक्रमित मच्छर के काटने से होता है, और अगर इसका इलाज समय पर ना हो तो ये जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए बुखार को हल्के में ना ले।
2: लेकिन लोग अक्सर इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं।
3: यही सबसे बड़ी गलती है, जब दवा पूरी नहीं ली जाती तो बीमारी अंदर ही अंदर बनी रहती है।

0: किसी की जान बची हो?
1: हाँ, और यही उम्मीद है। झारखंड के एक गांव में एक महिला थी, सरिता। उसे तेज बुखार हुआ, लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया। वह तुरंत आशा दीदी के पास गई, जांच हुई, मलेरिया निकला, उसे समय पर दवा मिली, उसने पूरा कोर्स किया और आज वह पूरी तरह स्वस्थ है और खुद गांव में लोगों को जागरूक करती है।
0: मतलब फर्क सिर्फ एक फैसले का है।
1: हाँ, एक फैसला समय पे जांच कराने का और पूरा इलाज करने का।
0: क्या आपको लगता है कि भारत मलेरिया को खत्म कर पाएगा?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास योजना भी है, संसाधन भी है और अनुभव भी है। बस जरूरत है लगातार प्रयास, सही दिशा और लोगों की भागीदारी की। अगर सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और आम जनता तीनों साथ आ जाएं, तो 2030 तक मलेरिया मुक्त भारत का सपना जरूर पूरा होगा।
0: सेहतिया भैया, आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, याद रखिए, मलेरिया कोई छोटी बीमारी नहीं, लेकिन इसे हराया जा सकता है।
1: आज समय आ गया है कि हम सब मिलकर कहें, अब हम कर सकते हैं और अब हमें करना ही होगा।
0: दोस्तों, अब हमारे पास ज्ञान है, दवा है, समाधान है, अब बहाना नहीं चलेगा।
1: अब हम कर सकते हैं
0: और अब हमें करना ही होगा। मलेरिया खत्म होगा जब हम सब साथ होंगे। तो इसी के साथ आज का शो खत्म होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार के जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी तो भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत से लाभ कई। और अब हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही बहुत सी जानकारियां लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ FM मुरादाबाद 89.6 MHz।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी। और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं।
1: आज के किसान ज्ञान वार्ता के इस ताजा एपिसोड में किसान भाइयों का और हमारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री अनिल कुमार सिंह जी, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ। आप वहां वरिष्ठ प्रबंधन के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है।
2: स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं का मेरा जो नमस्कार विनय जी।
1: सर, आजकल बड़ी चर्चा है किसान प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के बारे में।
2: जी जी,
1: तो उस पर थोड़ा प्रकाश दे।
2: हाँ हाँ, प्रधान समृद्धि जो है आपके केंद्र है, ये हर जगह पर है। अगर हम देखें तो ये सभी खाद की दुकान है जहाँ पे खेती से संबंधित आदान मिलते हैं। खेती के आदानों में अगर हम जैसे लें तो सबसे पहला आदान होता है बीज। बीज वहाँ से हम लेके आते हैं दुकान से। पहले बीज हमारे यहाँ पे भी हम भी उत्पादन करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन आज के समय पे क्या है, संकर बीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। नई नई जो वैरायटियाँ आ रही हैं जिनसे हमें अधिक उत्पादन मिलता है, वो बीज आजकल इन्हीं जो समृद्धि केंद्र पर आपको उपलब्ध होते हैं। बहुत सी जगह साइन बोर्ड लगे होंगे, बहुत सी जगह एक तरह से एक फ्रेम जैसा लगाया जाता है, वहाँ प्रधानमंत्री जी का फोटो होता है और ये सब लिखा रहता है। उसमें ये भी लिखा रहता है कि सेवाएं कौन कौन सी आपको यहाँ से मिल रही हैं। उर्वरकों के बारे में तो जानकारी है ही, सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है। दूसरा फिर ये है कि खेती का फिर उसके बाद जो आदान आ जाता है बीज के बाद, उर्वरक आ जाता है, पोषण आ जाता है। तो पोषण से संबंधित सारे उर्वरक हैं वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। उर्वरक कैसे उपलब्ध होते हैं इसके बारे में आज मैं थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि सरकार को कैसे मालूम पड़ता है कि यहाँ इतना हमें खाद भेजना है, इस क्षेत्र में इतना यूरिया भेजना है, इतना DAP, इतना NPK भेजना है, इतना सुपर फास्फेट भेजना है, ये कैसे मालूम पड़ता है। उसके लिए एक जो प्रक्रिया है, आपका जो क्षेत्र है वहाँ पे जिला है, वहाँ पर जो कृषि के अधिकारी होते हैं, फिर हर एक जो तहसील में कृषि के अधिकारी हैं, ब्लॉक में है, वो उस क्षेत्र की जो खेती की जानकारी है, जो जो फसलें वहाँ पे लगाई जानी है उनके बारे में वो उनके पास पूरा जानकारी होती है। अब जैसे कि यहाँ पर धान लगना है इस सीजन में, कहीं पर गेहूँ लगना है, तो अगर खरीफ में धान लगना है तो धान के हिसाब से कितना उर्वरक की मांग उस फसल की होती है एक एकड़ की, तो वो रकबा देख लेते हैं कि भाई इतना रकबा लगेगा, इतने जो हजार एक एकड़ धान लगना है, इतना मक्का लगना है, इतना ये लगना है, और इसके हिसाब से इतना पोषण हमें चाहिए, इस पोषण की पूर्ति के लिए ये उर्वरक हमें चाहिए और कब चाहिए, ये भी उसमें इंगित करते हैं। तो ये एक जो है आपका राज्य होता है उसके हर क्षेत्र से अलग अलग रिपोर्ट आती है कि इस क्षेत्र में इस समय पर ये उर्वरक चाहिए, ये उर्वरक चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बीज चाहिए, पूरी जानकारी तो ये जो राज्य सरकार के पास आती है। राज्य सरकार वहां से अपने पूरे राज्य का तैयार करके क्षेत्र वाइज वो जो अपनी केंद्र सरकार को देती है, केंद्र सरकार फिर जो उर्वरक इसको सारे काम को संभालता है, कहाँ कितना देना है, कहाँ से कितना

0: हमारा इंटरनेट फैसिलिटीज, उसे बिना मोबाइल का कोई मतलब नहीं,
1: कोई
0: है
1: मतलब.
0: सो वी ऑल आर नाउ ट्रैवलिंग विद अवर एआई जेमिनी, है ना, यू ऑल नो, है ना, सब चैट जीपीटी, यस, दैट इज अ हार्ट, है ना, चैट जीपीटी बिकम अ हार्ट ऑफ एवरी पर्सन, राइट. सो कैन पुट टेली मानस, आनंद जी आप जब लिसनर से बात करोगे इसका हर बार इसका आप थोड़ा सा री इन्फोर्स करिएगा, राइट. इट इज टेली मानस, TELEMANAS. अगर आप डालोगे गूगल में इट विल गिव यू अ डिटेल्ड पिक्चर, ठीक है. तो मैंने बोला है ना, देर इज नथिंग रॉन्ग इन आस्किंग फॉर हेल्प, राइट. दूसरों से पूछने आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, चलो उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, राइट. तो यू पुट टेली मानस, दैट इज एन वॉट टू से एन इमरजेंसी सर्विसेस गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राइट. हमारा इंडियन गवर्नमेंट का है वो, वहां पे ना आप किसी से पहचानते हो ना वो आपसे पहचानते हैं, राइट. आप उसके लिए स्ट्रेंजर हो, वो आपके लिए अनजान है, ठीक है. तो वहां पे तो आप कॉल की बोल सकते हो,
1: करेक्ट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली,
0: है ना. तो यू कैन से आप किस चीज में अभी फील कर रहे हो, राइट, अभी क्या परेशानी हो रही हो. डोंट थिंक मैं ये बोलूंगी तो इसका मतलब मेरा कुछ मानसिक बीमार हो गई, एब्सोल्युटली नो, राइट. सबको कोई ना कोई मोमेंट में एक हेल्प का जरूरत होती है, एक काउंसलिंग का जरूरत होती है, क्योंकि हम अभी जिंदगी जी रहे हैं एक मशीनरी वर्ल्ड में, राइट. सो प्लीज डोंट हेसिटेट टू आस्क फॉर हेल्प. ये जो मैं बोल रही हूँ टेली मनास, अगर आप हेल्प भी नहीं लेना नो प्रॉब्लम, एक बार उसको देख तो लो आप लोग, है ना. यू जस्ट पुट दैट टेली मनास इन गूगल, AI, चैट जीपीटी, कहीं भी, राइट. इट विल गिव यू एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन, पूरा जागरूक आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम भी होगा ना, उस पेज आप खोलोगे आपको वहां पे जरूर जवाब भी मिलेगा, ओके. नॉन जजमेंटल, तो ये टर्म तो आप समझते होगे, नॉन जजमेंटल, है ना. लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा हाँ वहां पे, ओके. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर सोर्स, आपका फैमिली, आपका फ्रेंड्स हेल्प ले सकते हैं, ताकि जो पर्सन प्रॉब्लम में है वो प्रॉब्लम से जल्द बाहर आने के पूरी कोशिश कर पाएंगे, राइट. और हम यहाँ पे पूरा वादा भी नहीं करेंगे पूरा हो जाएगा, नहीं, पूरा हम कोशिश करेंगे ताकि द पर्सन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ अलोंग विथ मेडिसिन एंड थेरापी. यू अंडरस्टैंड, बिकॉज मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस ऐसे एक कंडीशन है, एक बार अगर हमने दवाई छोड़ लिया है फिर दोबारा लक्षण आने का बहुत चांसेस है, राइट. तो उस चीज के लिए हम बाद में जाएंगे. अब अगर किसी का ये प्रॉब्लम है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स जरूर इस चीज से हेल्प ले सकते हैं. मैं ये बोल रही हूँ ये किसी का कोई नुकसान नहीं देगा, यू अंडरस्टैंड,
1: यस.
0: सो आनंद जी, सो दिस इज जो रिसोर्स है जो इंडियन गवर्नमेंट दे रहे हैं. अगर आप यहाँ पे पहुंचना है तो आप इजीली पहुंच सकते हो, या इससे पहले आप लोकल रिसोर्स, फॉर एग्जांपल आप मुरादाबाद में है ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी पर्सन को किसी डॉक्टर के पास जाना है तो लोकल सर्विस भी अवेलेबल है जो लोग वो भी यूज कर सकते हैं, ओके. एंड मैं दूसरा एक बोलती हूँ, प्लीज डोंट हेसिटेट टू नॉक द डोर ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. जरूरी नहीं है तुम आप लोग को साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना है, इवन यू कैन गो टू द साइकोलॉजिस्ट और टू द काउंसलर, है ना. हम ये टप्पा नहीं लगा रहे हैं आपको कुछ मानसिक रोग है, है ना. हम हर बंदे को तनाव होती है, हर बंदे को सैडनेस होती है, राइट. किसी से हेल्प लेना इज नॉट गलत.
1: Absolutely, okay. 100%.
0: Yeah, Anand ji, so these all are the area where family and friends can get help to treat their loved ones.
1: That's very nice, yes. Ma'am. That's very nice.
0: Yeah, yes, yes.
1: Dr. Manuranjini ji, thank you so much for coming. Thank you very much. And it was really wonderful talking to you. Thank you so much.
0: Thank you, Anand ji. Thank you for inviting me. And I'm so privileged. Main aap log se aaj baat कर पाए. एंड एक चीज मैं बोलकर कम्प्लीट, ओके. तो आज तक हमने ये जो मेंटल हेल्थ बात किया ना, राइट, तो हम क्या क्या जिंदगी में, मतलब लाइफ डेली एक्टिविटीज में, राइट, कुछ कुछ चीजें हम करेंगे ताकि थोड़ा बहुत हम मेंटल हेल्थ को मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, यू अंडरस्टैंड, राइट. सो लेट मी सेव टू और थ्री थिंग्स, ओके. पॉइंट नंबर वन इज यू वेन एवर यू फील स्ट्रेस्ड, राइट, थोड़ा सा मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, भाई मुझे ऐसे लग रहा है मैं ठीक नहीं हूं, है ना. तो उस समय जो आपको बहुत पसंद चीज है, बहुत अच्छा लगता है,

0: है वो करो आप
1: जो आपका फेवरेट है.
0: यस बट प्लीज मोबाइल मत स्क्रॉल करना.
1: सबसे ज्यादा फेवरेट तो यही है ना.
0: प्लीज मोबाइल मत स्क्रॉल करना. मोबाइल स्क्रॉल करने से पहले, मोबाइल आने से पहले तक भी तो हमारा बहुत बहुत हॉबीज थे,
1: है ना,
0: वो सब हम भूल गए, राइट. यस, सो जो सॉन्ग बहुत हमारा हार्ट टू हार्ट टच होता है वो सॉन्ग प्ले करके आप सुनो,
1: सुनो,
0: राइट. लिसन टू दैट इन अ रिपीट मोड, दो बार तीन बार, राइट,
1: चला सकते.
0: यस, सो मन थोड़ा शांत होगा. नेक्स्ट थोड़ा ब्रीदिंग, आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए. इसका ये मतलब नहीं है आपको योगिक के पास जाना है, योगा सीखना, नो, वो सब आप कर सकते हो, गलत नहीं है. बट वेन एवर यू फील स्ट्रेस्ड, तनाव है, राइट, तो थोड़ा सा यू जस्ट डू ब्रीदिंग, राइट. एंड तीसरा चीज है डेली जर्नलिंग, राइट. ये जो डेली जर्नलिंग क्या होता है, आनंद जी, डू यू नो दिस, व्हाट इज मेंट बाय डेली जर्नलिंग?
1: मैम प्लीज यू हैव टू एक्सप्लेन मी.
0: हम करते हैं, हम करते हैं, बट हमें अब ये जो टर्म है, मे बी ये नॉवल हो सकता है. डेली जर्नलिंग मीन्स जो रात को सोने से पहले या सुबह जब हम उठते हैं थोड़ा लिख लेते हैं हम, है ना, आज का दिन कैसे होना चाहिए, और रात को सोने से पहले आज का दिन कैसे गया है, आज मैंने क्या किया है, क्या क्या अच्छी चीज है, क्या क्या चीज मुझे हर्ट हुआ है, राइट. ये सारी चीजें जब लिखते हैं सो दैट हम खुद को पता चल जाता है आज का दिन में हम क्या क्या अच्छी अच्छी चीज करी है, या जो जो चीजें करी है जो हमें अगले बार नहीं करना चाहिए. यू अंडरस्टैंड? उसको हम बोलते हैं जर्नलिंग, डेली जर्नलिंग,
1: जर्नलिंग,
0: ठीक है. तो दिस इज नोन एज, ये सारे जो बेसिक थिंग्स है. दूसरा है माइंडफुलनेस. ये जो माइंडफुलनेस का मतलब लिविंग एट प्रेजेंट, पास्ट मत सोचो, फ्यूचर मत सोचो, लिव एट प्रेजेंट, इस मोमेंट में गिव थैंक्स टू गॉड, एंड इस मोमेंट में आप अच्छे से जियो, राइट. अगर आप अच्छी हवा ले रहे हो, अच्छा सा बारिश हो रही है, वहां पे भी मोबाइल मत लेके जाना, मैं फोटो खींच रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम में डालूंगी, कितना लाइक्स आएगा, प्लीज डोंट डू दैट. लिव एट दैट मोमेंट, एंजॉय करो, राइट. वो दैट इज नॉट माइंडफुलनेस. वो सारी चीजें आजकल हमने मिस कर रहे हैं, इसी कारण डेली हमें स्ट्रेस और सम अदर प्रॉब्लम्स कमिंग इन अवर लाइफ,
1: राइट.
0: सो प्लीज यू फॉलो दीज स्टेप्स, ओके. माइंडफुलनेस, लिविंग एट प्रेजेंट, डेली जर्नलिंग, थोड़ा थोड़ा लिखो, एंड डू सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सो यू दैट यू मे फील गुड, ओके. सो आनंद जी, थैंक यू सो मच. And let me wind this here. And I say this to the listeners, please, aap log listen to this mindfully, hai na? Jab aap isko listen karoge, please don't scroll your mobile. Aap bas.
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.
3: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं.
4: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है.
3: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए.
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी.
5: बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है. योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं. दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज.
6: नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हो गई है और सीमा के दोनों तरफ 1545 लोग लापता हैं. नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने प्रभावित जिलों में 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. एक रिपोर्ट.
7: भोटे कोशी नदी प्रणाली के स्रोत के पास नई झील बन गई है. इसके टूटने से पानी के एक और तेज बहाव की आशंका है. इससे बचाव कार्यों में बाधा आ सकती है. इस बीच आज चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में बाढ़ की नई चेतावनी जारी की गई है. अधिकारियों ने त्रिशूली क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया है. नेपाल पुलिस ने बताया कि तिब्बत की ओर स्थित एक बांध फिर टूट गया है. वहां के निवासियों और सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में फंसे 290 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उनका पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं। खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात कर उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
6: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल अमरीका की उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर से टेलीफोन पर बातचीत की। अमरीका ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका ने भी नेपाल को 10 लाख अमरीकी डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस बीच नेपाल में बाढ़ के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में गंडक नदी से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। बुधवार रात गंडक नदी के जल प्रवाह में बढ़ोतरी के बाद अब इसमें लगातार कमी दर्ज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में जल प्रवाह सामान्य है। उन्होंने कहा कि नेपाल की भोतेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से होते हुए पानी के गंडक तक पहुंचने के दौरान जल प्रवाह की गति कम हुई है, जिससे बिहार में इसका प्रभाव भी कम हो गया है। श्री चौधरी ने बताया कि एहतियात के तौर पर गंडक नदी से प्रभावित सभी 8 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। जल संसाधन विभाग की टीमें तटबंधों की 24 घंटे पेट्रोलिंग और निगरानी कर रही हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
6: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें भाखड़ा नांगल बांध की दीवार 1.77 इंच झुकने का दावा किया गया है। वीडियो में कहा गया है कि बांध में दरार आने से दिल्ली सहित कई शहरों में बाढ़ आ सकती है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि बांध के तनाव, खिंचाव, छिद्र दाब और रिसाव के सभी मापदंड निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं और बांध पूरी तरह सुरक्षित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
9: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
6: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एक रिपोर्ट।

0: 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
2: अपनी 2 दिनों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल जाने की उम्मीद है। ताशकंद शहर में शास्त्री स्ट्रीट पर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के सम्मान में एक कांसे की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 1976 में शुरू हुए इस मेमोरियल को स्थानीय उज्बेक मूर्तिकार याकोव शापिरो ने डिजाइन किया था। ताशकंद आने वाले भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है। ये सेंटर भारतीय साहित्य, खासतौर पर हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के इतिहास और विकास पर एकेडमिक रिसर्च करता है और उज्बेकिस्तान और भारत के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की उत्तरी रेंज ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान के एक जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिल्ली के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दंपति पर 2024 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दंपति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को सहायता प्रदान करता था। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें पाकिस्तान भेजना शामिल था। भारत में सिम कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया गया था। महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू की है। चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे अन्य प्रमुख उपभोग केन्द्रों तक भी प्याज की आपूर्ति की जा रही है। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। भारत में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.78 गीगावाट है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार 9 अतिरिक्त रिएक्टर निर्माणाधीन हैं। परमाणु ऊर्जा भारत के विकास पथ का एक महत्वपूर्ण घटक बनकर उभरी है, जो न केवल बिजली उत्पादन बल्कि स्वास्थ्य सेवा, कृषि और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में भी योगदान देती है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विभिन्न स्कूलों और संगठनों में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि रक्षाबंधन का महत्व भाई बहन के रिश्ते से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि राखी का पवित्र धागा परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहाँ तक कि पेड़ों को भी बांधा जा सकता है, जो प्रेम और देखभाल के बंधन का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों से पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का भी आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के सुंदर बंधन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार सभी के बीच स्नेह और सद्भाव के बंधन को मजबूत करने तथा खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। पंजाब में जेल विभाग ने आज कैदियों को भाई बहनों के बीच प्रेम और सम्मान का त्यौहार रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी है। विभाग ने सुरक्षा संबंधी नियमों का ध्यान रखे जाने की पूरी व्यवस्था की।

0: की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता महात्मा अयंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा अयंकाली ने अपना जीवन शोषितों के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी महात्मा अयंकाली और श्री नारायण गुरु की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि महात्मा अयंकाली को एक अग्रणी समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक समझ और समानता तथा मानवीय गरिमा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लोगों को भेदभाव से ऊपर उठाया। मौसम विभाग ने उड़ीसा और बिहार में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ आंधी की संभावना है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कल तक ऐसे ही मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 1 सितम्बर तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। भारत के वेलविन सेंथिल कुमार आज रात पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालास फारकाश से मुकाबला करेंगे। कल रात सेमीफाइनल में सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2026 डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रतियोगिता अगले महीने ब्रसल्स में आयोजित होगी। नीरज ने रैंकिंग में 12 अंक हासिल किए। उन्होंने जून में दोहा मीट में 85.69 मीटर भाला फेंक कर चौथा स्थान हासिल किया था। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में लुसानी मीट में 88.05 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर एफआईएच विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में हुए पहले विश्व कप में टीम चौथे स्थान पर रही थी। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनधन योजना की वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 469 हुई। सीमा के दोनों ओर 1500 से अधिक लोग लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 290 भारतीय नागरिक अब भी संपर्क से बाहर। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव अभियान जारी। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद नेपाल में फिर बाढ़ की चेतावनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारत के वेलविन सेंथिल कुमार का पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में आज रात फाइनल में हंगरी के बालास फारकाश से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07052।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: हेलो, हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अब पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और मेरे साथ में है प्यारी सी आरजे रीना। जी हाँ, आपको पता ही है एवरीवन कि हम एवरीडे आपके लिए लेकर आते हैं आपका खास कार्यक्रम महिला मंच। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जिस पर चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन बदलाव की जरूरत आज भी उतनी ही है। देश पर था शादी दो लोगों की जीवन की नई शुरुआत होती है, लेकिन अगर इस शुरुआत से पहले ही सामान, पैसे, और गाड़ी की मांग सामने आ जाए तो क्या ये रिश्ता सच में बराबरी का रह जाता है? शादी कोई सौदा नहीं, ये दो लोगों का साथ है, दो परिवारों का जुड़ना है। इसीलिए रिश्ता शुरू होने से पहले मांगों की नहीं समझ और सम्मान की बात चाहिए।
0: बिल्कुल सही कही तुमने, क्योंकि सम्मान की बात होती है तो वहाँ मांग की बात नहीं होती है। और बात करेंगे दहेज की मांग आखिरकार क्यों होती है। कभी आपने सोचा है कि शादी के समय आखिर इतनी सारी मांगे क्यों जुड़ जाती है? कहीं कार चाहिए, कहीं महंगे गहने, कहीं फर्नीचर और कहीं नगद पैसे। शुरुआत में शायद एक छोटी सी मांग होती है, लेकिन धीरे धीरे वह उम्मीद और फिर दबाव बन जाती है। खासकर लड़की माता पिता सोचते हैं कि कहीं उसकी बेटी को शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। लेकिन दोस्तों, रिश्ते की मांग और रिश्ते की नींव अगर मांगने पर रखी जाए तो क्या वह नींव मजबूत रह पाएगी? क्या अपनी सोच बदलनी होगी? और शादी को आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि जीवन भर साथ समझना होगा। और मुझे लगता है कि जहाँ रिश्ते में मांग हो वो रिश्ता कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि आज आपसे मांगा जा रहा है, कल को शादी होने के बाद आपके ऊपर और दबाव डाला जाएगा, आपकी बेटी के ऊपर और दबाव डाला जाएगा कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ पर ये मांगे आती वहाँ रिश्ता खत्म करो। दुनिया में बहुत लड़के हैं यार, और आजकल मुझे लगता है कि लड़कियां कंधे से कंधे मिला के चल रही है, उनके माता पिता उनके पैसे पढ़ाई में इतने पैसे लगा रहे हैं, तो वो भी सोचो। और दहेज प्रथा मुझे लगता है कि जड़ से खत्म कर देनी चाहिए।
4: बिल्कुल, ये बैन होना चाहिए। और रीना बताएं, सरकारी नौकरी और दहेज, जिनकी सरकारी नौकरी होती है उनकी भी बहुत सारी डिमांड्स होती है, हम सबको नहीं इन्वॉल्व करेंगे,
0: उनकी तो और भी ज्यादा डिमांड होती है। पता नहीं कौन से 30 मार्क खान से वो पढ़कर आते हैं, कहाँ से पढ़कर आते हैं, जो उनके अंदर भी सोच भी वैसी आ जाती है। मतलब कह रहे हैं ना, जितने शिक्षित हो रहे हैं लोग उतनी ज्यादा मांगे बढ़ती जा रही है।
4: अक्सर सुनने को भी मिलता है कि लड़का सरकारी नौकरी में है, इसीलिए मांग तो होगी ही, लेकिन जरा सोचिए श्रोताओं, क्या सरकारी नौकरी किसी इंसान की कीमत तय करती है? सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मेहनत और उपलब्धि है और उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन शादी के बदले किसी परिवार से कार या लाखों रुपए मांगना सम्मान नहीं बल्कि दबाव बन सकता है। सवाल ये होना चाहिए कि लड़का और लड़की एक दूसरे को कितना समझते हैं, उनके विचार कैसे हैं और वे जिंदगी साथ कैसे बिताएंगे। नौकरी अच्छी हो सकती है लेकिन अच्छा इंसान होना उससे भी बड़ी बात है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, अरे बिल्कुल, इंसानियत अच्छा होना चाहिए बस।
4: देखो, अगर इंसान के पास बहुत पैसा हो और वो इंसान हमें ना समझे
0: तो क्या फायदा,
4: उस रिश्ते में फिर इंसान नहीं रह पाएगा।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आजकल इंसान पता है क्या देखता है, कोई भी हो पैसे वाले के घर शादी होना चाहिए। ये नहीं पता कि भाई जिस पैसे, देखो हर किसी को हम नहीं कह सकते, बहुत से ऐसे हैं जो दहेज के बिल्कुल खिलाफ लेते ही शादी में पैसे, और बहुत ऐसे होते हैं नहीं भैया हमें तो पूरा खजाना ही दे दो। मतलब लगता है कुबेर जी को ही दान में दे देना चाहिए उनको, तो
4: बेटी तो वो देते ही देते हैं, साथ में वो इतनी डिमांड्स भी लोग करते हैं। पर रीना, मुझे ऐसा लगता है, देखो जो अपने जिगर का टुकड़ा देता है अपनी बेटी को पाल पोस कर बचपन से बड़ा कर वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे घर में करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा और क्या दान हो सकता है जिसने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन बहुत से नहीं समझते है ना, मुझे लगता है कि देखिए आज आप किसी की बेटी के लिए मतलब अपने घर में शादी करके ला रहे हैं, उस दहेज ले रहे हैं, लेकिन क्या पता आपके घर में भी लड़की होए और आपकी आपसे बोला जाए डबल यानी कि दहेज दो, तो आप उस टाइम सोचेंगे कि मैंने शायद गलत करा था दहेज लेके। इसीलिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा तो देखो भरना पड़ेगा आपको। तो खुशी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम्हें कार चाहिए या साथ चाहिए?
4: देखो, कार तो मैं खुद भी पैसे कमाकर ले सकती हूँ, बट तुम्हारा साथ मुझे चाहिए क्योंकि वो मिलना बहुत मुश्किल है।
0: ये तो बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन आज मुझे हमें दुनिया को बताना है ना कि कार नहीं साथ ढूंढो, क्योंकि आज के समय में साथ किसी का पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है श्रोताओं। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शादी की बातचीत में कभी कभी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि क्या क्या मिलेगा, कार होगी या नहीं, इतने गहने होंगे या नहीं। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कभी इस सवाल को बदलकर देखिए, पूछिए क्या दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे, मुश्किल समय में साथ खड़े होंगे, क्या लड़की अपने सपने पूरे कर पाएगी। क्योंकि कार सड़क पर साथ चल सकती है, लेकिन जिंदगी के रास्ते पर साथ चलने के लिए समझदारी चाहिए,
5: इसीलिए शादी में चीजें कम और समझ ज्यादा हो तो ये रिश्ता कहीं ज्यादा खूबसूरत बन सकता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कार चाहिए दहेज में तो सावित्री जैसी पत्नी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर सावित्री जैसी पत्नी चाहिए तो कार नहीं, समझ होनी चाहिए आप सी में, ताकि वो यमराज जब आपकी प्राण लेकर जाना तो उसके पीछे पीछे जाकर लेकर अपने पति का प्राण लेकर आ जाए।
4: बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि देखिए अगर आपको सावित्री जैसी पत्नी चाहिए तो उसके लिए आपको डिमांड्स नहीं, अच्छी लड़की दिखनी चाहिए, अच्छा व्यवहार, अच्छा नेचर, क्योंकि हमेशा ना इंसान अच्छा होता है तो हर चीज हम खरीद सकते हैं।
5: हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप उसका साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर
4: करता है जिंदगी में। तो अभी ना हम
5: आगे बढ़ेंगे अपने शो में,
4: लेकिन एक पहले गाना तो सुन ले यार, बहुत बातें हमने कर ली है, एक म्यूजिकल ब्रेक होना भी जरूरी है, उसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है म्यूजिक के बिना।
5: ये गाना सुनेंगे सासू जी तूने
4: कदर न जानी।
5: ये गाना सुनने वाले श्रोताओं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत और हम लौट कर आ चुके हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है महिला मंच और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी और मेरे साथ में रीना जी भी हैं यहाँ पर। और दोस्तों, माता पिता का दबाव, बेटी की शादी हर माता पिता के लिए खुशी का पल होता है, लेकिन जब सामने से लगातार मांगे आने लगती है तो ये खुशी चिंता में बदल सकती है। कई माता पिता अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए, लेकिन दोस्तों, बेटी की शादी की खुशी उसके माता पिता की आर्थिक मजबूरी पर नहीं टिकी होनी चाहिए। माता पिता ने बेटी को प्यार दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिए, ये किसी भी महंगे सामान से कहीं ज्यादा कीमती है। बेटी की विदाई मुस्कुराती हुए होनी चाहिए, कर्ज के बोझ के साथ नहीं।
1: ये तो बिल्कुल 100% तुमने सही कही है, कर्ज के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से मिडिल क्लास फैमिली में कर्ज भी लेना पड़ता है यार, तो वो इसलिए लेना पड़ता है ना कि दहेज की मांगे होती है। जब दहेज की मांगे ही नहीं होंगी तो कर्ज भी मुझे लगता है कि नहीं लेना
0: पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा, या आई एग्री विद यू रीना।
1: हाँ, तो देखिए श्रोताओं, बहुत से घरों में लड़कियों को बोझ माना जाता है। बेटी कोई बोझ नहीं, हम अक्सर कहते हैं बेटी को अच्छे घर में भेजना है, लेकिन अच्छा घर आखिर किसे कहेंगे? वह घर जहाँ बहुत सम्मान हो या वह घर जहाँ बेटी को सम्मान मिले? मेरे हिसाब से अच्छा घर वही है जहाँ बेटी को अपनेपन का एहसास मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसे बराबरी का अधिकार मिले। बेटी कोई जिम्मेदारी नहीं जिसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है, वह परिवार का हिस्सा है, एक इंसान है अपने सपने और अपनी पहचान के साथ। इसीलिए उसके शादी में सबसे जरूरी बात दहेज की ना करे, अच्छे रिश्ते की करे।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लड़की की जिम्मेदारी दहेज प्रथा को खत्म करने की बात होती है। तो हम अक्सर सिर्फ लड़के वालों की तरफ देखते हैं, लेकिन बदलाव की सबसे मजबूत शुरुआत खुद लड़का कर सकता है। अगर कोई लड़का शादी से पहले साफ कह दे मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, तो ये बात बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। क्योंकि शादी में लड़की की आवाज़ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपने परिवार से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन गलत मांग के सामने अपनी बात रखना भी जिम्मेदारी है। एक युवा की ऐसी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन सकती है। क्यों रीना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत फैमिलीज में मैंने देखा है कि लड़का डिमांड नहीं करता है, उसके पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन लड़का उसी वक्त अगर वहाँ एक्शन ले, अपने पेरेंट्स को बोले, तो चीजें संभल सकती हैं।
1: बिल्कुल संभल सकती है यार, और मुझे लगता है कि दहेज पर जो पैसे मिलते हैं, जो सामान मिलते हैं, उस पर कितने दिन तक राज कर पाओगे? एक महीना, दो महीना, उसके बाद फिर से वैसा ही। तो क्यों ना हम अपने बलबूते पर आगे बढ़े। जो भी सामान खरीदना है, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचकर जो भी आप काम करेंगे ना, तो देखिए आपके पास लक्ष्मी कैसे भागती भागती आएगी। लेकिन मन में जब वही पाप भरा होगा तो लक्ष्मी भी नहीं टिकती है वहां पर। इस चीज को जरूर सोचें। और मुझे ना ये लगता है कि लड़कियों को भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब लड़कों की सुनी जा सकती है तो लड़कियों की क्यों नहीं सुनी जा सकती है। मुझे लगता है कि उनकी बातें भी सुननी बहुत जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में शादी से पहले लगातार मांगे रखी जा रही हो तो लड़की और उसका परिवार उस पर खुलकर बात कर सकते हैं। शादी जिंदगी का बड़ा फैसला है और इसमें आपकी सहमति, आपकी खुशी और आपका मान सबसे जरूरी है। सिर्फ इसलिए किसी बात को स्वीकार करना जरूरी नहीं। अब रिश्ता तय हो गया है या लोग क्या कहेंगे, सही रिश्ता वही है जहाँ दोनों परिवार एक दूसरे का सम्मान करे और दोनों की खुशी को महत्व दे। ये बिल्कुल सच है। कभी कभी रिश्ता तय हो जाने के बाद ये कहा जाता है, बहुत से हमने न्यूज भी देखी है जहाँ पर बारात मतलब लड़की के घर पर चले जाते हैं और वहाँ से वापस ले जाते हैं।
0: बारात वापस,
1: या फिर ये होता है कि बारात की पूरी तैयारी हो जाती है और लड़के वाले से कॉल आता है कि इतने लाख पैसे अभी पहुँचाओ तब हम आएंगे आपके घर, वरना शादी कैंसिल, ऐसे भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है जब ऐसे ऐसी बातें आती हैं तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचिए, जब आपकी बेटी ही नहीं रहेगी तो इज्जत का क्या करिएगा। इसीलिए भाई मुझे लगता है कि जब आप शादी तय होती हैं वहाँ पर अच्छे से बातें हो जाना चाहिए, और जहाँ पर मांग हो मुझे लगता है कि मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि वहाँ शादी कैंसिल कर देना चाहिए।
0: मुझे लगता है रीना, देखिए शिक्षा सबसे बड़ा उपहार है। अगर बेटी की शादी के लिए पैसा बचा रहे हैं तो उसके साथ साथ उनकी उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता में भी निवेश कीजिए, क्योंकि एक
1: और एक बात और, जितना पैसा हम दहेज में लगाते हैं अगर उतना ही पैसा बेटियों को पढ़ाने में आगे बढ़ाने में लगेंगे तो मुझे लगता है कि जब वो भी अपने पैर पर खड़ी रहेगी और लड़का भी अपना पैर पे
0: तो वही मैं
1: तो वहाँ दहेज की बात ही नहीं आई।
0: हाँ, तो वही मैं कहना चाह रही तुमसे कि अगर बेटी की शादी के लिए पैसा बचा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता में भी निवेश कीजिए, क्योंकि एक महंगा सामान कुछ समय बाद पुराना हो सकता है लेकिन शिक्षा जिंदगी भर साथ रहती है। बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दीजिए, उसे फैसले लेने का आत्मविश्वास दीजिए, उसे ये एहसास दिए कि शादी उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसकी पूरी पहचान नहीं। जब बेटियां शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तो दहेज जैसी सोच के खिलाफ उनकी आवाज भी मजबूत होगी।
1: ये तो बिल्कुल बात सही कही है तुमने। और एक और बात जो आज के समय में ना मतलब एक दूसरे को देखा देख बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो है दिखावे की शादी। आजकल
0: मैंने अगर 50 लाख की शादी की है तो यार मैं 60 लाख की शादी करूंगा।
1: हाँ, ये रहता है आज के टाइम में, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज देखते हैं बड़ा वेन्यू, महंगे कपड़े, शानदार सजावट और लाखों का खर्चा। खुशी मनाना गलत नहीं है, लेकिन जब दिखावे के लिए परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने लगे तो हमें रुककर सोचना चाहिए। शादी कुछ घंटों का समारोह है लेकिन वैवाहिक जीवन सालों का सफर, इसलिए शादी में दिखावा कम और समझदारी ज्यादा हो। आखिरकार जिंदगी की खूबसूरती वेडिंग डेकोरेशन से नहीं रिश्तों की समझदारी से बनती है।
0: दहेज और आत्मसम्मान, देखिए दोस्तों दहेज की मांग सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं होती, कई बार ये परिवार के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाती है। सोचिए कोई परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कहीं रिश्ता ना टूट जाए। क्या ऐसा रिश्ता सच में मजबूत हो सकता है? रिश्ते में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर शुरुआत ही दबाव से हो तो आगे चलकर समर्थ और बराबरी कैसे आएगी? इसीलिए दहेज के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ पैसा बचाना नहीं बल्कि अपने सम्मान की रक्षा करना है। तो दोस्तों अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आएंगे और भी आपसे इसी विषय पर चर्चा करने लगे। तो बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और इसी के साथ अर्जेंटीना फिर से आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है महिला मंच शो में। और अब बात करने वाले हैं कि हर किसी के जुबान पे एक ही बात होता है, लोग कहेंगे, है ना। हमारे समाज में एक वाक्य बहुत कुछ बदल देता है, लोग क्या कहेंगे। कई बार इसी डर से परिवार ऐसी मांगे भी मान लेते हैं जिन्हें वे खुशी से नहीं मजबूरी से पूरा करते हैं। लेकिन जिंदगी आपको और आपकी बेटी को जीनी है, समाज को नहीं। कुछ लोग कुछ दिन बात करेंगे और फिर अपने जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन कोई फैसला जिंदगी भर परेशानी बन जाए तो उसका असर परिवार को ही झेलना पड़ता है। इसलिए फैसले समाज के दबाव से नहीं, समझदारी और अपनी क्षमता को देख कर लेनी चाहिए, ताकि आपको आगे पछतावा ना होए।
1: बराबरी का रिश्ता, रीना आजकल बराबरी बहुत देखते हैं लोग। अगर मैं इतना कमाता हूँ तो उसका स्टैंडर्ड भी इतना ही होना चाहिए, है ना। लेकिन शादी का सबसे खूबसूरत शब्द क्या है? साथ। और साथ तभी खूबसूरत होता है जब उसमें बराबरी हो। और एक परिवार अपनी बेटी को प्यार और सम्मान के साथ रहा है तो दूसरे परिवार की जिम्मेदारी भी है कि वह उसे उसी सम्मान के साथ स्वीकार करे। शादी में किसी एक को छोटा या बड़ा समझने की जरूरत नहीं, दोनों परिवार बराबर हैं, दोनों बच्चे बराबर हैं और दोनों की खुशियाँ बराबर हैं। तो मुझे लगता है रीना कि दहेज की जगह अगर बराबरी आ जाए कितने ही रिश्ते ज्यादा मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं ना। अगर रिश्ते यहाँ पे एकता हो, है ना, कि देखिए वो लड़की भी मेरी मतलब इक्वल है और मैं भी, दोनों को एक समान देखा जाए। ये नहीं कि वो गरीब घर से आई है, मिडिल फैमिली से आई है, मैं रिच फैमिली से हूँ तो उसकी वैल्यू कम करते हैं कि ये तो मिडिल फैमिली से लड़की है, मिडिल क्लास लड़की है, इसकी क्या रिस्पेक्ट करना। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप एक दूसरे से रिश्ते में बनते हैं, एक दूसरे से रिश्ता होता है, तो वहाँ पर आपको एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट, बराबर सम्मान, प्यार देना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये तो है। ये चीजें अगर दुनिया में सबकी सोच ऐसी हो जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की परेशानी ही नहीं आएगी किसी की भी जिंदगी में। कई बार दहेज की शुरुआत बहुत छोटी मांग से होती है, बस इतना ही और चाहिए। लेकिन यही छोटी सी मांग आगे चलकर बड़ी अपेक्षाओं का रूप ले सकती है। और जब परिवार एक मांग पूरी करता है तो अगली मांग के लिए रास्ता खुल जाता है। इसीलिए शुरुआत में ही अपनी सीमाएं और अपनी सोच स्पष्ट रखना जरूरी है। शादी में उपहार देना अगर खुशी और अपनी इच्छा से हो तो अलग बात है, लेकिन मांग और दबाव बिल्कुल अलग चीजें हैं। फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्या उपहार भी दहेज होता है खुशी?
1: नहीं, दहेज और उपहार दोनों में डिफरेंस है। दहेज हम देने की इच्छा नहीं होती, दहेज जबरदस्ती दिया जाता है,
0: वो ना मांगा जाता है।
1: मांगा जाता है, लेकिन अगर बात करें उपहार की तो उपहार हम अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं,
0: अपनी बेटी के लिए देते हैं।
1: हाँ, तो दोस्तों आजकल बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्टडी कर रही हैं, हर फील्ड में वो हर क्षेत्र में किसी कंधा मिलाकर चल रही हैं, बराबरी कर रही हैं। और आज की बेटियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं और अपने सपने पूरे कर रही हैं। ऐसे में सबसे खूबसूरत तोहफा ये है कि उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसे ये भरोसा मिले कि अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आत्मनिर्भर बेटी सिर्फ अपनी जिंदगी मजबूत नहीं करती बल्कि पूरे परिवार को मजबूत बनाती है। इसीलिए बेटियों के भविष्य में निवेश कीजिए, उनकी पढ़ाई, स्किल्स और कॉन्फिडेंस में यही असली संपत्ति है।
0: ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। रिश्ते की असली कीमत, अगर कोई रिश्ता सिर्फ वह वजह से टूट जाए कि सामने वाला परिवार कार या पैसा नहीं दे सकता, तो शायद हमें उस रिश्ते की असली कीमत पर विचार करना चाहिए। रिश्तों की कीमत बैंक बैलेंस से नहीं, व्यवहार से तय होनी चाहिए। जीवन साथी ऐसा हो जो बीमारी में साथ दे, मुश्किल समय में साथ पकड़े और आपकी खुशियों में दिल से खुश हो। ऐसी चीजें किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती, इसीलिए शादी में सबसे पहले इंसान देखे, सम्मान नहीं देखा जाता है। श्रोताओं, देखिए सम्मान तो आप जितनी मर्जी खरीद लेंगे, लेकिन है जब उसमें प्यारी समझ ही नहीं होगा, एक दूसरे का साथ ही नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा ऐसी दहेज का। इस पे सोचिएगा जरूर आप। मैं अर्जेंटीना बोल रही हूँ आप सभी से, और मुझे मैसेज करके भी आपने बताना है। नंबर है 9837896 1866 पर कि दहेज के प्रति आपका क्या राय है, क्योंकि देखिए हमारे साथ साथ मुझे लगता है कि आपकी भी राय हमारे लिए बहुत, मतलब ऐसा कुछ तो लगेगा कि हम आप सभी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपका फीडबैक जब तक ना आए तो मजा नहीं आता। इतनी मेहनत करो तो थोड़ा बहुत फीडबैक बनता है श्रोताओ। जल्दी जल्दी मैसेज करिए, वेट कर रहे हैं हम आपके मैसेज का, देख लीजिए। अब आप
1: बेटियों को सिर्फ ये मत सिखाइए कि शादी के बाद सबको खुश रखना है, उन्हें ये भी सिखाइए कि अपना सम्मान कैसे पाएं, और उन्हें ये भी बताइए और उन्हें अपनी बात कहना सिखाइए, अपने फैसले लेना सिखाइए और गलत बात को गलत कहना सिखाइए। साथ ही बेटों को भी सिखाइए कि पत्नी किसी के घर से आई हुई जिम्मेदारी नहीं बल्कि बराबरी की साथी है। अगर बेटियों और बेटों की परवरिश में सम्मान और बराबरी होगी तो आने वाली पीढ़ी की सोच अपने आप बदल जाएगी। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी शादी जहाँ कोई मांग नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तुलना नहीं, दोनों परिवार की खुशी से मिलें, बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू करें और माता पिता के चेहरे पर सिर्फ संतोष हो। ऐसी शादी शायद बहुत महंगी ना हो लेकिन उसकी यादें बहुत कीमती होंगी। दहेज मुक्ति शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, एक संदेश है कि हम रिश्तों को सम्मान से ऊपर रखते हैं और हर परिवार अपने स्तर पर इस बदलाव की शुरुआत कर सकता है। क्यों रीना, कितनी अच्छी रहेगी ना ये शादी। हाँ। ना कोई दहेज
0: और क्या, मतलब दहेज ना हो जहाँ वहीं पे पता क्या रिश्तों की समझ होती है ना, उस हाँ। जगह पे दहेज नहीं लिया जाता है। तो श्रोताओं, हर चीज के बारे में हमने बात करी लेकिन अब हम बात करते हैं बेटी की खुशी। बेटी की खुशी, बेटी की शादी में माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है, यही कि उसकी बेटी खुश रहे। तो फिर उसकी खुशी को सम्मान और पैसे से क्यों जोड़े। बेटी के चेहरे की मुस्कान क्या किसी कार से बड़ी है, उसका सम्मान किसी गहने से ज्यादा कीमती है, उसका सुरक्षित और खुशहाल जीवन किसी बड़े समारोह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए बेटी की शादी में खर्च करने से पहले ये जरूर सोचिए कि उनके आने वाले जीवन में उसे किसी चीज की सबसे बड़ी जरूरत क्या होगी, सम्मान या समझदारी, सम्मान देने वाले साथी, ये जरूर ध्यान दीजिए। तो श्रोताओं, आज का जो मेरा ये सवाल है उन युवाओं, उन जेन जी से जो अब शादी करने जा रहे हैं, तो आप अपने होने वाले जीवन साथी से क्या चाहते हैं, प्यार, सम्मान, समझदारी, साथ। अगर यही आपकी जरूरतें हैं फिर उसके परिवार से अतिरिक्त सम्मान की मांग क्यों। और अगर आप लड़की है तो क्या आप ऐसे रिश्ते को स्वीकार करेंगी जहां आपकी पहचान से ज्यादा आपके परिवार की आर्थिक क्षमता देखी जाए। बदलाव का सबसे अच्छा समय आज है और शुरुआत हमारी अपनी सोच से ही होती है और सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। श्रोताओं,
1: बात करते हैं मई का और ससुराल की। तो शादी के बाद बेटी दो परिवार से जुड़ती है। मई का चाहता है कि बेटी खुश रहे और ससुराल चाहता है कि नई बहू परिवार का हिस्सा बने, लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत तभी खूबसूरत होगी जब दोनों तरफ से सम्मान हो। मायके की आर्थिक क्षमता को बेटी के सम्मान से जोड़ना सही नहीं और उन्हें और ससुराल को ये भी समझना चाहिए बहू अपने साथ सिर्फ सामान नहीं अपने सपने और भावनाएं भी लेकर आती है, उसे अपनाइए, उसकी कीमत मत लगाइए। और दोस्तों, एक पिता की चिंता, एक पिता बेटी की शादी के लिए कितने सपने देखता है, लेकिन अगर उन सपनों के बीच लगातार ये डर रहे कि मांग पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, तो खुशी अधूरी रह जाती है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जहां पिता बेटी को विदा करते समय ये ना सोचे कि मैंने कितना दिया, बल्कि ये महसूस करे कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार, शिक्षा और आत्मविश्वास दिया है और अब वह एक नए परिवार में सम्मान के साथ अपनी जिंदगी शुरू करेगी, यही सबसे बड़ी खुशी है। और दोस्तों, शादी का असली उपहार क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए कि शादी में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होना चाहिए तो मेरा जवाब होगा विश्वास, क्योंकि गहने खो सकते हैं, सामान खराब हो सकता है, लेकिन विश्वास और सम्मान रिश्तों को जिंदगी भर संभाल सकते हैं। शादी में दोनों परिवार अगर एक दूसरे को सम्मान दें और बच्चों के फैसलों का साथ दें तो यही सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए दहेज की सूची छोटी कीजिए और प्यार, विश्वास और समझदारी की सूची लंबी कीजिए। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब हमें भी दीजिएगा जाने की अनुमति। हम मिलेंगे आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। और हाँ, हमारा आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा और हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। आप चाहें तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, अब वो आपकी च्वाइस है। धन्यवाद। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए, आप तो दीदार बहन भाई का कर रहे हैं और भाई बहन का दीदार कर रहे हैं, क्योंकि इतना प्यारा जो पर्व है रक्षाबंधन का, तो आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मुझे कॉल लगा सकते हैं एंड अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। आज अगर बहन मुझे सुन रही है इस वक्त, तो आप अपने भाई को स्पेशली कोई भी ट्रैक डेडिकेट करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं। जल्दी से हमें कॉल लगाइएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और बात करते हैं अभी अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: लतीफ अहमद, रैना, कश्मीर से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत अच्छा है मैडम, आप ठीक हैं?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। बताइएगा, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: हमें सुनना है गाना रक्षाबंधन की, लता मंगेशकर की आवाज में, छोटे बहन की।
0: अच्छा, ओके।
1: हाँ जी,
0: तो बताइएगा आपके यहाँ मौसम कैसा है सर?
1: मौसम तो मैडम ऐसा मौसम, ऐसा गर्मी है, अभी बहुत गर्मी है, अभी 35 डिग्री से ज्यादा गर्मी है यहाँ।
0: अच्छा,
1: हाँ, आजकल तो बहुत गर्म
0: है। मतलब बारिश नहीं हुई अभी वहाँ पर?
1: होता रहता है बारिश, लगभग 1 घंटा आधा घंटा तो बारिश आता है, फिर तो मौसम क्लियर हो जाता है।
0: ओके, मौसम ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा ट्रैक, आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट हमें की है।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक सर के पसंद का और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। जल्दी से कॉल लगाइए बिना किसी देरी के, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। और सुनिएगा अभी ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ, मुस्कुराते भी रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, वक्त हुआ है 3:23 और हमारे साथ हमारी नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गई है, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, बताइए आप कैसे हैं?
0: हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा।
1: मैं फ्रॉम प्रकाश से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से आपकी रेगुलर लिस्टनर लाइबा असम साहब से बात कर रही हूँ।
0: जी, काफी समय की बात कॉल किए हैं आपने लाइबा।
1: हाँ मैम, मेरी काफी टाइम बाद बात हो रही है, बर्थडे पे बात की थी एंड आज मेरी दोबारा कॉल लगी है, तो काफी अच्छा फील हो रहा है इसी मंथ में।
0: तो कैसा रहा आपका बर्थडे?
1: बर्थडे बहुत अच्छा रहा मैम, एंड मेरा आज का फेस्टिवल भी बहुत अच्छा रहा है, एंड आपको हैप्पी रक्षाबंधन।
0: सेम टू यू। और आपको जुकाम हो गया है?
1: हाँ, थोड़ी सी तबीयत खराब है, बाकी मैं ठीक हूँ।
0: ओके, चलिए जल्दी से ठीक हो जाएंगे आप। तो बताइएगा, आज आपने हमें कॉल किया है लाइबा, क्या सुनोगे आप?
1: मैम, मूवी का नाम है दीवानगी और उसमें एक सॉन्ग है ये आखे कयामत कयामत कुछ इस तरह से, उसमें सॉन्ग है मतलब अल्फाज है। एंड मैम, मैं कुछ नाम ले सकती हूँ?
0: यस, ले सकती हूँ नाम, आज परमिशन है आपको।
1: अच्छा, आज परमिशन है, पहले नहीं मिलती मुझे, तो हमेशा मिलती है परमिशन।
0: हाँ, हमेशा मिलती है, लेकिन अभी क्या हो गया है ना, हम सोचते हैं कि थोड़े से नाम कम हो जाए, क्योंकि पता है क्या होता है, उसे ना थोड़ा सा टाइम मैनेज हो जाता है, एंड बहुत सारे लिस्टनर ऐसे होते हैं ना लाइबा कि वो बहुत सारे नाम ले लेते हैं, तो उसमें ना
1: अगर फिर नाम कम लेंगे तो फिर सारे दोस्त नाराज हो जाएंगे।
0: हाय रब्बा, तो ऐसा कर सकते हैं ना, कोई ऐसा सोल्यूशन तो होगा ना जहाँ पर नाम भी ना लेना हो और काम भी हो जाए। तो बताइएगा, ये ट्रैक आप किन के नाम करना चाहती हैं आज?
1: मैम, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से मोहम्मद कामिल, मेरी बेस्ट फ्रेंड है फूस फातिमा, शुभम दी, दक्षा फातिमा, नजमा सैफी, फाबिया सैफी एंड रुकैया एंड आप।
0: ओके, इतनी लंबी लिस्ट हो गई है।
1: हाँ,
0: एक नाम मेरा छूट गया है,
1: क्षमा
0: पर भी। छोटी नहीं है, अभी बड़ी हो गई है काफी पहले से।
1: मैं तो चाहती हूँ कि मैं सभी के मतलब जितनी भी फीमेल्स हैं उन सबको इंक्लूड कर दूँ अपनी लिस्ट में, ताकि वो भी खुश और मैं भी खुश।
0: या और अच्छा लगता है ना, जितनी भी हमारी फ्रेंड्स बनते हैं ये रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं।
1: जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो मैं आपको भी नहीं जानती थी, एंड मेरी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई कि आज के टाइम में मुझे खुद को लगता है कि हाँ, मेरे यहाँ पे बहुत सारे मतलब पर्सन हो गए जानने वाले, तो मुझे भी अच्छा ही वाइब आती है,
0: अच्छा लगता है। और इंतजार भी होता है कि जैसे ही किसी का मतलब कॉल आता है हेलो फरमाइश में, तो आपकी कोई जानने वाली है, तो आपको भी लगता है अरे ये तो उनका कॉल आया है, तो वो एक एक्साइटमेंट।
1: कुछ पर्सन ऐसे हो गए मेरी लाइफ में कि जैसे वो हेलो करते हैं ना, या मतलब मैं हेलो करती हूँ तो वो जरूर पहचान लेते हो गए कि हाँ, ये हमारी जानने वाली है और ये मेरे जानने वाले
0: हैं। हाँ, और चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है।
1: हाँ, क्योंकि वो जब हमारे नाम मतलब लेते हैं ना सामने वाले पर्सन, तो एक अलग ही खुशी होती है कि हाँ, इनकी लाइफ में हमारा कुछ ना कुछ तो है कि हम हमारे नाम इंक्लूड कर रहे हैं ये अपनी लिस्ट में।
0: पर दिल से दिल का रिश्ता है ना।
1: बिल्कुल मैम, आपके साथ भी तो मेरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है।
0: यस, तो सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको, थैंक यू कॉल करने के लिए डियर,
1: मोस्ट वेलकम,
0: बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और लौटते रहते हैं, तब तक आप कहीं मत जाइए, हमें जल्दी से फोन मिलाइए, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी दीवानी सी, अलका याग्निक और साथ में सुखविंदर सिंह जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से और कौन कहां से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जिला रामपुर तहसील फौर से जावेद अली बात कर रहा हूँ मैम।
0: अच्छा जी, बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है मैम, और आप कैसे? आप बताइए, आप जी राखी भी बंधवाई?
0: हाँ जी, हमने राखी बांधी भी है और राखी बंधवाई भी है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी,
1: हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, तहे दिल से। बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनेंगे आप?
1: नरसिम्हा फिल्म का गाना है, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। मैं ये गाना सुना देना।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपने चुना है, तो सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको सर। शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: ओके मैम, धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। लौट कर आती हूँ मैं इस प्यारे सी गाने के इस पार, आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। और हाँ, जल्दी से मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। बहुत सारे लिसनर बोल रहे हैं कि मैम आज तो आपकी छुट्टी है ना, आज आप राखी फेस्टिवल है ऑफिस। मैंने कहा देखिए, फेस्टिवल तो हमने सेलिब्रेट कर लिया है और जब प्यारे प्यारे श्रोताओं के साथ जुड़ने का मौका मिले तो कैसे मिस कर सकते हैं हम। हाँ, और सुनिएगा ये शानदार से गाना, मैं लौट कर आती हूँ।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07052।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून।
1: राधे
0: राधे। राधे राधे आपको भी।
1: जी पहले तो पूरी एफएम अपने परिवार की रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनों के लिए।
0: आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
1: थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम सर। आपका अपना नाम तो बता दीजिएगा।
1: जी मेरा नाम हरपाल सिंह है।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हरतला गंगा मंदिर के पास मुरादाबाद।
0: जी
1: जी मैम,
0: बताइएगा आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ब्लेसिंग ऑफ सिस्टर के नाम से है एक मैम।
0: ओके, पंजाबी ट्रैक है राइट, रक्षाबंधन स्पेशल। ठीक
1: है, सभी बहनों के लिए डेडिकेट है और पूरी अपने एफएम परिवार के लिए।
0: थैंक यू सो मच सर। सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको भी और आपकी पूरी फैमिली एंड जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं सब एंजॉय करेंगे।
1: जी जी जी, हम पूरी फैमिली के साथ हैं आज मैम।
0: कैसा लग रहा है आज पूरे परिवार के साथ हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। बच्चे भी और वाइफ भी सब साथ ही हैं यार।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: बड़ा अच्छा लग रहा
0: है। ऐसे ही हमेशा फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। सुनवाते हैं आपके पसंद का ये शानदार से गाना। तो चलिए एवरीवन, ये सुंदर ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद आपसे भी बातचीत करने का आपको अवसर मिलेगा, मुझसे बात करने का एंड अपना प्यारा से गाना सुनने का, अपना फेवरेट। तो जल्दी से कॉल लगाओ, बिना किसी देरी के मैं इंतजार कर रही हूँ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों, राखी के धागे बेशक कच्चे होते हैं, लेकिन उनसे जुड़े रिश्तों की डोर उम्र भर मजबूत रहती है। एक बहन की दुआओं में हमेशा अपने भाई की सलामती होती है और यही दुआ इस रिश्ते को सबसे खूबसूरत बनाती है। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं श्रोताओं, और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम प्रिंस शर्मा।
0: प्रिंस शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बताइएगा, क्या सुनना चाहते हैं आप? सर
1: गाना गुमना चाहते हैं, तेरे इश्क में पागल हो गया।
0: ओके, और ये ट्रैक आप किनके लिए सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, नहीं, ये आदि मैडम के लिए।
0: अच्छा, ओके, तो सुनवाते हैं प्यारा गाना आपको। शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू। तो चलिए एवरीवन, सुनवा देते हैं सर को। सर कहते हैं कि मुझे अपनी माम के लिए ट्रैक सुनना है, तो उनकी मजे सुन रही है इस समय, और सुनवाते हैं प्यारा से गाना। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए एवरीवन। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। एंड अभी आपने सुना ये शानदार से गाना और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, आपको भी याद है, आप अपना नाम बताइएगा।
1: मैम मैं जिला रामपुर ग्राम से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ
0: जी। बताइएगा कैसे हैं आप सर।
1: बस एकदम अच्छे मैम, आप बताइए आप कैसी हो।
0: जी मैं भी ठीक हूँ सर, आप बताइएगा कहाँ पर है, रामपुर में या फिर यू नो दिल्ली में।
1: मैम गुड़गांव में इस टाइम।
0: अच्छा गुड़गांव में। ओके जी, बताइएगा कैसा मौसम है वहाँ का।
1: मैम यहाँ पर धूप निकल रही है।
0: अच्छा धूप निकल रही है, ओके। तो बताइएगा सर, आज आपने कॉल किया है काफी लॉन्ग टाइम की बात, क्या सुनना चाहते हैं आप।
1: मैम एक मूवी का नाम है नगीना।
0: हाँ जी।
1: और उसमें एक सॉन्ग है, आज कल याद कुछ रहता नहीं, एक आपके याद आने के बाद।
0: ओके, और ये ट्रैक आप किन के साथ सुनना चाहते हैं।
1: मेरे साथ में कुछ सुनने वाले हैं, जैसे सबसे पहले मेरे साथ में लावा काजमी।
0: हाँ जी।
1: मोहम्मद तालिक परवेज, बसम अकरम, मोहम्मद जानी सिद्दीकी, अनिसुर रहमान। मैम कुछ कहना चाहता हूँ मैं।
0: जी जी बिल्कुल कहिए सर।
1: दिल उनके लिए ही मचलता है, दिल उनके लिए ही मचलता है, ठोकर खाता है और संभलता है, किसी ने इस कदर कर लिया है इस दिल पर कब्जा, के दिल मेरा होकर भी उनके लिए धड़कता।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। कब से तैयारी कर के रखी थी आपने।
1: मैम तैयारी से जहाँ से बात होती है सोच लेते हैं कुछ शायरी सुना दी जाए।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी शायरी थी आपकी।
1: ऐसा होता है मैम, कुछ दिल में कुछ बातें होती है तो शायरी के जरिए
0: बयां
1: शेयर कर दी जाती है।
0: जी जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर।
1: कैसे नहीं है, आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, आंखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लबों की मुस्कान हो तुम, धड़कता है दिल बस तुम्हारी आरजू में, फिर कैसे ना कहूँ मेरी जान हो तुम।
0: अरे वाह क्या बात है, कमाल ही कर दिया कामिल साहब आपने तो। हाँ तो चलिए सुनवा देते हैं ये प्यारा से गाना आपको, ठीक है सर।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: देखिए दोस्तों, आपको कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन हाँ, 3 बजते ही घड़ी में आपको याद रहता है कि हेलो फरमाइश शो आने वाला है ना। सारे काम आप पहले ही कंप्लीट कर लेते हो एंड नींद भी पूरी कर लेते हो, और जैसे ही 3 बजते हैं ऑटोमेटिकली आपकी आंखें खुल जाती हैं। मैं जानती हूँ कि आप एफएम मुरादाबाद से कितना प्यार करते हैं और इस शो से भी, क्योंकि ये शो इसलिए स्पेशल है, यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए सबकी जो चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है, सबकी फरमाइशें अलग होती हैं और अलग अलग सिटी से यहाँ पर कॉल आते हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश क्या है यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हाँ बोलो, आगे केम छो? तो बोला ही नहीं आज आपने। मजा मा छो? तुम्हें केम छो?
1: हाँ
0: बिल्कुल अच्छा ही रहना चाहिए। बताइएगा क्या नाम है आपका?
1: जी जी, मैं जिला मुरादाबाद से आपकी पुरानी लिस्नर अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: जी बताइए अफरोज, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: मेरे हाल चाल इस टाइम पे ठीक है दी, आप बताओ आप कैसी हो?
0: हाँ मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छे हैं हम, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा क्या कर रहे थे इस वक्त, आप फ्री थे या बिजी थे?
1: नहीं दी, टाइम तो मैं बिजी थी, क्योंकि मतलब मेरी भांजी आई हुई थी तो वो अभी अभी यहाँ से गई।
0: अच्छा।
1: और मैं कार जॉब कर रही थी ना, पढ़ाई कर रही थी इस टाइम पे, तो मैंने सोचा मैं कॉल कर लूँ, कुछ ही देर से बात नहीं हुई है सब पे।
0: हाँ अच्छा किया आपने कॉल किया, बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: दी आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, बुलबुल बोले अंगना मेरे तो कब आएगा सजना मेरे।
0: बहुत प्यारा गाना है, और बताइएगा ये गाना आप किनके साथ सुनना चाहती है, कोई आपकी सखी?
1: हाँ दी, आपको पता ही तो है मेरे दोस्त कौन कौन है, लेकिन मैं नाम लेकर बताना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल बताइएगा।
1: जैसे कि मुजफ्फरनगर से मेरी बेस्टी लाइबा।
0: हाँ।
1: और मेरी सिस्टर नजमा, दरख्ता राबिया, रुपया आसिया, रामपुर से सबनम भी।
0: ओके तो
1: लाइबा की कॉल तो नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने अभी अभी मतलब रेडियो चालू किया है, मैं बिजी थी ना।
0: सेकेंड कॉल उन्हीं का था।
1: अच्छा दी,
0: यस
1: सुन नहीं पाई।
0: ओके कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि काम में बिजी होते हैं ना, इस वजह से।
1: हाँ दी, मेरी दोस्त ने बोला था मतलब कॉल करो खुशी दी को, लेकिन मैं बिजी थी कर नहीं पाई, लेकिन हाँ मैंने अब कर ली तो अब तो अच्छा लग रहा है। मैंने तो नहीं सुनी लेकिन वो तो सुन रही है ना।
0: हाँ ये हो सकता है आपने नहीं सुना, लेकिन वो शायद आपको सुन रही होंगी। और
1: बहुत दिनों के बाद उन्होंने कॉल की तो मैं सुन नहीं पाई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
0: अब आपने रेडियो क्यों नहीं ऑन करके रखा था, आप तो चलाते रहते हैं। हाँ
1: हाँ जी, वो मेरी भांजी आई हुई थी ना, तो इसलिए मैंने मतलब रेडियो चालू नहीं किया था।
0: ओके जब घर में मेहमान आते हैं ना तो थोड़ा व्यस्त भी हो जाते हैं।
1: हाँ जी, काम बहुत हो जाता है ना,
0: बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल, तो कोई बात नहीं है, आपकी आवाज सुनकर आपकी दोस्त अब मुस्कुरा रही होंगी, है ना। आप इंजॉय कर रहे हैं प्यारा से गाना, थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: हाँ सुनाइएगा।
1: दिल की बात जुबा पर लाए कैसे, दिल की बात जुबा पर लाए कैसे, तेरे जैसे दोस्त को भुलाए कैसे, जिंदगी तो एक खूबसूरत सफर है, जिंदगी तो एक खूबसूरत सफर है, तेरे जैसे दोस्त को भुलाए कैसे।
0: अरे वाह, बहुत प्यारी लाइन है यार।
1: जी जी
0: जी,
1: ये मेरे दोस्त के लिए थी।
0: ओके बहुत खूबसूरत लाइन थी आपकी।
1: और भी मैं आपको और जितने भी लिसनर सुन रहे हैं सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।
0: सेम टू यू, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी जी, अच्छा आप ये बताइए दी, मतलब आपका फेस्टिवल कैसा रहा?
0: मेरा फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा, एंड सुबह से ऑफिस में ही है अभी तक तो। एंड
1: मतलब पता है दी, आपको ना आज मतलब रेस्ट करना चाहिए था फैमिली के साथ।
0: ओह हो, लेकिन फिर आप सबसे बात कैसे हो पाती ये मुझे
1: कोई
0: बताओ।
1: बात नहीं है दी, हम कल बात कर लेते, कल नहीं करते तो परसों तो कर ही लेते ना आपसे।
0: अच्छा थैंक यू इतनी मोहब्बत के लिए।
1: जी जी, मैं सुबह भी बोल रही थी, मैं सोच रही थी खुशी दी को मतलब छुट्टी कर लेनी चाहिए थी आज।
0: अब छुट्टी मैं कर लेती, लेकिन दोनों भाई मेरे पास ही रहते हैं, और सुबह
1: हाँ, तो
0: राखी का फेस्टिवल साथ किया हम दोनों ने, तीनों बहन भाई ने मिलकर राखी सेलिब्रेट किया, फिर हमने कहा चलिए अब अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं।
1: हाँ भी, लेकिन मतलब त्योहार पे ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, मतलब त्योहार हो फिर साथ में फैमिली वालों के तो बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है
1: तो।
0: बिल्कुल, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी होती है ना, उन्हें भी निभाना पड़ता है।
1: ये तो है, सब तरफ को सोचना पड़ता है।
0: एग्जैक्टली राइट, बहुत समझदार है यहाँ
1: भी।
0: दोनों भाइयों ने मुझे कैश दिया है कि दीदी आप अपनी पसंद से कुछ भी ले लेना, क्योंकि
1: अच्छा,
0: थोड़े सा ना लड़कों में होता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि क्या लें बहनों के लिए।
1: हाँ, क्योंकि दिल हर किसी को नहीं आता ना।
0: हाँ, उनको पता है कि हमारी सिस्टर चॉकलेट खाती है, वो उन्होंने गिफ्ट की और मुझे कैश दिया दोनों ने।
1: दीदी मैं भी आऊंगी तो चॉकलेट लेके आऊंगी, मुझे भी बहुत पसंद है चॉकलेट।
0: अरे वाह, आप भी आइए, हम आपको खिलाएंगे।
1: दीदी क्योंकि okay. भी मतलब अब तुम अपनी पसंद से कुछ भी ले लेना जो आपको अच्छा लगे।
0: ठीक है दीदी, थैंक यू कॉल करने के लिए एंड नाइस टॉकिंग टू यू।
1: थैंक यू, बाय,
0: मोस्ट वेलकम, बाय, सेम टू यू। तो चलिए विफंस सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और आप भी मुझे जल्दी से कॉल लगाइए। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896 98 378 96

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और देखिए, वक्त हुआ है अभी 4:21। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश
2: जी। मैम,
1: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम है नितिन
1: जी। नितिन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं लाइन पार से बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद।
1: अच्छा, मुरादाबाद लाइन पार से आप बात कर रहे हैं। बताइएगा नितिन जी, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी मैं भी ठीक हूँ। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
2: आपको भी मैम, और जो एफएम परिवार हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी बताइएगा, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
2: मैम मैं हीना मूवी का सॉन्ग कहता हूँ, देर ना हो जाए।
1: ओके, तो सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको, ठीक है सर?
2: ओके मैम।
1: ओके, तो

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: देखिए दोस्तों, हमने बिल्कुल भी देर नहीं किए, हम फटाक से आ गए हैं आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। ये भी आपने बहुत ही प्यारा सा ट्रैक सुना लता मंगेशकर जी और साथ में सुरेश वाडेकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, फ्रॉम द मूवी हीना से। और बात करते हैं अभी अपने कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश
1: जी। हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: ओके जी, आदाब।
0: आपको भी आदाब, नाम बताइए अपना।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम खेतांड से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और आपकी दुआएं हैं। और मैं जानना चाहूंगा खुशी जी, आपकी फैमिली में और रहते हैं मुरादाबाद 89.6 में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं सर। आप
1: सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम तो यही कामना करते हैं ऊपर वाले से, आप हमेशा मुस्कुराते रहें।
0: जी सर, थैंक यू। बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनेंगे आप?
1: देखिए मैम, कक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और सभी सुनने वालों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ये एक भाई बहन का त्योहार है, साल में एक बार आता है।
0: बिल्कुल।
1: और क्या बोले, एक दूसरे के भाई बहन रूठ जाते हैं तो साल में एक बार त्योहार आता है, इसी बहाने से जो है त्योहार के माध्यम से ही भाई बहन में मिलाव हो जाता है।
0: बिल्कुल, जो नाराजगी होती है वो दूर हो जाती है।
1: जी
0: जी, तो बताइए सर, आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: लेकिन मैम मैं एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा पहले। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों से आंसू निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे।
0: अरे वाह, बहुत खूब।
1: और एक सॉन्ग है सलमान अली की आवाज में, इतनी चोट दिल पे हम लिए जा रहे हैं, तेरा नाम लेकर हम जिए जा रहे हैं।
0: ठीक है सर, सुनवा दी थी प्यारा गाना आपको।
1: और जी, और मैम मैं कहना चाहूंगा कि मत करना भरोसा किसी पर यहाँ, मत करना भरोसा किसी पर यहाँ, क्योंकि लोग अपने मतलब के लिए कितने भी झूठी खा लेते हैं।
0: ये तो है।
1: और मेरे साथ में मेरा कुछ फ्रेंड है मैम।
0: हाँ जी बताइए, कौन है आपकी दोस्त?
1: मेरा तो मैम दो ही दोस्त है, मोहम्मद कामिल, मोहम्मद तालिक परवेज, और जितने सुनने वाले सभी के लिए सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है सर, थैंक यू कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एवरीवन, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा, अभी आपके पास वक्त है।
2: हर जगह तुम्हारे लिए बदनाम हो चुके हैं,

गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 4:39। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा गाना सलमान अली खान जी की आवाज में, सलमान अली जी की आवाज में हिमेश रेशमिया जी का म्यूजिक था। और देखिए राखी फेस्टिवल है तो एक प्यारा सा राखी रक्षाबंधन स्पेशल गाना तो होना चाहिए ना। और ये ट्रैक मैं आपको सुनवाती हूँ फ्रॉम द मूवी रक्षाबंधन से, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक। आप बस यूं ही मुस्कुराइए और जल्दी से मुझे कॉल लगाइएगा।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: कोई मिल गया,
4: कोई मिल गया।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो सुन लेते हैं अभी अपने अगले कॉलर की फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो
1: फरमाइश।
0: यस, योर गुड नेम?
1: जूबिया।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद में कहाँ से बात कर रहे हो? जी बताइए, क्या फरमाइश है आपकी? सॉरी,
1: हेलो।
0: हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं आप?
1: दिल जले हो तुम,
0: ये ट्रैक सुनना चाहते हो आप? हेलो।
1: हेलो
0: जी, क्या कहना चाह रही हैं? प्लीज साफ साफ बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
1: दिल जले हो तुम,
0: ये गाना सुनना चाहते हो आप? ओके चलो सुनवा देते हैं, थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनवा देते हैं एक प्यारा सा ट्रैक और मैं लौट कर वापस आती हूँ। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। अभी आते हैं वापस एक प्यारे से ट्रैक के उस पर।

0: देखिए दोस्तों, वादा तो हमने भी आपसे किया था कि हम एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार आने वाले हैं और हम आ भी गए हैं। हमारे लास्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका?
1: नाम राजू है।
0: राजू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: निकट काली का मंदिर लालबाग के आसपास से।
0: ओके, मुरादाबाद में?
1: जी जी जी हाँ, काली का मंदिर है।
0: जी जी जी, बहुत पॉपुलर है, हम लोग भी वहाँ दर्शन करने गए हैं।
1: जी जी जी, उसी के पास अपना घर है।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आपको भी मैम, आपको भी, आपको पूरे परिवार को।
0: थैंक यू। बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: जी मैम, आप अपनी पसंद का सुनवा दो।
0: ओके ठीक है, हम अपनी पसंद से सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गाना।
1: जी मैम,
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए विवर प्यारा सा ट्रैक सुन लेते हैं और इसी गाने के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। और मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटती रहिए, अपनों के साथ रहिए एंड हाँ, अपनी हेल्थ का और फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय, कीप स्माइलिंग एवरीवन। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। श्रोताओं, आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आते रहते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है यानी कि किशोर अवस्था में बच्चों के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। और एक्चुअली में कभी ऐसा होता है कि हम घबराने लग जाते हैं, गलत भ्रांतियां हैं जो हम उनको सुन लेते हैं और उसको ही अपने लाइफ में फॉलो करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचे और तभी आप फॉलो कर पाएंगे। सो इसी से रिलेटेड हम बात करने के लिए आज मैं आई हूँ विमेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मेरे साथ डॉक्टर सोना मैम कनेक्ट है। तो मैम, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी पहले तो आपके बारे में।
1: नमस्कार रीना जी, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला जिला अस्पताल मुरादाबाद में।
0: मेरा सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था आखिरकार होता क्या है और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती
1: है? देखिए, किशोर अवस्था एक बहुत ही उम्र का ऐसा पड़ाव है जब एक बच्चा अपने उसका बचपन खत्म हो रहा है और वो वयस्क होने के रास्ते पर है। तो अभी उसका बचपन पूरा खत्म नहीं हुआ है, शरीर में और मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे बहुत से बदलाव आते हैं। शारीरिक तौर में बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आते हैं जिससे वो एडल्टहुड में प्रवेश करता है, और मानसिक बदलाव भी इसलिए आते हैं कि बच्चा खुद नहीं समझ पाता है, उसके अंदर बहुत नए तरीके के विचार आते हैं, बहुत नए तरीके से वो दुनिया को देखता है, दोस्तों से उसकी बातचीत होती है। तो वो ना बचपन में है, उससे बच्चों से उसको ज्यादा पता है, और ना वो भी वयस्क हुआ है
0: जी।
1: उसको लगता यह है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन ये ट्रांजिशन फेज है, बदलाव वाला है, बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि हार्मोन्स क्योंकि बदल रहे हैं तो इसलिए जो भी विचार उसके मन में आते हैं वो ये जज नहीं कर पाता है कि ये चीजें जो मुझे नई बातें पता चल रही हैं ये सही है या नहीं। तो ये लगभग आप मान लीजिए कि 12 वर्ष 13 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक ये किशोरावस्था रहती है, टीनेज, जिसमें बच्चे एक बीच वाली एज की स्टेज में है, अपने बचपन उनका खत्म हो रहा है और वयस्क होने के, जवान होने के उसमें आ रहे हैं,
0: मतलब 12 के प्लस होने के बाद।
1: हाँ,
0: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि किशोर अवस्था में बच्चे के शरीर के साथ साथ उनके व्यवहार में, सोच में अचानक बदलाव क्यों आने लग जाते हैं और इससे वो कभी कभी घबरा भी जाते हैं कि अचानक मेरे अंदर ऐसे चेंज क्यों आने लग गए हैं?
1: बिल्कुल घबरा जाते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो उनके हॉर्मोन्स का है, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों अपने एडल्ट फेज में जाते हैं तो शरीर में बहुत तरीके के चेंजेस आते हैं। वो बदलाव का जो टाइम है वो यही किशोरावस्था के दौरान ही शरीर में सारे बदलाव होते हैं, उनसे दिमाग पे, हॉर्मोन्स के लेवल पे बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ता है, और मानसिक तौर पे इसलिए वो घबरा जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बचपन से ज्यादा उनको चीजें पता है, आजकल इंटरनेट का भी जमाना है, बच्चे आपस में बात करते हैं, बहुत सी नई नई चीजें उनको पता चलती है, लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता है कि ये ज्ञान जो है वो उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है, अभी अधूरा ज्ञान है। और नई चीजों के बारे में पता चलता है तो बच्चों के मन में क्रेज बहुत होता है, बच्चों के मन में क्रेज बहुत ज्यादा रहता है, और उनको ये लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम वो थोड़ा माँ बाप से भी अपनी चीजें शेयर करने में हिचकिचाते हैं कि माँ बाप कहीं ऐसा ना हो, समझे ना, उनको गलत ना समझ लें
0: जी,
1: ये चीजें रहती हैं।
0: तो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा अपने शरीर में बदलाव को लेकर डर रहा हो, शर्म महसूस कर रहा हो, अपने माता पिता से, उनके जो माता पिता है उनकी हेल्प कैसे करे?
1: माता पिता सबसे पहले तो ये पहले से समझ लें कि बच्चा जिस बदलाव से गुजर रहा है वो उसके लिए एक स्ट्रेसफुल फैक्टर है, बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है, तो बच्चे का व्यवहार थोड़ा शुरू से बदला हुआ हो सकता है। उसमें माँ बाप जो है वो जजमेंटल ना हो जाए एकदम से, अपने बच्चे को पहले से ही कोई विचार ना बना ले, पहले से ही कोई बायस ना बना ले कि ये इसके दोस्तों का ग्रुप हो गया है इस वजह से बच्चों में चेंज आ रहा है, या इसने कोई गलत चीजें कर ली होंगी इसलिए चेंज आ रहा है, या ये बड़ा हो गया है हमारी बात नहीं मान रहा है। उनको ये समझना होगा
0: जी,
1: तो अपना दौर भी ये याद करना होगा कि कुछ सालों पहले हम भी इस दौर से गुजरे हैं, हमारे मन में भी क्या चीजें आई थी वही सब चीजें अब इन बच्चों के मन में भी आ रही होंगी। तो अगर हम इनसे खुल के बात नहीं करेंगे तो ये दूसरे सोर्सेज ढूंढ लेंगे जानकारी के लिए,
0: जी,
1: जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो बच्चे के लिए सबसे बड़े जो शुभचिंतक हैं वो उसका परिवार ही होता है, तो माँ बाप को थोड़ा फ्रेंड्स की तरह बच्चों से ट्रीट करना चाहिए उनको, एकदम उनकी किसी बात को सिरे से नहीं नकारें, उसको समझने की कोशिश करें, उनसे बात करें। बच्चे अगर डरेंगे नहीं कि ये बात करने से हमारे अपने माता पिता से डांट पड़ सकती है, अगर उनको लगेगा कि माता पिता डांटेंगे नहीं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ रहे हैं, तो बच्चे अपनी बातें माँ बाप से शेयर करेंगे। और हमारा मेन पर्पस ये है कि बच्चे किसी गलत चीज में ना पड़ जाएं, हमसे वो बात करेंगे तो हम उन्हें पूरी जानकारी दे सकते हैं।
2: लेकिन मैम अभी भी कई घरों में ऐसा होता है कि मम्मी पापा बच्चे के साथ मतलब बातें शेयर नहीं करते हैं, उनको लगता है कि ये बातें अभी तक बच्चों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
1: यही बातें तो उनको समझनी है, और आपका रेडियो तो इस माध्यम से एक बहुत अच्छा ये काम कर रहा है। आपने एक बहुत अच्छा ये चीज टॉपिक देखा है कि आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक को उठाया है। इससे माँ बाप होता क्या है, माँ बाप अपने काम में लगे हुए हैं, वो बच्चे के बारे में बहुत मन से सब अच्छा चाहते हैं, लेकिन बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरा एक सोशल फैक्टर होता है कि माँ बाप के जो साथी लोग हैं, कई बार वो लोग कहते हैं अरे तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, अरे उसको छोड़ो, वो इस तरीके से कर रहा है। तो बहुत चीजों से माँ बाप के विचार गवर्न होते हैं कि आसपास की सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं। तो माँ बाप को सबसे पहले ये देखना है कि मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: बच्चे एंजाइटी टेंशन से भी डील कर रहे हैं आजकल माँ बाप। फोन और इंटरनेट के आने के बाद से बच्चे माँ बाप से थोड़ा कम बात करते हैं, माँ बाप भी कम बात करते हैं, क्योंकि वो भी फोन पे सब लोग होते हैं। और रील्स फोन ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके हाथ में फोन आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वक्त कहाँ निकल गया।
2: ये करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। और कभी कभी मैम अब तो वैसे बता दे कि रील्स पर हर कोई बिजी रहता है, वहीं से गलत धारणाएं मिल जाती है उनको, तो उसी चीज को फॉलो करने लग जाते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि अगर माँ बाप से बच्चा देखिए ये क्यूरियोसिटी वाली एज है, उसके शरीर में भी चेंजेस हो रहा है, उसके सोच में भी चेंज हो रहा है, उसकी भावनाओं में भी बदलाव हो रहा है, वो ये कैसे जानेगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। और वो बस सब तरफ से जानना चाह रहा है, अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन माँ बाप से नहीं मिलेगी तो वो दूसरे सोर्सेज ढूंढ लेगा, वो इंटरनेट पे सर्च करेगा, वो दोस्तों से मिलेगा। सब जगह से सब चीज सही नहीं पता चल सकती, क्योंकि उसके पीयर ग्रुप में जो दोस्त हैं वो भी उसी उम्र के हैं।
2: जी जी,
1: उनको भी तो नहीं पता सही क्या है।
2: ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे जरूरी हो कि बच्चे पूछे मम्मी पापा से,
1: माँ बाप को इनिशिएशन लेना चाहिए। माँ बाप भी इनिशिएशन ले सकते हैं जब उनको पता है कि बच्चा उस दौर में प्रवेश कर रहा है, तो माँ बाप को भी धीरे से खुल के बच्चों से बातें करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अब तुम जिस उम्र में हो तुम्हारे शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे, थोड़ा सा तुम्हारे दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, कहाँ जाना है, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर माँ बाप उनसे उनके हालचाल भी जाने कि तुमको स्कूल में कैसा लग रहा है, तुम्हारे दोस्त लोग कैसे हैं, आप बच्चों की चीज में इंटरेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका काम सिर्फ घर का काम करना या अपना प्रोफेशन का काम करना है, घर में भी आप उतनी ही आपको जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि बच्चे को जीवन तो माँ बाप ने दिया है।
2: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है।
2: या राइट,
1: उन्हें
2: एग्री विद यू,
1: उन्हें उस चीज पे देखना पड़ेगा कि बच्चे के जीवन में जो कुछ हो रहा है उनसे जो बन पड़ रहा है वो बच्चों से बात करें। बात करना बहुत जरूरी है।
2: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन आज के टाइम में कोई भी टाइम नहीं दे पा रहा है, क्योंकि फोन हर किसी के पास है, हर कोई फोन में लगा हुआ। तो फिलहाल मैम मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन से बदलाव सामान्य होते हैं और कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें बच्चों को पता होना चाहिए, या तो वो अपने पेरेंट्स से पूछे या डॉक्टर से पूछे।
1: देखिए, बदलाव शारीरिक और मानसिक इमोशनल सब तरीके के बदलाव है। शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो जेन्युइन बदलाव है, वो सबके अंदर आते हैं। हालांकि हाँ, अगर वजन बहुत बढ़ रहा है तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वजन अगर चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अगर वजन बढ़ता है उससे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल बहुत गड़बड़ हो जाता है, उनसे आगे चल के उनमें बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे महिलाओं में या चेहरे पे बाल आ जाते हैं।
2: जी जी जी,
1: महावारी अभी शुरू होती है लड़कियों की, तो शुरू में महावारी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, 6-7 महीने रेगुलर नहीं होता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। और उसका भी एक फिक्स एज नहीं है कि महावारी इसी एज में आनी चाहिए। पहले महावारी 12-13 साल में आती थी, आजकल महावारी 9 साल में भी शुरू हो रही है, क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर बहुत बढ़ रहा है, जो चीजें उनको पता है इंटरनेट से, बहुत चीजें बदलाव आ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, नॉर्मल ब्लीडिंग है तो घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है और दो दो तीन तीन महीने का डिफरेंस आ रहा है, वजन बहुत ज्यादा है, या लग रहा है कि लड़कियों की आवाज भारी हो रही है, या चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ये कंडीशंस हैं, तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और संकेत क्या है जिसमें घबराने की जरूरत है या जिसमें आपने पूछा कि ध्यान रखने की जरूरत है? थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा बच्चा हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा अकेले ज्यादा रहना चाह रहा है।
2: बहुत से बच्चे होते हैं जो खुद अकेले महसूस करते हैं।
1: हाँ, लेकिन एक चीज आजकल देखिए, डिप्रेशन बहुत आ रही है। पहले बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, माँ बाप के पास टाइम नहीं है तो सारे बच्चे आपस में ही खेलते कूदते रहते थे ना। आपने देखा होगा कि पहले डिप्रेशन इतना नहीं होता था,
2: कहानियां सुनते रहते थे,
1: नानी सुनते रहते थे, नानी दादी से आपस में लड़ भी रहे हैं तो उन्हें पता है कि ये सब तो चलता रहता है दुनिया में। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है ज्यादातर, माँ बाप के पास अपना टाइम नहीं है, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, अपना पढ़ाई में प्रेशर है, कई तरीके की परेशानियां हैं, तो कन्वर्सेशंस खत्म हो रहे हैं।
2: जी
1: ठीक है, तो और बच्चों में एक प्रेशर भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये फर्स्ट आ रहा है तो मुझे भी फर्स्ट आ रहा है, या मेरे 99 ना होके मेरे 97 ना हो गए, इस नंबर हो गए, इसमें भी बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। तो हमें ये लक्षण देखने हैं कि ऐसा तो नहीं कि पहले बच्चा ठीक था, अब अचानक से वो अकेले कमरे में रहना पसंद कर रहा है। या इतना हमें ऊपर से ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो दोस्त हैं वो किस तरीके के हैं, अच्छी कंपनी में रहेगा तो ठीक रहेगा, है ना। और बच्चा कोई बहुत एडवेंचरस चीज तो नहीं हो गया है, एडवेंचरस काम तो नहीं करना चाह रहा है कि आज मुझे कोई रिस्की काम ना करना चाह रहा हूँ, ये कुछ चीजें हैं जो, या नॉर्मल बात में बच्चा सामान फेंक रहा है, कान बंद कर रहा है, चिल्ला रहा है, वो चीजें हैं जब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। और जरूरी नहीं है कि, अच्छा मानसिक, आपने जैसे पूछा मानसिक स्वास्थ्य, पहले एक स्टिग्मा हुआ करता था, लोग इस बारे में बात नहीं करते थे, चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की हो, उसको बस एक बिहेवियर करार दे दिया जाता था कि ये थोड़ा गुस्सेल है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य पे सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है, एनजीओज भी ध्यान दे रहे हैं। आप लोग के माध्यम से भी मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य में अगर किसी की परेशानी हो रही है तो ये कोई स्टिग्मा नहीं है, आपको इसे किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, और ये कोई शर्म की बात भी नहीं है। जैसे शरीर में बाकी ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही शरीर में दिमाग भी है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो जैसे इंसान डायबिटीज है, शुगर हो गया, हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो गया, इनकी दवाइयां खाता है तो वो दिमाग की परेशानी की भी दवाई खा सकता है, ये कोई स्टिग्मा नहीं है कि इसकी दिमाग की दवाई चल रही है। तो पहले जैसे लोग डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड कर, और जरूरी नहीं है कि आप दिमाग के ही डॉक्टर के पास जाएं, आपके पास जो डॉक्टर अवेलेबल है, आप जिनसे अच्छे से बात कर सकते हैं, आपको लगता है कि वो आपको अच्छे से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उनके पास जाइए, आपको सही गाइडेंस मिलेगी। और हर चीज में दवाई की जरूरत नहीं होती है, कई चीजों में काउंसलिंग से भी काम हो जाता है। कई बार माँ बाप को यही नहीं पता होता है कि बच्चे की स्थिति से हमें डील कैसे करना है।
2: जी,
1: तो अपने जो भी नजदीकी डॉक्टर्स हैं उनसे बात करें, अपने परिवार में बात करें, दोस्तों से बात करें, सब तरफ से हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता है।
2: और मैम एक कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस पर बात करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, पूछिए।
2: जैसे कि आपने बोला भी था कि डिप्रेशन, और फिर बच्चे अकेले रहते हैं, और आज के टाइम में तो बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, वो बाहर रहते हैं, रूम में भी अकेले रहते हैं, जबकि वो घर पर सभी फैमिली वालों के साथ हैं, और इस वजह से वो डिप्रेस भी हो जाते हैं, और खासकर लड़कियों में यानी कि पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। उनका यही कहना होता है कि 15 दिन डिले हो जाते हैं, 20 दिन डिले हो जाते हैं, तो क्या ये अकेलेपन का भी है कुछ?
1: हाँ, अकेलेपन से आपका दिमाग परेशान है, आप स्ट्रेस्ड है, आपका हार्मोन लेवल चेंज होगा, हार्मोन लेवल चेंज होगा तो आपकी महावारी भी चेंज होगी, आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो अपना वॉक पे जाइए, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग फैमिली से अलग रहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि उनको रेगुलरली, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते, लेकिन डेली वॉक पे जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों से शारीरिक तो बहुत फायदा होता ही है, मानसिक तनाव में भी बहुत कमी आती है, मानसिक तनाव बहुत कम हो जाता है। ये चीजें करें, गाने सुने, और लोगों से बात करें, लोग कुछ भी हो, बात करना नहीं बंद करना चाहिए, बातें करनी बहुत जरूरी है, बातें सुननी बहुत जरूरी है।
2: लेकिन मैं मास्क के पास, आज के टाइम में इतना टाइम कहाँ किसी के पास होता है?
1: देखिए, आप जिस चीज को प्रेफरेंस देंगे उस चीज के लिए आप कैसे ना कैसे टाइम निकाल लेंगे।
2: ये तो है।
1: अगर आपको कहीं घूमने जाना है या आपको कोई काम करना है, जैसे अब देखिए हम लोग सीरीज देखते हैं तो इतने बिजी शेड्यूल में भी सब लोग सीरीज तो देख ही रहे ना। या कहीं घूमने जाना है, कोई आपको किसी मंदिर धाम कहीं भी जाना है, आप कैसे ना कैसे टाइम निकाल
2: चली जाए।
1: बस अपने हेल्थ को फोकस देना है। हम ठीक है तो बाकी सब चीजें ठीक है, अगर हम ही ठीक नहीं है, तबीयत ही नहीं ठीक है, तो हमको सोने की चीज भी दे दी जाए हमको क्या खुशी मिलेगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम एक छोटा सा लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें
1: किशोरों के लिए, मैसेज ये है कि आपके शरीर में और मानसिक चीजों में जो बदलाव आ रहे हैं वो किसी भी तरीके से एबनॉर्मल नहीं है। वो शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, और जिस दौर से आप लोग गुजरे हैं उसी दौर से आपके बड़े दीदी, बड़े भैया, माता पिता, दादा दादी सब लोग गुजरे हैं। तो कुछ भी विचार आ रहे हैं तो एकदम से आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, अपने लिए जजमेंटल भी नहीं होना है कि ये क्या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। और जो भी विचार है वो आप घर में किसी से भी क्लोज है, स्पेशली माँ से, माता पिता से और माँ से, बड़ी दीदी है, मौसी है, आप लोग सबसे बात करिए। अपने जो डाउट्स हैं आप लोग ये विश्वास रखिए कि ये लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो लोग आपको समझेंगे क्योंकि सब आपके शुभचिंतक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, आप अलग जनरेशन में पैदा हुए हैं, उन लोगों के समय चीजें दूसरी थी, आप लोगों के समय में चीजें दूसरी हैं। तो आप लोग ये जरूर सोच सकते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे समझते ही नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए जब आप बोल भी नहीं पाते थे तब भी वो आपको दूध पिलाते थे, तब भी खाना देते थे, तब भी आपको क्लीन करते थे, तो वो आपको समझेंगे। आप लोग थोड़ा भरोसा करके उनसे अपनी चीजें शेयर करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माता पिता आपको समझ के आपको सही राय देंगे, क्योंकि कोई सोच गलत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही मिलनी चाहिए।
2: तो मैम जाते जाते आप एक कुछ आपके पसंद का कोई गाना हो जो हम रेडियो पे श्रोताओं का डेडिकेट करना चाहें।
1: हाँ बिल्कुल, एक गाना है नारायण मिल जाएगा, जुबिन नौटियाल जो सिंगर है उनके द्वारा गाया गया है, और इसको प्ले कीजिएगा। और ये मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू हैं तो नारायण को मान रहे हैं, दूसरे धर्म के हैं तो अपने गुरु को या अल्लाह को मान रहे हैं, सब अल्टीमेटली एक हैं। और इसका बेसिक एक जो जिस्ट मुझे इस सॉन्ग का मिला वो ये है कि आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करिए, भगवान जो है या जो गुरु है वो सब देख रहे हैं, तो जैसे आप करेंगे आपको उन चीजों का अच्छा फल जरूर मिलेगा।
2: वही बात आ गई ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा।
1: बिल्कुल, और अपने पे भरोसा रखें सब।
2: करेक्ट है। थैंक यू सो मच मैम,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: मैम मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि हमारे श्रोता है उनको भी बातें समझ में आ गई होंगी।
1: रेडियो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है
2: जी जी,
1: क्योंकि सब लोग सुनते हैं, सुनी हुई चीजें याद रह जाती हैं, और इसके माध्यम से आप शहर में, गांव में, हर जगह तक आपकी आवाज पहुंच रही है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। मुझको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा माध्यम है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी तरफ से बहुत गुड विशेज हैं आप लोगों के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: राधे राधे ब्रजवासियों, जहाँ कड़कड़ में कान्हा की लीलाएं हैं, जहाँ यमुना की लहरों में भक्ति की मिठास है, जहाँ गलियों में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, वही है हमारी प्यारी मथुरा नगरी।
5: बिल्कुल, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं, आस्था, संस्कृति और विरासत की ऐसी धरती है जहाँ इतिहास और भविष्य एक साथ कदम बढ़ाते हैं। और आज इसी धरती से हम सुनेंगे विकास की वो कहानी जो सड़कों, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, महिला बाल कल्याण और जन सुविधाओं के जरिए लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश और आज का खास एपिसोड है मथुरा में गूंजता विकास।
1: तो आइए बात करते हैं उस विकास की जो सिर्फ सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि आम लोगों के अनुभवों में दिखाई देता है।
0: मथुरा में विकास का दायरा लगातार व्यापक हो रहा है। सड़क और आधारभूत ढांचे से लेकर पर्यटन जन सुविधाओं तक कई स्तरों पर काम आगे बढ़ रहे हैं।
1: मथुरा और ब्रज क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने, मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से लेकर ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग से जुड़े कार्यों तक विकास की तस्वीर लगातार बदल रही है।
0: और मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्र में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्थानीय लोगों का साथ साथ देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं।
1: यानी सोच सिर्फ आज की जरूरत पूरी करने की नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए मजबूत आधार तैयार करने की है।
0: अब बात उस युवा शक्ति की जो नौकरी खोजने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनने का सपना देखती है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
0: यानी सरकार की सोच साफ है, युवा सिर्फ अवसर का इंतजार ना करे बल्कि अवसर पैदा करने की क्षमता भी हासिल करे।
1: और यही तो है दूरदर्शी सोच, युवा के हाथ में हुनर, हुनर से उद्यम और उद्यम से रोजगार। आइए सुनते हैं अब मुकेश की कहानी जो एक लाभार्थी है।
2: मेरा नाम मुकेश, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मैं अपना एक रोजगार करना चाहता था। इसी बीच मुझे एक योजना के बारे में पता चला, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके अंतर्गत मुझे 5 लाख तक का 100% ब्याज मुक्त और गारंटी रहित ऋण मिला, जिसकी मदद से मैंने अपना रोजगार शुरू किया और आज मेरा रोजगार बहुत ही अच्छे से चल रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और ऐसी योजनाओं से मैं बहुत ही लाभान्वित हुआ।
0: मुकेश की कहानी इस बात की मिसाल है कि विकास की असली पहचान तब होती है जब योजनाओं का लाभ सीधे परिवार तक पहुंचे।
1: और जब किसी योजना की मदद से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज तक पहुंचता है।
0: विकास का सबसे बड़ा अर्थ है समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक अवसर और सुविधाएं पहुंचाना।
1: और इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
0: यानी केवल आर्थिक मदद नहीं बल्कि परिवार को ऐसी सुविधाएं और अवसर से जोड़ना जिससे वह आगे बढ़ सके।
1: यही दूरदर्शिता है, गरीबी को सिर्फ एक आंकड़ा मानकर नहीं बल्कि परिवार की जरूरतों को समझकर समाधान तक पहुंचने की कोशिश। आइए सुनते हैं रोशनी की कहानी जो एक लाभार्थी है।
3: मेरा नाम रोशनी है, मैं मथुरा के कोसी में रहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राज्य सरकार को कि राज्य सरकार ने हमारी आर्थिक सहायता की। मैं और मेरा परिवार बहुत निर्धन परिवार है जिसके अंतर्गत हमें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था, लेकिन राज्य सरकार की जीरो पॉवर्टी योजना के माध्यम से मैं जिला विकास विभाग के संपर्क में आई और आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर हमें आर्थिक सहायता मिली जिससे हम अपना छोटा सा रोजगार शुरू कर पाए। धन्यवाद।
0: रोशनी की कहानी भी बताती है कि योजनाओं की सफलता का असली पैमाना है लाभार्थी के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव।
1: जब सरकारी प्रयास जमीन पर किसी परिवार के लिए नई उम्मीद बनते हैं तभी विकास की तस्वीर और साफ हो जाती है। आइए सुनते हैं अब हम मथुरा के जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे को।
4: ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनतम व्यक्ति हैं उनको एक उस पर विकास की धारा में लेकर के आने का, तो उसके दृष्टि से जो विकसित भारत विजन 47 है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जीरो पॉवर्टी अभियान चलाया गया है। ये अभियान इस तरह से है कि इस पे प्रत्येक गांव में निर्धनतम जो परिवारों का चयन किया गया है, वो चयन भी एक टीम, ऐसी टीम के द्वारा किया गया है जिसमें उन गांवों में जो लोग जैसे आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इस तरह के लोगों को जोड़ा गया था जो वहां पर बराबर गांव में रहती हैं और वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि कौन सा परिवार गरीब है, तो उनका चयन किया गया है। और इस तरह से यहाँ पर 9686 परिवारों का यहाँ पर जो है वो चिन्हांकन हुआ है। उसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी स्कीम के जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर उन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और उस हर परिवार में किसी भी पैरामीटर से, कहीं खाद्यान्न से अगर वो आच्छादित नहीं है, कहीं बच्चे स्कूली शिक्षा से अभाव में है या कहीं आवास में नहीं है, तो हर गवर्नमेंट विभाग की स्कीम ने अपने पैरामीटर्स के आधार पर उनके चयन करते हुए और फिर उनको लाभान्वित कराए जाने का कार्य चल रहा है। इसमें समाज कल्याण के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के जो पात्र लाभार्थी उन परिवारों से हैं उनको उसमें लिया जा रहा है, विधवा पेंशन के अगर लाभार्थी हैं तो छूटे हुए हैं अगर तो उनको लिया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एक सैचुरेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि अब इस तरह की जो बेसिक नीड्स हैं उनमें कोई भी परिवार वंचित न रह जाए। और एक इसमें एक और भी हुआ है कि कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ MOU कराया गया है जो स्वयं अपना योगदान इन सेलेक्टेड गांवों में जाकर के उन परिवारों से मिलकर के उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनके जागरूकता के लिए काम करेंगे।
0: गरिमा खरे जी की बातों से साफ है कि विकास को जमीन तक पहुंचाने में जिला प्रशासन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
1: योजनाओं का सही क्रियान्वयन, पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना और विकास कार्यों की लगातार निगरानी, यही वो कड़ी है जो सरकार की नीतियों को आम जनता के जीवन से जोड़ती है।
0: आज जब विकास की बात होती है
1: तो सिर्फ एक सड़क या एक भवन की बात नहीं होती।
0: बिल्कुल, आज की सोच है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार, निवेश के साथ उद्यमिता, विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा और विरासत के साथ पर्यटन।
1: यही है फोरसाइट दूर की सोच।
0: आज जो सड़क बन रही है वह कल की कनेक्टिविटी है, और आज जो युवा उद्यमी बन रहा है वह कल के रोजगार का स्रोत है। आज जिस बच्चे के पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है वही कल प्रदेश की ताकत बनेगा।
1: और मथुरा जैसी सांस्कृतिक नगरी में तो यह सोच और भी खास हो जाती है, विरासत भी बचे और विकास भी बढ़े।
0: उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, सामाजिक कल्याण और जन सुविधाओं को साथ लेकर चलने की सोच दिखाई देती है।
1: और तारीफ उस सोच की भी जिसमें विकास को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय गांव, गरीब, युवा, महिला और बच्चे, हर वर्ग तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
0: एक तरफ एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और निवेश जैसी बड़ी परियोजनाएं,
1: तो दूसरी तरफ जीरो पॉवर्टी उद्यमिता, कौशल विकास और आंगनबाड़ी जैसी जमीनी पहल,
0: यानी बड़े विजन और जमीनी जरूरत दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश।
1: और यही उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच की खासियत है, आज की जरूरत के साथ आने वाले वर्षों की जरूरतों को भी ध्यान में रखना। तो आज मथुरा से हमने सुनी विकास की कई आवाजें, लाभार्थियों की, प्रशासन की और उन युवाओं की जो अपने सपनों को उद्यम में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: आज के एपिसोड का नाम था
1: मथुरा में
0: गूंजता विकास।
1: मैं हूँ आपका आरजे जय
0: और मैं हूँ आपकी आरजे तेजस्वी भारद्वाज।
1: दोनों मिलते हैं अगले एपिसोड में विकास की एक और कहानी के साथ।
0: जय हिंद।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन पर दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं दी। यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा, सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन अभियान चलाया और दिल्ली पुलिस ने ISI समर्थित पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को पहचान दी है और उनकी बचत को सुरक्षा दी है। इस योजना के 12 वर्ष पूरे होने पर श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इसमें लगभग 56% हिस्सेदारी महिलाओं की है।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने में सशक्त बनाया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनधन योजना ने न केवल बैंकिंग की सुविधा दी बल्कि गरीब परिवारों को भरोसा दिलाया कि देश की प्रगति में उनका भी समान अधिकार और समान स्थान है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपए है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अगस्त 2014 को किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुंच को सुलभ बना रही है। इस योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: महाराष्ट्र के नाशिक से 450 टन से अधिक प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस आज सवेरे दिल्ली पहुंची। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित निकासी शुरू कर दी है। कांदा एक्सप्रेस पहल उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग केंद्रों तक भारी मात्रा में प्याज पहुंचाने के लिए प्रभावी लॉजिस्टिक उपाय है। सड़क परिवहन के माध्यम से अन्य प्रमुख उपभोग केंद्रों चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अमृतसर तक प्याज की आपूर्ति की जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि 2025-26 में 307 लाख टन से अधिक के अनुमानित उत्पादन के कारण आने वाले महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की पर्याप्त उपलब्धता है। जनता के लिए कल से मोबाइल वैन और NCCF और NAFED यानी नेफेड के खुदरा आउटलेट के साथ सफल और केंद्रीय भंडारों के माध्यम से 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की बिक्री शुरू की गई है। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने की पाक्षिक चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन की संभावना है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने कहा

0: के अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
1: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एमएससी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की तरफ लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। भारत ने बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष बनाया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। इन्हें नेपाल से बचाया गया है। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉ जयशंकर ने कहा कि नेपाली सेना और सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने भारत में उनकी सुगम वापसी सुनिश्चित करने के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की भी सराहना की। डॉ जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की सहायता कर रही है। डॉ जयशंकर ने आज सवेरे नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और उन्हें हर संभव सहायता की पेशकश की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन के अवसर पर सभी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि यह पर्व लोगों को एक दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन को स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का पर्व बताया। उन्होंने कामना की कि पवित्र बंधन सभी के घरों में सुख, समृद्धि और आत्मीयता बढ़ाए तथा भाई बहन का प्रेम सदैव अटूट बना रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्कूली विद्यार्थियों से रक्षाबंधन पर्व के मूल तत्व स्नेह, सुरक्षा और संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए विद्यार्थियों के साथ रक्षाबंधन मनाते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रेम के ऐसे बंधन का प्रतीक है जिसे परिवार के सदस्यों, मित्रों और यहां तक कि पेड़ों के साथ भी साझा किया जा सकता है। पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से जीवन के लिए आवश्यक संतुलन बनाए रखने के लिए पौधों और पेड़ों को राखी बांधने का आग्रह किया। इस विशेष समारोह में लगभग 90 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 17 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के 13 दिव्यांग बच्चे शामिल थे। दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा नामक एक विशेष सड़क सुरक्षा यातायात अनुशासन अभियान चलाया। इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रवर्तन और प्रोत्साहन के अनूठे संयोजन के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। अभियान के दौरान महिला पुलिस अधिकारियों ने जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ताओं की कलाई पर राखी बांधकर सुरक्षा और संरक्षण के वादे का संदेश दिया। लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, लेन अनुशासन बनाए रखने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने तथा पैदल यात्रियों और अन्य संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ताओं का सम्मान करने के लिए जागरूक किया गया। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस वर्ष राखियों का कारोबार लगभग 25,000 करोड़ रुपए का हुआ। मिठाइयों, ड्राई फ्रूट्स, परिधानों, फैशन, गिफ्ट पैक, आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों तथा अन्य उपहारों का लगभग 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। श्री खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को भी इस वर्ष रक्षाबंधन पर व्यापक समर्थन मिला। देश भर में उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। हस्तनिर्मित राखियों, पारंपरिक उपहारों, स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं तथा महिला स्व सहायता समूहों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के उत्पादों की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दिल्ली के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि 2024 से सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के लिए वो काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये दंपत्ति कथित तौर पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करते थे। इसमें भारतीय सिम कार्ड खरीदना और उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजना शामिल था। इन सिम कार्डों का इस्तेमाल पाकिस्तानी एजेंट्स व्हाट्सएप अकाउंट बनाने और भारतीयों से संपर्क करने के लिए करते थे। इस नेटवर्क में भारतीय सिम कार्ड खरीदने में सहायता के लिए दिल्ली के स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाता था। इसके बाद पाकिस्तान में इन नंबरों पर व्हाट्सएप अकाउंट बनाए जाते थे। कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट भारतीय व्हाट्सएप ग्रुप में घुसकर जानकारी जुटाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार राजधानी के बुजुर्ग नागरिकों के लिए वयो आनंद योजना शुरू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे जहां बुजुर्ग नागरिकों को खाली समय में आराम करने, इंडोर गेम खेलने, एक दूसरे से मिलने जुलने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध हो सके। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने बताया है कि यह केंद्र सप्ताह में कम से कम 5 दिन खुले रहेंगे और प्रतिदिन न्यूनतम 7 घंटे संचालित होंगे। इन केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच किया जाएगा। योजना के अंतर्गत मनोरंजन केंद्रों में कम से कम 200 ऐसे सदस्य होना जरूरी है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र मनोरंजन केंद्र को एक वित्तीय वर्ष में 2,40,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन केंद्रों में योग और ध्यान की कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही इनमें मासिक चिकित्सा शिविर और प्राथमिक उपचार किट की भी व्यवस्था होगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके आसपास ही ऐसे सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना है जहां वे अपने हम उम्र लोगों के साथ समय बिता सकें, मनोरंजन और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में शामिल हो सकें तथा अकेलेपन से दूर सक्रिय सामाजिक जीवन जी सकें। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
3: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, डिजाइन, मूल्यांकन पद्धति, शासन, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने, परीक्षा अवसंरचना को बढ़ाने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जांच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्याय संगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित व्यापक सुधारों की जाँच और सिफारिश करने के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं जसपाल कौर।
0: दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत 300 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन मोबाइल फोन को हस खास स्थित NCUI ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में नागरिकों को सौंपे जाएंगे। मीडिया से बातचीत में दक्षिण दिल्ली पुलिस उपायुक्त आनंद मित्तल ने लोगों से आग्रह किया है कि फोन खोने पर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर मोबाइल फोन खोने की रिपोर्ट लिखवाएं।
4: जिला दिल्ली पुलिस ने करीब 300 मोबाइल फोन आज उनके राइटफुल ओनर्स को जो खोए हुए थे अलग अलग जगहों से वापस ला करके सौंपे हैं। निरंतर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी मोबाइल फोन खोया जाए उसका टेक्निकल एनालिसिस करके उसको वापस ढूंढा जाए और दिल्ली पुलिस निरंतर इस पे लगी हुई है। जल्द ही हम इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में और भी लोगों को वापस करें।
0: दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने आज ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश और किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब परिवारों के परिश्रम को, पहचान और बचत को सुरक्षा दी। महाराष्ट्र के नासिक से 450 टन प्याज लेकर पहली कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर राखी का वादा, सुरक्षा का इरादा, सड़क सुरक्षा और यातायात अनुशासन अभियान चलाया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षाबंधन पर दिल्ली के लोगों को शुभकामनाएं दी। और दिल्ली पुलिस ने ISI समर्थित पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विशेष रेडियो कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
1: आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आगरा जनपद के बरौली अहीर विकास खंड की ओर।
0: बरौली अहीर, जहां खेतों में किसान की मेहनत है,
1: गांव की गलियों में बदलते समय की आहट है,
0: महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने का विश्वास है,
1: युवाओं में आगे बढ़ने का उत्साह है,
0: और इन सब के बीच सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा रही हैं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों तक विकास और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं पहुंचाना है।
0: बरौली अहीर विकास खंड में 55 ग्राम पंचायतें और 73 गाँव हैं।
1: आज की हमारी कहानी है उन योजनाओं की, उनके लाभार्थियों की और उस बदलाव की जो गांव के घर घर में दिखाई दे रहा है।
0: कहते हैं अपना घर अपना संसार। जिस परिवार के पास वर्षों तक पक्की छत नहीं थी, उसके लिए एक पक्का घर केवल ईंट और सीमेंट से बनी दीवारें नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और भविष्य का भरोसा होता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य की आवास संबंधी योजनाएं संचालित हैं। आगरा जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बरौली अहीर विकास खंड भी शामिल है।
0: लेकिन किसी योजना की असली सफलता उसके आंकड़ों में नहीं, लाभार्थी के चेहरे की खुशी में दिखाई देती है।
1: आइए सुनते हैं बरौली अहीर के एक लाभार्थी की कहानी।
2: मैं हूं आप सभी के साथ राखी, और आज हम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए हैं, और हम इस समय हैं बरौली अहीर में, जहां पर मेरे साथ एक लाभार्थी जुड़ने जा रहे हैं। तो जानेंगे उनकी विकास की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आपका नाम क्या है?
3: रवि कुमार।
2: तो रवि जी, आप सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं?
3: सरकार के द्वारा हमें बहुत सारी योजनाएं मिली हैं, जैसे आवाज मिला हमारे को, शौचालय मिला, और मम्मी जी को विधवा पेंशन मिलती है
2: जी।
3: और बहुत सारी योजनाओं से हम लाभ ले रहे हैं और फायदा भी हुआ है, पहले की स्थिति में सुधार भी हुआ है हमें
2: जी। तो रवि जी, आपको इन योजनाओं की जानकारी किस माध्यम से मिली?
3: ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं ना
2: जी,
3: उनके सदस्य के द्वारा या सोशल मीडिया से हमें मिलती रहती है। हमने फॉलो कर रखा है उनका चैनल
2: अच्छा।
3: योगी जी का, तो उनसे मिलती रहती है
2: जी। तो रवि जी, इन योजनाओं के लिए आवेदन आपने किस प्रकार से करा?
3: वही सर्वे कैफे पे जाके कराया था, और साथ में ग्राम पंचायत के सदस्य भी गए थे, उन्होंने उनकी सहमति के द्वारा।
2: तो रवि जी, आपकी स्थिति में क्या सुधार आया? इन योजनाओं से पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अभी आपकी स्थिति कैसी है?
3: पहले हम बहुत कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्का है। पीएम की तरफ से हमें आवास मिला है, तो खुश हैं और काम धंधा भी सही चल रहा है
2: जी। तो रवि जी, जैसे कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते होंगे, लोगों के बीच में बैठते, तो जो जिन योजनाओं का फायदा आपको मिला है, तो क्या आप इन योजनाओं के बारे में दूसरे लोगों से भी बातचीत करते हैं, उनको भी बोलते हैं कि वो भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं?
3: हाँ, बोलते हैं, लेते भी हैं, और हमें तो फायदा है, तो हम उस तरीके से बताते रहते हैं। जो मेहनत करने जाते हैं, अपने काम करते हैं, तो हम बताते रहते हैं
2: जी। तो रवि जी, सरकार को क्या बोलना चाहेंगे?
3: सरकार को ये बोलना चाहेंगे, इस तरीके सरकार आती रहे और योजना चलती रहे, तो गरीबों का भला होता रहेगा, बस विकास हो, बस यही है
2: जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रोताओं, ये थे रवि कुमार जी बरौली अही से, जिन्होंने विकास की कहानी अपनी जुबानी हमें बताई। उनको, उनकी माता जी को पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, साथ में उन्हें शौचालय का लाभ मिला और प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। तो फिर हम मिलेंगे आपसे ऐसी किसी नए लाभार्थी के साथ, जानेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी।
1: एक परिवार के लिए पक्का घर, मतलब बारिश की चिंता से राहत,
0: बच्चों के लिए सुरक्षित जगह, और परिवार के लिए सम्मान के साथ जीने का अवसर,
1: या किसी भी विकास योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि है जब उसका लाभ सीधे जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे।
0: विकास का अगला महत्वपूर्ण आधार है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: शौचालय केवल सुविधा नहीं, ये महिलाओं की गरिमा, परिवार के स्वास्थ्य और गांव की स्वच्छता से भी जुड़ा विषय है।
0: बरौली अहीर के गांवों में भी स्वच्छता को लेकर जागरूकता और सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं।
1: बरौली अहीर की विकास यात्रा में किसान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसानों की आय और खेती को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित हैं।
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि संबंधी योजनाएं, सिंचाई, बीज, खाद, कृषि तकनीक और किसान को बाजार से जोड़ने जैसी पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
1: किसान की मेहनत खेत में होती है, लेकिन उसका असर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
0: और विकास की इस कहानी में गांव की महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है।
1: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं बचत, बैंकिंग, प्रशिक्षण और आजीविका गतिविधियों से जुड़ रही हैं।
0: कहीं सिलाई कढ़ाई, कहीं खाद्य उत्पाद, कहीं पशुपालन, तो कहीं छोटे व्यवसाय।
1: जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो उसका लाभ केवल महिला को नहीं पूरे परिवार और समाज को मिलता है।
0: विकास का अर्थ यह भी है कि समाज के बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले।
1: वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पात्र लोगों के लिए आर्थिक सहारा बनती हैं।
0: उम्र बढ़ने के साथ जब कमाई के साधन सीमित हो जाते हैं, तब नियमित आर्थिक सहायता किसी परिवार के लिए बहुत मायने रखती है।
1: आइए सुनते हैं बरौली अहीर की एक पेंशन लाभार्थी की आवाज। प्रदेश,
2: उत्तर प्रदेश। माता जी, आपका नाम क्या है?
4: मेरा नाम भगवान देवी है।
2: तो आपको पेंशन मिलती है?
4: पेंशन लोग आ करते हैं तो खर्चा पानी कर लेते कि तब जाते हैं आवते हैं और बच्चे अपनो खाना पाना देते रहते हैं तो कचू के तब जाते हैं आते हैं हारी दुखारी भाई नहीं आ जाती है।
2: मतलब ये अच्छा है ना कि आपके हाथ पे चार पैसे रहते तो आपको अपनी बहू बेटों पे आश्रित नहीं रहना पड़ता।
4: हाँ वो तो ना रहता ही तो फिर वही करते हैं और को खाते है।
2: हाथ पे पैसे होते तो आप अपना अपनी मन मर्जी से खर्च करती है ना।
4: हाँ फिर तो कर लेते आ जाते हैं तो
2: सरकार से क्या कहना चाहेंगे?
4: सरकार से ये है कि पैसे ही मिलते जाए अपना खर्चा तो खिलते जाए गरीब आदमी और का है।
1: किसी बुजुर्ग के चेहरे पर संतोष,
0: किसी जरूरतमंद महिला के मन में सुरक्षा का भाव,
1: यही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य है।
0: क्योंकि विकास तभी सार्थक है
1: जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे।
2: आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंड विकास अधिकारी प्रेमपाल सिंह जी, जिनसे हम बात करेंगे आगरा के विकास के बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
2: तो सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आगरा जनपद में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?
5: मैम, जनपद आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं, जैसे बीबीजी राम जी योजना और आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है, मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान सम्मान निधि है, सामूहिक विवाह है मैम
2: जी,
5: और स्वच्छ भारत मिशन योजना है मैम, इनके अंतर्गत बहुत सारे काम किए जा रहे हैं मैम, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे यहाँ चलाई जा रही है
2: जी। तो सर, इन योजनाओं से आम नागरिक विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किस तरीके का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है?
5: मैम, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ही आप ले लें
2: जी,
5: तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ गांव में 10 महिलाओं से लेके और 20 महिलाओं तक के स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है मैम। उन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मेहमान काफी महिलाएं जो है अपना स्वरोजगार कर रही हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं हमारे जैसे बैंक सखी है, समूह सखी है मैम, विद्युत सखी है, स्वास्थ्य सखी के रूप में भी काम कर रही हैं, बाकी कुछ अपना स्वरोजगार भी कर रही हैं, जैसे अचार बनाना है मैम और डलिया दोना पत्तल बनाना है, डलिया बनाना है, बहुत सारे काम करें। ऐसे ही बीबीजी राम जी योजना है मैम, इसके अंतर्गत जो लोग पलायन करते थे वो पलायन रुका है मैम, गांव में ही श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है
2: जी। तो सर, अब बात आती है कि हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को किसी एक ऐसे लाभार्थी की कहानी भी हमारे साथ साझा करें जिसकी लाइफ में इन योजनाओं की वजह से जो है सकारात्मक बदलाव आए हैं।
5: मैम इसके योजना के अंतर्गत मैम हमारे यहाँ एक विनोद कुमार उत्तम सिंह हैं कबूलपुर के मैम, उन्हें मैम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जैसे उनका मकान था, जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनके पास मकान नहीं था, झोंपड़ी में रहते थे, उन्हें मुख्यमंत्री आवास दिया गया है। अब वो अपने आराम से उसमें मुख्यमंत्री आवास में रह रहे हैं मैम। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंदर शौचालय दिया गया है, राशन कार्ड है उनके पास दिव्यांग, और दिव्यांग पेंशन मिल रही है मैम, और जॉब कार्ड भी है। अगर वो चाहे तो हमारे यहाँ बीबी रामजी योजना में भी काम कर रहे हैं।
2: आज सर अब बात आती है महिलाओं, युवाओं, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन कौन सी योजनाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही हैं।
5: मैम महिलाओं के लिए तो सबसे बढ़िया यही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और अगर वो महिलाएं हमारे जैसे बीबी जी राम जी योजना में भी काम करना चाहती हैं तो वहाँ श्रमिक के रूप में भी काम कर सकती हैं। श्रमिकों के लिए मैम बीबी जी राम जी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। इसमें पहले मनरेगा योजना चलती थी, 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब बीबी जी राम जी में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है।
2: तो सर यदि अभी भी कोई ऐसा नागरिक है जो इन जो योजनाएं जो इतनी सारी चल रही है इनका अगर लाभ नहीं उठा पाए हैं तो वो किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं, उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए या कहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं।
5: मैम अगर किसी भी योजना में अगर किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला है और अगर वो लाभ लेना चाहता है तो हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में सचिवालय के रूप में स्थापित है और वहाँ पंचायत सहायक परमानेंट बैठते हैं, सचिव भी अपने रोस्टर के हिसाब से वहाँ बैठ रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है उन्हें तो वहाँ संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से अपना आवेदन कर दें या जो भी समस्या है वहाँ से उनका सोल्यूशन। अगर वहाँ 1% नहीं होता है किसी कार्ड से तो 10 से 12 परमानेंट हम जनसुनवाई करते हैं उसमें आ सकते हैं या किसी भी समय पूरे दिन में जब चाहे 10 से 5 संपर्क कर सकते हैं, उनकी पूरा लाभ दिया जाएगा ना, पूरा उनका समस्या जो होगी उसका समाधान किया जाएगा।
2: जी बिल्कुल सर, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि विकास योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है।
5: मैम विकास की योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए मैम तो इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जो योजनाएं चल रही हैं वो जिला स्तर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, हमारे स्तर से भी हो रही है, हमारे एडीओ साहब भी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैम अगर कहीं समस्या किसी क्षेत्र में आती है कहीं भी आती है तो हम लोग वहाँ स्वयं जाके उसका सॉर्ट आउट कराते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बस मैं चाहूंगी कि अंत में हमारे आगरा के श्रोताओं को कोई एक संदेश भी आप जरूर दें।
5: मैम संदेश यही है अगर किसी को कोई समस्या आती है या कोई भी है तो सबसे पहले वो हमसे संपर्क करें। अगर जैसे गांव में पंचायत सचिव नहीं मिल रहे या कोई दिक्कत आ रही है तो जिला प्रशासन के पास जाने से पहले सबसे पहले हमसे संपर्क करें। अब होता क्या है लोग सीधे वहाँ पहुँच जाते हैं जिला मुख्यालय पर, तो पहले हमसे संपर्क करें, हमसे बताएं कोई समस्या, अगर हम सोल्यूशन नहीं कर पाते तो उसके बाद वो।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी का लोग लाभ उठाएंगे और जो नागरिक अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं वो जल्द ही इन योजनाओं से जरूर जुड़ेंगे।
1: बरौली अहिर की विकास यात्रा केवल आवास और पेंशन तक सीमित नहीं है,
0: गांव में शौचालय और स्वच्छता, किसान कल्याण और कृषि योजनाएं, महिला स्वयं सहायता समूह,
1: पेयजल और जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़क और आधारभूत सुविधाएं, रोजगार एवं कौशल विकास
0: और सामाजिक सुरक्षा जैसी अनेक योजनाएं और गतिविधियां ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं।
1: उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।
0: हर योजना का अपना उद्देश्य है लेकिन मंजिल एक है, गाँव का विकास और ग्रामीण परिवारों का बेहतर जीवन।
1: बरौली अहिर की कहानी एक पक्के घर की कहानी है,
0: बुजुर्ग के सहारे की कहानी है, किसान की मेहनत की कहानी है,
1: महिलाओं के आत्मविश्वास की कहानी है और उन सपनों की कहानी है जो गांव की मिट्टी से निकलकर
0: नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बना रहे हैं।
1: सरकारी योजनाएं, प्रशासन की मेहनत और ग्रामीणों की भागीदारी जब एक साथ आती है तभी विकास की तस्वीर और मजबूत होती है।
0: यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और यही थी आगरा के बरौली अहिर विकास खंड की विकास गाथा।
1: आप सुन रहे थे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी और रेडियो की जुबानी। आज नवरात्रि का नौवा दिन है, जिसे हम महानवमी के रूप में जानते हैं। यह पावन दिन समर्पित है माँ सिद्धिदात्री को, जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं, जो अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति, सफलता और पूर्णता का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि का यह अंतिम दिन हमें यह संदेश देता है कि साधना, समर्पण और विश्वास के साथ जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। माँ सिद्धिदात्री यह दिव्य शक्ति है, जो अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। उनकी कृपा से व्यक्ति को सफलता, आत्मविश्वास और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उनकी आराधना हमें यह सिखाती है कि जब मेहनत के साथ विश्वास जुड़ जाए और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो सफलता निश्चित है। श्रोताओं, यही विश्वास, यही समर्पण आज उत्तर प्रदेश के विकास में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देना, यही इस बदलाव की असली ताकत है। आज प्रदेश की महिलाएं और बेटियां आत्मनिर्भरता की ओर की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, उद्यमिता, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। वह अब सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह परिवर्तन संभव हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व के कारण। उनकी सोच स्पष्ट है, हर महिला को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर। इन पहलों ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया है। आज उत्तर प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो, प्रशासन हो या उद्यमिता। वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं और पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रही हैं। माँ सिद्धिदात्री की तरह ही आज की नारी भी पूर्णता की ओर अग्रसर है। वह सक्षम है, आत्मविश्वासी हैं और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि हर महिला को सम्मान, समान अवसर मिले और वह अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। श्रोताओं, महानवमी का यह दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हमारे अंदर विश्वास, मेहनत और समर्पण का संगम हो। और आज उत्तर प्रदेश इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हर नागरिक को अवसर मिल रहा है, जहां हर महिला सशक्त है, आत्मनिर्भर है और सम्मान के साथ जीवन जी रही है।
1: यू आर लिसनिंग FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़,
2: कमिटेड टू कम्युनिटी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं आपका अपना होस्ट आरजे राज। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हौसले, मेहनत और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। यह कहानी है अंबेडकर नगर के कर्म जगदीशपुर गांव की रहने वाली निशा की, जिनकी मेहनत की चर्चा आज हर जगह हो रही है। दोस्तों, हर सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है और निशा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक साधारण परिवार में जन्मी निशा, जहाँ आर्थिक तंगी इतनी थी कि रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल पूरी होती थीं।
1: हमारे घर की हालत बहुत कमजोर थी। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे के लिए अक्सर उधार लेना पड़ता था।
0: सोचिए, जब हर दिन संघर्ष हो तब सपने देखना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन निशा ने सपने देखना नहीं छोड़ा। निशा के मन में हमेशा एक बात रहती थी, अगर मौका मिले तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और यही मौका उन्हें मिला। स्वयं सहायता समूह और SVEP योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम SVEP, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY, NRLM के तहत एक प्रमुख उप योजना है। यह 2016 में ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परामर्श के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय स्थापित करने में मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश में SVEP योजना का उद्देश्य ग्रामीण योजनाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रामीण गरीबों को कम करना और गैर कृषि क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय, विनिर्माण, व्यापार सेवा स्थापित करने में सहायता करना है।
1: जब मैं जय भीम एवं सहायता समूह से जुड़ी, तब मुझे पहली बार लगा कि मैं कुछ नया कर सकती हूँ। इस योजना में ASVEP ब्लॉकों में VR स्थापित किए जाते हैं, जो उद्यमियों को तकनीकी और द्वितीय सहायता प्रदान करते हैं। कुछ स्थायी उद्यमी प्रमोट भी होते हैं, जो नए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में मदद करते हैं। इस स्कीम की प्रमुख विशेषताएं द्वितीय सहायता, समावेशिता और स्थानीय विकास है।
0: समूह की बैठकों में उन्हें स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली। उन्हें 10,000 रूपए ऋण मिला और अपनी बचत से 30,000 रूपए जोड़कर नवंबर 2021 में उन्होंने निशा ब्यूटी पार्लर की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में इस योजना की प्रगति की समीक्षा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM के मिशन निदेशक की अध्यक्षता वाली सीमित द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाती है। इस योजना से यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए साधन विकसित हो रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो रहा है। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादे बड़े थे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्यों को टारगेट करती है। इस स्कीम में व्यवसाय योजना बनाने और प्रबंध की प्रशिक्षण, ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC के माध्यम से मार्गदर्शन, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
1: पहले हम सिर्फ हेयर कट, फेशियल और मेहंदी जैसे छोटे काम करते थे,
0: लेकिन दोस्तों, जब काम में लगन हो और व्यवहार अच्छा हो तो सफलता खुद रास्ता ढूंढ लेती है। निशा की मेहनत, उनकी विनम्रता और उचित कीमतों ने उनके पार्लर को जल्द ही लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने पार्लर में नई और आधुनिक सेवाएं जोड़नी शुरू करी और देखते ही देखते उनका छोटा सा व्यवसाय एक सफल उद्यम बन गया।
1: अब हमारे पास पहले से ज्यादा ग्राहक आते हैं और काम भी लगातार बढ़ रहा है।
0: आज निशा की जिंदगी पूरी तरह चल चुकी है। घरेलू खर्च आसानी से पूरे हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। सबसे बड़ी बात, अब उन्हें उधार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती।
1: अब हमें किसी से उधार नहीं लेना पड़ता, हम अपने पैरों पर खड़े हैं।
0: वाह, यही तो असली आत्मनिर्भरता है। और दोस्तों, निशा की सफलता सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपने पार्लर में अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया है।
1: मैं चाहती थी कि और महिलाएं भी हमारे साथ काम करें और आगे बढ़े।
0: यानी अब निशा खुद एक प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी कहानी सुनकर गांव की अन्य महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं और प्रेरित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं आज लाखों महिलाओं के सपनों को पंख दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। सरकार की सोच साफ है, हर महिला को अवसर मिले और हर महिला आत्मनिर्भर बने और हर परिवार मजबूत बने।
1: अगर हमें यह योजना नहीं मिलती तो शायद आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते।
0: यानी सही समय पर मिला सही सहयोग किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। निशा का सपना यही खत्म नहीं होता है।
1: हम अपने पार्लर को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, ब्राइडल मेकअप, स्पा और नई सेवाएं शुरू करना चाहते हैं।
0: क्या बात है, यही तो आगे बढ़ने का जज्बा है। उनका सपना है कि उनका पार्लर एक मॉडर्न ब्यूटी स्टूडियो बने जहां दूर दूर से लोग आएं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। निशा ने यह साबित कर दिया कि छोटे से गांव से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आज आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और ऐसी कहानियां इस बदलाव की सच्ची पहचान हैं। तो श्रोताओं, अगर आपके मन में भी कोई सपना है तो आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि सफलता आपकी राह देख रही है। SVEP में आवेदन करने के लिए आप ग्रामीण निवासी होने चाहिए, आपके ग्राम संगठन का क्लस्टर स्तरीय संघ CLF में या ब्लॉक स्तर पर SVEP के अंतर्गत कार्यरत CRP EP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल सकती है। बात अगर आवेदन फॉर्म की करें तो CRP EP के माध्यम से आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, आपको अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी देनी होगी और ऋण मंजूरी मिलने के बाद सामुदायिक निवेश निधि CIF या बैंक से कम ब्याज दर पर प्राप्त किया जा सकता है। आपके पास अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। मैं हूं आपका दोस्त RJ राज, अभी के लिए लेता हूं आपसे अलविदा। जल्दी ही मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 MHz। नमस्कार।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
4: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
3: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी, मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन सेंथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकश से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि नेपाल में बुधवार को अचानक बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के भारतीय मूल के लगभग 100 लोगों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्री जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
6: 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, कल काठमांडू पहुंचे उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ, और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा और हमारी एमएससी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया। आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उसके अलावा 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं।
5: इस बीच भारत ने नेपाल को मानवीय सहायता बढ़ा दी है। 10 टन मानवीय सहायता लेकर तीसरी उड़ान काठमांडू के लिए रवाना हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस उड़ान में डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेकी टीम के 11 सदस्य भी शामिल हैं। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है। अधिकारियों ने प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण त्रिशूली क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का आदेश दिया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल से सुरक्षित वापस आए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। ये तीर्थयात्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से काठमांडू पहुंचे थे और आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाली सेना और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की और हर संभव सहायता देने की पेशकश की।
7: They told me about exactly what happened to them, how the floods came.
8: उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ असल में क्या हुआ था और बाढ़ कैसे आई थी। वे बहुत आभारी हैं, खासकर नेपाल सेना के, जिन्होंने उस बेहद मुश्किल जगह से निकालने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। इसलिए अभी हमारा प्रयास लोगों की राहत और बचाव कार्यों में नेपाल की मदद करने का है। आज सुबह ही मैंने नेपाल के विदेश मंत्री से बात की है। हमने उन्हें कई तरह की सहायता की पेशकश भी की है।
7: We have given them range of support offers.
5: सिक्किम सरकार नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार वहां फंसे सिक्किम निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठा रही है।
9: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवंगोले ने सिक्किम के 8 निवासियों से फोन पर बात की। जानकारी मिली है कि सभी 8 लोग सुरक्षित हैं। फंसे हुए सिक्किम का निवासियों के लिए सिक्किम सरकार ने कल नेपाल फ्लैश फ्लड टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स को स्थिति से प्रभावित सिक्किम के नागरिकों के लिए आवश्यक सहायता के समग्र समन्वय, निगरानी और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। टास्क फोर्स भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बनाए हुए है और संबंधित सिक्किम निवासियों तथा उनका परिवारों के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोइनक चटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
11: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
5: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रमुख पड़ाव है। एक रिपोर्ट।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में जनधन योजना के अभूतपूर्व परिवर्तनकारी परिणामों का प्रभाव बेमिसाल है। श्री मोदी ने कहा कि जनधन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश के लोगों को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आज ही के दिन किया था। योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ये योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग पहुँच को बना रही है। योजना के तहत महिलाओं के लगभग 56% खातों सहित 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के निमंत्रण पर ताशकंद का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेफ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे।
13: भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। तब से द्विपक्षीय संबंध कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से बढ़े हैं। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच करीबी, बहुआयामी और बढ़ते राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देगी। चर्चा के दौरान आपसी सहयोग के कई इलाकों को शामिल किए जाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
5: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं।
14: बातचीत कोटा के अंतर्गत चीनी मिलों को आवंटित मात्रा से कम 40% चीनी पहले सप्ताह में और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। मंत्रालय के अनुसार नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी। अक्टूबर महीने के दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की भी अनुमति दी है, जिससे नए सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी का उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत के लिए चीनी की अतिरिक्त आपूर्ति में पर्याप्त वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उनके हितों से कोई समझौता नहीं करेगी और किसी भी देश के साथ किए गए हर समझौते में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा। अमृतसर जिले के बाबा बकाला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के खिलाफ समझौते कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से पंजाब सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू न करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
15: भारत सरकार सरकार ने योजना बनाई किसानों की आमदनी बढ़ाने की, आय बढ़ाने की। हम पंजाब में भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी भ्रष्ट सरकार के कारण हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही। पंजाब के कृषि के लिए एक नया रोड मैप टॉप के साइंटिस्टों की टीम बनाएगी। हम पंजाब की कृषि की दशा बदलेंगे, दिशा बदलेंगे और किसान की हालत बदलेंगे।
16: परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 13 सितंबर तक वेबसाइट, व्हाट्सएप या फोन नंबर 1800-180-4747 के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव ईमेल examreformstaskforce@dopt.gov.in के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
17: परीक्षा के संचालन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्थाओं के अलावा परीक्षा में अनुचित साधनों का पता लगाने, रोकथाम करने और उनके समाधान सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कार्यबल संस्थागत प्रणालियों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने, परीक्षा की निष्पक्षता, उपयुक्त तकनीकों को लागू करने और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के उपायों की जाँच कर रहा है। इसका उद्देश्य मजबूत, सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य के लिए तैयार सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली विकसित करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के सुगम संचालन और प्रशासन से संबंधित व्यापक सुधारों की जांच के लिए प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
16: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस महीने 60 नवजात शिशुओं की मौत की खबर पर जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के सरकारी स्कूल में पिछले 2 वर्षों से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन नहीं परोसे जाने के मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
18: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
16: ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष जुलाई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापी गई औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर वार्षिक आधार पर 6.7% रही। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस दौरान औद्योगिक गतिविधियों में अच्छी गति से वृद्धि जारी रही। हालांकि इस अवधि में विकास की गति जून के संशोधित स्तर से कम रही। एक रिपोर्ट।
19: जून में IIP वृद्धि दर 7.3% से बढ़कर 8.8% पहुंच गई थी, जो यह भी संकेत देती है कि जुलाई तिमाही में प्रवेश करने वाली औद्योगिक गति शुरू में अनुमान से अधिक मजबूत रही। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP सूचकांक में सबसे अधिक महत्व रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र में जुलाई में 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि बिजली और गैस की आपूर्ति में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। जल आपूर्ति, सीवरेज और अपिष्ट प्रबंधन में 7.4% की वृद्धि हुई। हालांकि खनन क्षेत्र पिछले महीने 0.9% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए पिछड़ गया। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
16: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क जाएंगी। एशविल में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई। ये यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी। इस वर्ष 4,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार आज रात बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकश से खेलेंगे। सेमीफाइनल में कल सेंथिल कुमार ने भारत के ही वीर चोटरानी को हराया था। नॉर्वे के सम्राट हैरोल्ड पंचम का आज ओस्लो में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
5: सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की शुरुआत में नॉर्वे की यात्रा के दौरान सम्राट हैरल्ड पंचम से अपनी मुलाकात को याद किया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने ओडिशा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हुई। कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल के लिए तीसरी उड़ान से 10 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा 320 भारतीय नागरिकों से अब भी कोई संपर्क नहीं। नेपाल तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हुई। सीमा के दोनों तरफ 1500 से अधिक लोग अब भी लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। सरकारी उपायों से बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ी। मिलों से सीधे प्राप्त चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही। और बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन के फाइनल में आज रात भारत के वेलवन संथिल कुमार का सामना हंगरी के बालाज फारकट से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
20: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
21: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

नमस्कार मुरादाबाद, स्वागत है आपका दिल से दिल तक अखिल संग में आज एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। हाँ साहब, रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप भी जल्दी जल्दी जा रहे होंगे, घर पे बहन इंतजार कर रही होगी जल्दी पहुँचूँ और फटाफट राखी बंधवा लूँ, या फिर निकले होंगे कि जल्दी पहुँचो, बहन के घर पहुँचना है, अभी भी रास्ते में है, कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो कोई बात नहीं साहब, जहाँ 5 मिनट और सही लगे पहुँचें और आराम से एक मिठाई खाएं और राखी बनवाएं और गाना का आनंद लें, अपने फरमाइश के गाने प्ले करवाएं और मस्ती करें खूब सा। 9837896896 पर कॉल करें, अपनी बहन के लिए आज डेडिकेट कर सकते हैं गाना, या फिर बहन करवा सकती है गाना डेडिकेट अपने भाई के लिए। तो जल्दी से मिलाएं कॉल 9837896896 पे। तब तक के लिए करते हैं छोटा सा गाना, मज़ा आनंद लेते हैं इस गाने का। जल्दी पहुँचें साहब घर, आराम से, हॉर्न बजाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए आप इस गाने का आनंद और हमें इस बीच कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। आज दिल से दिल तक होंगी खूब सारी बातें।

0: अब बात है साहब, आज तो डांस हो ही रहा होगा कहीं, भाई बहन के बीच में छोटी मोटी नोक झोंक भी चल रही होगी, और उसी बीच ये मस्ती वाले गाने भी सुन रहे होंगे। तो चलिए हम अपने लिसनर से बात करते हैं, उनकी कॉल आई है और देखते हैं आज वो कौन सा गाना डेडिकेट कर रहे हैं अपनी बहन के लिए। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं, क्या नाम है आपका?
1: बढ़िया है सर। संजय बोल रहा हूँ, संजय
0: संजय,
1: बाबू ना।
0: संजय जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ, आप सुनाओ कैसे हैं।
0: बढ़िया संजय जी। तो आप कौन सा गाना चाहते हैं आज प्ले हो?
1: हाँ, गाना मैंने बताया था आपको कि इसे समझो ना, राखी का तार भैया मेरा, राखी है ऐसा प्यार भैया, ऐसा कुछ है गाना तिरंगा फिल्म
0: तो
1: का।
0: ये जो डेडिकेट करना चाह रहे हैं आप, बताइए उनका नाम अपनी
1: हाँ,
0: सिस्टर।
1: मेरी बहन है नीलम और मधु।
0: क्या बात है, तो जरूर ये गाना आज हम प्ले करते हैं। कोई बात संजय जी, कोई ऐसी बचपन की बात आपको याद है कि रक्षाबंधन के त्योहार पे कुछ होती तो जरूर शेयर हमारे साथ।
1: बताएं, दोनों गाने जो है मैं शेयर करूंगा कि वो दोनों गाने बहुत आपस में प्यार करती थी शादी से पहले, और रात को दोनों एक ही बिस्तर में सोती थी।
0: हाँ सर, ये तो है
1: रोज
0: बचपन में तो।
1: रोज लड़ती भी थी लेकिन रात को सोती इकट्ठी थी।
0: तो यही होता है ना, सुबह तो कितने भी चाकू और कैंची चल जाएं आपस में, मगर एंड में तो सोना साथ में।
1: लेकिन नींद दोनों को इकट्ठी आती है।
0: सर ये तो बहुत मतलब लकी हैं कि सब बहनें इतने प्यार से रहती हैं, सब तो बहुत
1: लड़ती भी थी
0: बड़ी।
1: पूरे दिन लड़ती भी थी लेकिन रात को सोती घटती थी दोनों।
0: बहुत ही बढ़िया
1: और
0: सर,
1: बताइए,
0: बढ़िया
1: सुनाइए
0: सर,
1: गाना
0: बढ़िया, बस सब
1: आप
0: बढ़िया चल रहा है
1: सुना
0: सर।
1: दीजिए।
0: चलिए ये गाना फरमाइश करते हैं आपकी प्ले, और आपको बहुत
1: थैंक यू
0: बहुत
1: सर,
0: रक्षाबंधन की बधाई है सर।
1: आपको भी सर, थैंक यू
0: ओके
1: सर।
0: ओके। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे संजय जी, जिन्होंने एक नटखट सी बात बताई अपनी बहनों के बारे में। आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी, तो ज़रूर हमें 9837896896 पर शेयर करें और कॉल करें। तब तक हम इस गाने को करते हैं इंजॉय।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। दोस्तों क्या चल रही है मस्ती, क्योंकि मस्ती तो होनी जरूरी है। आज है त्यौहार, पूरे दिन कितना जब सबको पतंग जीत किसने उड़ाई होगी उसे पता होगा। दोपहर के बाद ही आज बूंदा बांदी हो रही थी, आसमानों पे पानी फिर जाता है तो वही हुआ है, ऊपर से पानी ही फिर गया साफ। इतनी चरखी और अपनी पतंगे स्टाइल से मैं तो एकदम रैक में लगा के रखता था, पतंगों के लिए भी रैक बनवा के रखी थी साहब कि आएंगे और पतंग उसमें से निकाल के उड़ाएंगे। क्या हुआ आपके साथ, आप भी पतंग उड़ा पाए या नहीं, पेच लड़े या नहीं लड़े? अगर पेच लड़े तो कितनी काटी और कितनी पतंगे अपनी कटवा डाली, ज़रूर हमें बताएं एक छोटा सा मैसेज करके 9837896896 पर।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
6: हे, यू आर ट्यून्ड टू FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: नमस्ते अखिल भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आपका रक्षाबंधन कैसा रहा? हमारा भाई साहब बहुत ही बेहतरीन रहा। हमारा भी रक्षाबंधन साहब बहुत ही बेहतरीन रहा। खूब मस्ती हुई, खूब नोकझोंक हुई और काजू की बर्फी के ऊपर लड़ाई भी हुई है। काजू की कतली जो है ना बहुत पसंद है, तो हमने कहा साहब काजू की कतली से ही स्टार्टिंग होनी है आज। आपके सह परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी सर, और आपको भी पूरे परिवार को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाने के जो बोल हैं वो है चली चली दुल्हन, फिल्म पूरब पश्चिम का ये गाना है। सुनने वाले हैं दलजीत कोहली, रीना कोहली, देव कोहली, सरगम कोहली, कोहली परिवार के सभी सदस्य और विराट कोहली। तो ज़रूर हम ये गाना आपका प्ले करते हैं। और कोई और फरमाइश हो आपकी भी? हाँ, आपकी भी, अगर आप गाड़ी में ही हैं इस समय कोई बात नहीं साहब। 9837896896 आपके लिए बिल्कुल हॉटलाइन तैयार है। जैसे एकदम कॉल करें या फिर मैसेज करके बताएं, ज़रूर आपकी फरमाइश भी प्ले होगी।
1: सूरज ने
0: तब तक आनंद लेते हैं पूर्व और पश्चिम का केस सॉन्ग का, जो मनोज कुमार जी द्वारा निर्देशित है।

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जैसे अभी बातें चल रही हैं कि मैसेजेस जिनके आए हैं, फरमाइश जिनकी आई है, जिन्होंने अपने भाई बहनों के लिए प्यारे प्यारे गाने डेडिकेट किए हैं, चलिए अब बारी है प्लीज़ वालों की। इनका भी मैसेज आज हमारे पास आ गया है और कहते हैं हमारे पूरे परिवार की तरफ से अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। नाम है नमन यादव, शंकरलाल यादव, ऋतु यादव, अमित यादव, निरांश यादव, लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहा से। सभी लिसनर्स को भी हैप्पी रक्षाबंधन कहते हैं पूरा यादव परिवार। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मिलती है मोहब्बत कभी कभी, ये हमारा ज़रूर प्ले करिए। तो ज़रूर हम ये प्ले करते हैं आपका एक गाना, और आपकी भी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर 9837896896 पे करिए कॉल, क्योंकि बज गए हैं 9:34 और आपके पास है अभी पूरा आधा घंटा खूब मटर गस्ती करने का, अपनी फरमाइश प्ले करने का। तब तक यादव जी की फरमाइश पे, पूरे परिवार की फरमाइश पे प्ले करते हैं मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में और आंखें मूवी का एक गाना।

0: देख। एक बार फिर से स्वागत है आपका
1: हो गया
0: FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। अभी आनंद ले रहे थे हम तेरे नूर से रोशन हो गया गाना, फीचर इमरान हाशमी एंड मृणाल ठाकुर। बहुत ही प्यारा गाना है और आप सभी ने पूरा, मुझे उम्मीद है, इसे एंजॉय किया होगा। चलिए बात करते हैं अपने नए लिसनर्स की फरमाइश के बारे में। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हाल चाल है आपके?
2: हेलो अखिल भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार सर, नमस्कार। क्या कर रहे हैं आप?
2: सर इस समय तो कुछ नहीं है, राखी का पर्व निपटा है, इसमें आप लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, आपके गाने सुनने के लिए इच्छुक थे हम।
0: चलिए जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: जी भैया जी, गाने के बोल हैं, बहना ने भाई की कलाई में प्यार वाला है।
0: जरूर जरूर, ये फरमाइश आपकी पूरी करते हैं। ये गाना किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप?
2: भैया जी डेडिकेट नहीं, जो हमारे सब सुनने वाले हैं, जिनकी बहनों बहन है, भाई है, उनके लिए सबके प्यार बना हुआ है, उनके साथ सब खुश रहे। वो
0: क्या बात कही है आपने, बहुत ही सुंदर बात कही है रामधन जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये गाना डेडिकेट करते हैं रामधन जी की तरफ से सभी को, हमारे जितने भी श्रोता हैं सुनने के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार। तो श्रोताओं, रामधन जी की तरफ से ये गाना बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, तो जरूर इस गाने को एंजॉय करें। और आप सब कहते हैं ना, आप सभी की तरफ से FM मुरादाबाद डेडिकेट कर देता है आपकी प्यारी प्यारी बहना को ये गाना।

फरीदाबाद से अनवर बिहारी जी ने गाना डेडिकेट किया है रंग बिरंगी राखी लेके आइए, लता मंगेशकर जी की आवाज़ का है, ज़रूर इसे आप लोग भी एंजॉय कीजिए और थोड़ा सा आनंद लीजिए। और मेरे को कॉल कीजिए 9837896896 पे, आपकी कोई भी फरमाइश कोई भी मैसेज के द्वारा भी आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप से आराम से 9837896896 पे।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो खूब सारी हुई हैं बातें, खूब सारी हुई हैं तकरारें। आज कई लोगों ने डेडिकेट किए हैं गाने अपनों को, कहीं इस समय भी भागे भागे जा रहे हैं कि फटाफट पहुंच जाऊं और अपना ये त्यौहार पूरा कर लूं। तो चलिए हमारे पास और लिसनर हैं, बात करते हैं उनसे कि क्या कह रहे हैं वो आज। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप। नाम क्या है आपका? लाइबा जी, कैसी हैं? मौसम कैसा है वहाँ का?
1: वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, फिलहाल थोड़ी सी गर्मी है। आप बताइए आप कैसे हैं और बाकी सब टीम अदर कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ और पूरे टीम मेंबर्स, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, सब अच्छे हैं, सब स्वस्थ हैं, सब इस समय मस्त हैं।
1: हैप्पी रक्षाबंधन सर।
0: आपको भी बहुत बहुत, आपको भी पूरे परिवार को, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ।
1: तो सर आज आप पूरे दिन बिजी रहे होंगे।
0: हाँ, आज पूरे दिन बिजी रहे, इंतज़ार करते रहे सिस्टर्स का कि कब आएंगी और कब जल्दी से जल्दी हम ये त्यौहार मनाएंगे।
1: हाँ तो आप उनको पेमेंट करो एंड आपका बैलेंस डाउन जाए।
0: बस यही याद नहीं दिलाना था तुम्हें।
1: नहीं सर ये तो होना चाहिए ना, सालों ये के तो
0: ये तो हक है सर, ये तो हक है, सभी बहनों का हक है अपने भाइयों से कि कोई भी गिफ्ट कुछ ना कुछ तो उन्हें चाहिए ही होता है।
1: अच्छा तो सर आपने क्या प्रॉमिस किया है रक्षाबंधन पे? मैं ये प्रॉमिस करता हूँ जैसे करते हैं ना सब नॉर्मली।
0: नहीं, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है। मेरे ऐसे तो मेरे इतने सारे हो गए रक्षाबंधन, सारे प्रॉमिस प्रॉमिस ही चलते रहेंगे फिर तो।
1: चाहिए कुछ यूनिक होना चाहिए ना हर साल की। हाँ ये इस साल स्पेशल रहेगा।
0: हर साल हमारा कोई ना कोई स्पेशल रहता है, कोई ना कोई हमारी भाई बहन की कोई ना कोई फरमाइश चलती रहती है, कुछ ना कुछ आपस में कहते हैं ना डिमांडिंग चलती रहती है, तो वो तो हमारे हर साल चलता ही रहता है। आपकी तरफ भी होता है ऐसा कुछ? आप भी कुछ करती हैं, डिमांड करती रहती हैं अपने भाई जानों से?
1: बिल्कुल सर मैं तो हर दिन करती हूँ।
0: तो आवारापन मूवी देखा है आप सभी लोग? नहीं
1: मूवी में
0: देखा?
1: इंटरेस्ट नहीं हूँ, 2 दिन मूवी को देख सकती है।
0: कोई मूवी में इंटरेस्ट नहीं है, बस
1: नहीं
0: गानों में
1: मैं कभी।
0: इंटरेस्ट है आपका, है ना?
1: हाँ मैं सॉन्ग में इंटरेस्ट लेती हूँ।
0: तो कौन सा गाना
1: सॉन्ग
0: आज आप चाहती हैं कि कोई प्ले हो आपकी फरमाइश का?
1: तो मूवी का नाम है मजल टू एंड उसमें एक सॉन्ग है कहो ना कहो कि आंखें बोलती है उस सनम।
0: ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ये गाना ज़रूर प्ले करेंगे। उससे पहले कोई आप शायरी हमें ज़रूर सुनाएं, हमें और हमारे श्रोताओं को आज।
1: बिल्कुल सर मैं एक शायर साहिबा को लेकर आई हुई हूँ कि वो शायरी अपनी सुनाएंगी।
0: वो जरूर, उनसे साहिबा से बोलिए अपनी पर्ची खोलें फटाफट, सामने लाइट जलाएं और उसे शायरी को पढ़ के सुनाएं।
1: बिल्कुल सर आप इरशाद करोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: हमें इरशाद कामिल दोनों करते हैं आपको।
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, सुनाइए मैम, आप अपना नाम भी बताइए और शायरी भी सुनाइए। फातिमा जी, बहुत ही बढ़िया, कैसा मौसम है आपकी तरफ मुरादाबाद में?
2: मौसम तो सर इस टाइम पे अच्छा हो रहा है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है।
0: कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कभी आपने आधा रास्ता पार किया और एकदम बारिश दिख गई आपको, फिर थोड़ी दूर चले फिर आधा किलोमीटर बाद बारिश खत्म?
2: हाँ ऐसा हुआ है हमारे साथ।
0: ऐसा हुआ है?
2: हाँ।
0: तो फिर आप क्या कहते हो, अरे कि मैं ही था कि जो मुझे ही भिगोने को आपने बारिश करी है, या
2: नहीं सर कभी ऐसा हो जाता है मतलब कुछ दूरी पर बारिश हो जाती है कभी नहीं होती है।
0: बिल्कुल
2: ऐसा
0: सही
2: हुआ शूटिंग करने गए और आधे रास्ते में बारिश हुई और आगे जब हम गए तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी।
0: आज मेरे साथ भी ऐसी हुआ, जैसी मैं फ्लाईओवर क्रॉस किया एकदम बारिश तेज हो गई और जैसी मैंने फ्लाईओवर के दूसरे छोर पे पहुंचा एकदम बिल्कुल सूखा, कोई बारिश का कोई बूंद का नामो निशान नहीं।
2: ऐसा ही मेरे साथ हुआ सर, मुझे भी ऐसा लगा मतलब ये बारिश हमारे लिए थी यहाँ पे नहीं है।
0: बिल्कुल सही। तो बताइए शायरी किसके लिए है आज?
2: आपको और जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।
0: जरूर जरूर, अब आप शायरी भी सुनाइए फटाफट।
2: जी सर मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ मेरी बेस्टी लाइबा के लिए।
0: लाइबा जी सुन लीजिएगा, आप लाइन पर ही हैं?
2: बिल्कुल सर मैं सुन रही हूँ।
0: रिकॉर्ड कर लीजिएगा आज आप फातिमा जी की शायरी को।
2: सर तेरे नाम से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तेरे नाम से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तेरी याद आते ही धड़कन बढ़ जाती है, क्या रिश्ता है तुझसे ये समझ नहीं आता, क्या रिश्ता है तुझसे ये समझ नहीं आता, बस तुझे देखकर हर बार मोहब्बत हो जाती है, बस तुझे देखकर हर बार मोहब्बत हो जाती है।
0: क्या बात कही, क्या बात कही, आप दोनों की मोहब्बत ऐसी बरकरार रहे और उसके ऊपर ये गाना।
1: ये फर्स्ट फातिमा को स्पेशल डेडिकेट करेगा।
0: तो आज तो बहुत ही बढ़िया, मतलब कहते हैं ना आज दोनों दोस्त मिल गए और दोनों दोस्तों ने जो है एक दूसरे के लिए कितना अच्छा गाना दे दिया।
1: आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम एक साथ बात कर रहे हैं आपसे, तो बहुत ही खुशी हो रही है।
0: हमें भी बहुत खुशी हुई है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों एक साथ जुड़े हमारे साथ। ओके जी, गुड नाइट।
3: मोहब्बत के सफर में ये सहारा है।
0: तो दोस्तों ये था अफरोज फातिमा जी ने लाइवा को डेडिकेट करते हुए गाना मर्डर 2 मूवी का कहो ना कहो। तो चलिए आप भी एंजॉय कीजिए और अपनी फरमाइश कोई हो तो 9837896896 पे जरूर कॉल करके बताइए। 10:01 हो रहा है, हम आपके लिए अभी और हैं 15 मिनट, तो कहीं नहीं गए, जल्दी से कॉल करिएगा।

मैं क्या बताऊं तुझे। तो इसी के साथ हम करते हैं आज इस शो की विदाई। कल ठीक आपको मिलेंगे हम मंडे को अब 9 से 10, दिल से दिल तक अखिल संग, और खूब होगी आपसे दिल की बातें। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ खैर, बाय बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
1: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
0: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
1: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूँ घर से।